मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, DRM 1233 किलोहर्ट्स, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, वेब्स OTT पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 31 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 और 50 सेकंड हो रहे हैं। आरंभ हो रही है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन

0: वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। IPL क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया। ब्रिस्टल में कल इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की फ्रिया कैंप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने केवल 13 गेंद में 39 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टोंटन में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। खेती की बातें कार्यक्रम में आइए सुनते हैं सामूहिक कृषि कार्य विषय पर दिनेश कुमार सिंह से ये जानकारी।
3: किसान भाइयों, आज हम सामूहिक कृषि कार्य की चर्चा करेंगे। दलहनी फसलों में इस समय उड़द और मूंग की खेती आप किए हुए हैं। इसमें ध्यान ये रखना है कि पहली सिंचाई 25 से 30 दिन बाद करें। अगर पहली सिंचाई बहुत जल्दी कर देते हैं तो इसमें जड़ों तथा ग्रंथियों के विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः पहली सिंचाई जो है 25 से 30 दिन बाद करें और बाद की सिंचाइयां आवश्यकता अनुसार 10-15 दिन के अंतराल पर करते रहें। इस फसल में कुछ खरपतवार भी आ जाते हैं जिनको निकाई करके नष्ट कर देना चाहिए। उड़द और मूंग की फसल में पीला चित्तवर्ण रोग, जिसे कि मोज़ेक रोग कहते हैं, इसका प्रकोप काफ़ी होता है, जिसमें पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। यह रोग प्रायः सफ़ेद मक्खी द्वारा फैलता है, अतः इसके नियंत्रण के लिए उस सफ़ेद कीट का ही नियंत्रण करना चाहिए। इसके लिए मिथाइल ओ डेमेटान दवा प्रयोग करते हैं, जो कि 25 EC के रूप में आती है। अगर 5 से 10 प्रौढ़ मक्खी प्रति पौध की दर से दिखाई पड़े तो इस दवा का छिड़काव करना चाहिए। इसकी 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव किया जाता है। अगर यह दवा उपलब्ध ना हो तो डाइमेथुएट दवा प्रयोग कर सकते हैं, जो कि 30 EC के रूप में आती है। इसकी भी 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव किया जाता है। कहने का मतलब ये कि अगर 1 हेक्टेयर खेत है तो 1 लीटर दवा की आवश्यकता होगी और लगभग 600 से 700 लीटर पानी की। इस तरह से आवश्यक दवा की मात्रा लेकर के और आवश्यक पानी में घोल बना करके छिड़काव करना चाहिए। उड़द और मूंग की फसल में थ्रिप्स कीट का भी प्रकोप होता है।

0: इस कीट के शिशु एवं प्रौढ़ दोनों पत्तियों से रस चूसते हैं तथा पत्तियां जो हैं सिकुड़ जाती हैं और पैदावार प्रभावित होती है। इस कीट के नियंत्रण के लिए भी मिथाइल ओ डेमेटान दवा का प्रयोग करते हैं। इसकी 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। कुछ किसान भाई सूरजमुखी की भी खेती किए रहते हैं, तो ध्यान रहे कि सूरजमुखी की फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। अब हम थोड़ी सी चर्चा गन्ना की खेती की करेंगे। इसमें कुल 180 किलोग्राम नत्रजन की आवश्यकता होती है। 60 किलोग्राम नत्रजन यानी कि लगभग 120 किलोग्राम यूरिया बेसल ड्रेसिंग के रूप में बुआई के समय ही खेत में प्रयोग कर लिया जाता है। बाकी जो मात्रा बचती है उसको दो भार में प्रयोग करते हैं, 60 किलोग्राम और 60 किलोग्राम। तो इसे जो है जून माह के पहले प्रयोग कर लेना चाहिए। कहने का मतलब, अगर आखिरी मात्रा आपके पास बची है तो 60 किलोग्राम नत्रजन यानी कि लगभग 120 किलोग्राम यूरिया का छिड़काव खेत में करें। ध्यान रहे कि जब आप यूरिया का प्रयोग करें तो खेत में नमी अवश्य हो। इसके अलावा गन्ने की फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। चूंकि इस समय खेत खाली रहते हैं, अतः ये मिट्टी की जांच का सर्वोत्तम समय है। पहले मिट्टी का नमूना लेते हैं और फिर उसको जांच के लिए जो मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है वहाँ पर भेजा जाता है। इसलिए सावधानीपूर्वक मिट्टी का नमूना लेकर के उसमें अपना नाम, पिता का नाम, खेत का नंबर और बोई जाने वाली फसल आदि का विवरण दर्ज करके और फिर उसे जांच हेतु भेजा जाता है। अभी अगर मिट्टी की जांच कराते हैं तो आपको समय से उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी। फिर उस हिसाब से उर्वरकों का प्रयोग करके आप खरीफ की खेती आसानी से कर सकते हैं। हरी खाद के लिए समय ढांचा की भी खेती अवश्य करें। इससे जो है जो खेती में लागत आती है उसको भी आप कम कर सकते हैं। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर सामयिक कृषि कार्य करना चाहिए।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में आप सुन रहे थे सामयिक कृषि कार्य विषय पर दिनेश कुमार सिंह से ये जानकारी। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। भगवान सूर्यदेव संसार को ऊर्जा के साथ जीवन देते हैं और प्रकाश के सर्वोच्च देव हैं। भगवान सूर्यदेव की आराधना से हम सभी के जीवन में स्वास्थ्य, तेज और आत्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। आइए आराधना कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सूर्यदेव की आराधना से।

आइए अब आराधना करते हैं शक्ति स्वरूपा अम्बे माँ जगदम्बे भवानी की, जिनकी असीम कृपा से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए हम सभी माँ के भक्तजन श्रद्धा भक्ति भाव से माँ की आराधना करते हैं।

भगवान श्री राम का नाम लेते ही मन को शांति और स्थिरता मिलती है। भक्ति ही एकमात्र उपाय है शांति का, और भगवान श्री राम की कृपा से जीवन पार लग जाते हैं।

0: आराधना कार्यक्रम में आप सुन रहे थे हरिहरण सुरेश वाडिकर, नरेंद्र चंचल और केवल कुमार के गाए भजन। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है आज का विचार बिंदु।
1: महाराष्ट्र में जिन संतों का सबसे अधिक प्रभाव है उनमें ज्ञानदेव, नामदेव और तुकाराम के नाम प्रसिद्ध हैं। संत ज्ञानेश्वर ने सन 1260 में श्रीमद् भगवद गीता की ज्ञानेश्वरी टीका लिखी, जो महाराष्ट्र के घर घर में आदर पाती है। उस काल में भक्ति मार्ग के महानुभाव संप्रदाय के जो अनेक संत हुए उनमें कुछ महिलाएं भी थीं। उनमें संत महिला महादाइसा या महादम्बा का नाम सर्वोपरि है। महादाइसा के बाद मुक्ताबाई का नाम आता है। मुक्ताबाई संत ज्ञानेश्वर की बहन थीं। मुक्ताबाई अनेक भाइयों, निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव और सोपानदेव तथा उनके माता पिता का जीवन बड़ा ही कष्टपूर्ण रहा। मुक्ताबाई और उनके परिवार की व्यथा कथा महाराष्ट्र के उस काल के कट्टर रूढ़िवादी समाज की हृदयहीनता की कहानी है। महाराष्ट्र के पैठण नाम के प्रसिद्ध नगर के पास आपे गांव में विठल पंत नाम के एक सदगृहस्थ रहते थे। विठल की रुचि बचपन से ही सादगी और भक्तिभाव की ओर थी। संसार की ओर उनका झुकाव बिल्कुल न था। इनका विवाह आलंदी के सिद्ध पंत की पुत्री रुक्मिणी से हुआ। विवाह के बाद भी विठल का मन संसार की ओर न झुका। रुक्मिणी का बराबर यह प्रयास रहता था कि विठल पंत का मन संसार की ओर लगाया जा सके। इसी सिलसिले में कभी कभी पति पत्नी में नोक झोंक भी हो जाती। विठल पंत कहते, देख रुक्मा,

0: अगर तुम मुझे इसी तरह तंग करती रही तो मैं घर बार छोड़कर कहीं। बात सुनते सुनते रुक्मिणी ऊब गई और एक दिन खींच कर बोली, हाँ हाँ चले जाओ, रोज रोज की यह बकझक तो खत्म होगी। शांत भाव से विट्ठल पंत बोले, सचमुच चला जाऊं? सच्चे मन से कह रही हो? उसी खीज में रुक्मिणी बोली, हाँ हाँ चले जाओ। और अगले दिन विट्ठल का कहीं पता न था। रातों रात गांव से चलकर वे सीधे वाराणसी आ पहुंचे, स्वामी रामानंद के शिष्य बन गए तथा उनसे संन्यास की दीक्षा ली। संन्यास की दीक्षा लेने के महान लोभ में उन्होंने एक झूठ भी बोला। उन्होंने अपने गुरु को बताया कि वे विवाहित नहीं हैं और न ही उनका कोई आश्रित है। कुछ समय बाद महाराष्ट्र के कुछ तीर्थयात्रियों ने सिद्ध पंत को बताया कि उनके दामाद सन्यासी होकर वाराणसी में स्वामी रामानंद के पास विराज रहे हैं। रुक्मिणी स्वामी रामानंद के पास पहुंची और अपनी व्यथा कथा सुनाकर उनसे अपना सुहाग सुख आशीर्वाद स्वरूप चाहा। झूठ बोलने के लिए उन्होंने विट्ठल को फटकारा और उदार चित्त से उसे फिर से गृहस्थ में दीक्षित कर दिया। इसके बाद की कहानी अत्यंत मर्मस्पर्शी है। गांव लौटते ही उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया। रुक्मिणी को बड़ा धक्का पहुंचा। उन्होंने पति का साथ दिया। वे दोनों अत्यंत दयनीय दशा में जीवन बिताने लगे। कालक्रम से उन्हें संतान प्राप्त हुई, निवृत्ति, ज्ञान, मुक्ति और सोपान। लेकिन विट्ठल रुक्मिणी की संतानों को कट्टरपंथियों ने स्वीकार नहीं किया और इस महापाप के प्रायश्चित के लिए डूब मरने की सलाह दी। फलतः उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को भगवान भरोसे छोड़ा और उस व्यवस्था के अनुसार जल समाधि ग्रहण कर प्रायश्चित किया, उस पाप का जो वास्तव में उन्होंने किया ही नहीं था। तीनों भाइयों और बहन मुक्ताबाई ने निष्ठुर कट्टरपंथियों के अत्याचार सहे, किंतु बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। निवृत्ति नाथ ने नाथ पंथ के गुरु गोहिन नाथ से रहस्यवाद की दीक्षा ली। अन्य भाई बहन भी उनके अनुयायी हुए। 21 वर्ष की अवस्था में संत ज्ञानेश्वर ने आळंदी में जीवित समाधि ली। मुक्ताबाई ने अनेक भक्ति पदों की रचना की और सन 1296 में बेरूत के पास माणगांव में निर्वाण प्राप्त किया। मुक्ताबाई का काव्य प्रमाणित करता है कि उन्हें वेदांत दर्शन का भी अच्छा ज्ञान था। मुक्ताबाई का कहना था, वही सच्चा संत है जो दया और क्षमा का भंडार है, जिसके हृदय में लिप्सा और अहंकार लेश मात्र नहीं है। जिनका हृदय पवित्र है, परमेश्वर उनसे दूर नहीं है। परमेश्वर किसी हाट बाजार में धन दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। उसे पाने का अधिकार तो सच्चे और सदाचारी व्यक्ति को ही है। वह किसी शिक्षा या उपदेश से नहीं मिलता। मनुष्य स्वयं अपनी आत्मा से ही उसकी अनुभूति कर सकता है।
1: ये था आज का विचार बिंदु। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा। गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर, कारण, लक्षण और बचाव, इस विषय पर आइए सुनते हैं डॉक्टर अनुराधा रॉय से ये जानकारी।
2: नमस्कार श्रोता बंधु, मैं डॉक्टर अनुराधा रॉय, प्रोफेसर प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, आयुर्वेद, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब आइए देखते हैं कि इसको रोकथाम या प्रिवेंशन के क्या उपाय हैं। रोकथाम का सबसे महत्वपूर्ण या बहुत अहम भूमिका हम कह सकते हैं वो है HPV का टीकाकरण, जिसको हम HPV वैक्सीनेशन कहते हैं। HPV वैक्सीनेशन या टीकाकरण रोकथाम का सर्वोत्तम उपाय में से एक माना गया है। ये टीकाकरण दो फॉर्म्स में या दो प्रकार के आते हैं, एक गार्डासिल और दूसरा सर्वरिक्स। इसे अगर यौन संबंध शुरू होने के पहले लगवाया जाए तो ज्यादा प्रयोग या उसका ज्यादा इफेक्ट हमें बच्चियों में मिलता है। साथ ही साथ दूसरा नियमित जांच का होना, जांच से कैंसर के पहले ही घावों को जल्दी पता चल जाता है, जिससे कि उसके रोक रखाव और साथ ही साथ उसके ट्रीटमेंट या

0: उसके जो है मैनेजमेंट में बहुत फायदा मिल जाता है। साथ में अगर हम देखें कि सुरक्षित यौन संबंध के प्रति भी जागरूकता बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है या जरूरी है, जिससे कि महिलाओं को पता चले कि एक से अधिक यौन साथी का ना होना ज्यादा बेहतर है, जननांगों की स्वच्छता कैसी रखनी चाहिए और हमेशा रखनी चाहिए, इन सारी बातों पे ही उस पे ध्यान देना जरूरी है। साथ ही साथ जीवन शैली संबंधी उपाय जैसे धूम्रपान से बचना चाहिए, फल सब्जी या पौष्टिक आहार लेने चाहिए, जिससे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और साथ ही साथ इस तरह के इन्फेक्शन से भी बचाव संभव। अब किसी को अगर ये इन्फेक्शन की वजह से कैंसर चाहे किसी भी पड़ाव में हो अगर हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट या उसका जो है मैनेजमेंट क्या होगा। इसका जो ट्रीटमेंट है ये डिपेंड करता है कि कैंसर की किस अवस्था या पड़ाव में वो है। पहला पड़ाव जो होता है जिसको हम कहते हैं प्री कैंसरस लीजन, जिसमें कैंसर अभी पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हुआ होता है, उसमें क्रायोथेरेपी, लीप, लेजर थेरेपी, कोनाइजेशन, ये सारी विधियां या पद्धति का इस्तेमाल होता है। दूसरा पड़ाव या अर्ली सर्वाइकल कैंसर जो कि प्रारंभिक रूप है, उसमें सर्जरी मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है जिसमें हिस्टरेक्टोमी और रेडिकल हिस्टरेक्टोमी का एडवाइस दिया जाता है महिलाओं को। और तीसरा दैट इज एडवांस सर्वाइकल कैंसर, जहां पे रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, ये सारी जो पद्धतियां हैं उससे उनका परामर्श दिया जाता है। वो फिर डिपेंड करता है कि महिला किस कंडीशन में है, किस पड़ाव में और बाकी बहुत सारे उनके स्वास्थ्य रिलेटेड चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा उनको ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट दिया जाए। साथ ही साथ अगर हम पूछे कि भारतवर्ष में क्या भारत सरकार की तरफ से कोई ऐसा नेशनल प्रोग्राम या राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत सर्वाइकल कैंसर या गर्भाशय ग्रीवा कैंसर का जो है वो देखा जाता है या उससे रिलेटेड जानकारियां मिलती है, इसका जवाब है हाँ बिल्कुल है। जिसमें सबसे पहला आता है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसे हम कहते हैं NPNCD, जो पहले इसी का नाम था NPCDCS, दैट इज नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, और उसी को अभी नाम बदल के NCD कर दिया गया है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो कैंसर को भी जो है ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में रखा गया है और इसके जो मुख्य ऑब्जेक्टिव या उसके जो मुख्य आयाम है उसमें सबसे पहला है कि प्रिवेंशन, रोकथाम और अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर।
1: स्वास्थ्य चर्चा में आप सुन रहे थे गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर, कारण, लक्षण और बचाव। इस विषय पर जानकारी दे रही थी डॉक्टर अनुराधा राय। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ।

परशुराम और लक्ष्मण के वाक युद्ध से स्थिति बिगड़ती देख श्री राम ने ऋषि की क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए क्षमा याचना की। बालक यदि चपरता भी करते हैं तो गुरुजन तथा माता पिता के हृदय में आनंद उत्पन्न होता है, अतः समदर्शी सुशील धैर्यवान तथा ज्ञानी मुनि होने के नाते उन्हें इस अबोध दुधमुहे बच्चे को क्षमा कर देना चाहिए। किंतु तभी लक्ष्मण ने मुनि को एक बार फिर छेड़ा। खड़े खड़े मुनिवर के चरण दुख गए होंगे, सो उन्हें क्रोध त्याग कर बैठ जाना चाहिए। यदि टूटा हुआ धनुष उन्हें इतना ही प्रिय हो तो किसी गुणी को बुलवाकर उसे जुड़वा देने का उपाय करना चाहिए। स्थिति गंभीर होते देख राजा जनक समेत

उपस्थित जन आतंकित और भयभीत हो गए। श्री राम के शीतल वचन सुनकर परशुराम जी ने कहा, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं, किंतु ये मन का मैला और शरीर से वैसा ही सुंदर है जैसे विष से भरा सोने का कलश। श्री राम ने एक बार फिर उनका क्रोध शांत करने के उद्देश्य से उन्हें सच्चाई से अवगत कराया कि वो नाहक ही उस बालक पर क्रोध कर रहे हैं, वास्तविक दोषी तो स्वयं राम है, और जिस प्रकार भी मुनि का क्रोध समाप्त हो वो सभी उपाय करने को तत्पर हैं, किंतु मुनि का क्रोध दूर भी हो तो कैसे, लक्ष्मण तो अब भी उन्हें टेढ़ी दृष्टि से ही ताक

श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ का प्रसारण आप आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से सुन रहे थे। आज के गायक कलाकार थे रविंद्र साठे और श्रीकांत परगांवकर। कार्यक्रम विवरण में आइए हम आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। आज दिन में 11 बजे आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात और रात्रि 10 बजे आप सुनिएगा अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा। ये दोनों ही कार्यक्रम आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर सुनेंगे उस्ताद अली अहमद हुसैन का शहनाई वादन। गुड मॉर्निंग बनारस सुबह 7 बजे, मधुरिमा सुबह 8:45 पर। दिन में 12 बजे सुनिएगा हेलो फोन इन फरमाइश, प्रस्तुति होगी शैलेश दुबे की। और दिन में 1:30 बजे सुनिए लोक रंग।

सामुदायिक गान शिक्षा पाठ असमिया भाषा में प्रसारित होगा सुबह 10:10 पर, दिन में 1:15 बजे। आज इतवार है, में श्री ठाकुर प्रसाद सिंह की झलकी आप सुनेंगे, छटंकी गुरु। प्रस्तुत करता है विश्वनाथ पांडे।

ये आरोग्यम। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे न्यूरो और स्पाइन के रोग विषय पर, कारण लक्षण और इलाज। इस विषय पर डॉक्टर अवनीश राय से शिखा श्रीवास्तव की बातचीत आप सुनेंगे।

शाम 5 बजे बच्चे सुनेंगे बाल गोपाल, शाम 5:15 बजे युववाणी कार्यक्रम में युवा साथी सुनेंगे आज की बात युववाणी कैंपस से, यूथ डायरी, विश्व घटना चक्र, रोजगार सूचना और सुनिएगा गीत संगीत। शाम 6:30 पर किसान भाई कृषि जगत कार्यक्रम में प्रसव काल में पशुओं की देखभाल विषय पर सुनेंगे डॉक्टर आलोक पांडे और सुधीर कुमार श्रीवास्तव की बातचीत। साथ ही होगा कल्पना चटर्जी का गाया लोकगीत। कल्पना चटर्जी के गाए लोकगीत आप 9:50 पर भी सुनिएगा। शाम 7:31 पर श्रोता अपने प्रश्नों के उत्तर सुनेंगे कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद में। इस कार्यक्रम में आपके साथ होंगे अरुण पांडे और सना सलीम। और रात्रि 8 बजे सुगम संगीत में सुनवाए जाएंगे मनहर उदास की गाई गजलें।

एक बार हम आपको पुनः याद दिला दें, आज दिन में 11 बजे आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात, जिसे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कार्यक्रम विवरण में आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6:55 हो रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: Good morning, Banaras!
1: सुप्रभातम बनारस। और भाई क्या हालचाल, सब चकाचक ना? तो गुरु हो जाइए शुरू, क्योंकि शुरू हो चुका है आपका नंबर वन रेडियो प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस, आपकी वाणी आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से।

एक बार फिर आपके अपने बनारसी बाबू के साथ तो संडे को बनाते हुए फंडे आइए करते हैं आगाज आज के इस प्रोग्राम का। आप सभी को बनारसी बाबू का नमस्कार। बनारस, आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से। एक संत जब भी ध्यान लगाने बैठते कोई न कोई व्यवधान आ ही जाता। कभी कोई शोर होने लगता तो कभी किसी की बातचीत की आवाजें। संत महाराज चिड़चिड़ा उठते और गुस्से से भर जाते। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वो अपने मठ से दूर कहीं ध्यान लगाएंगे। पहले उन्होंने सोचा कि चलो घने जंगल में चलूं। घनघोर जंगल में जाकर वे ध्यान लगाने बैठ गए। बड़ी शांति थी वहाँ पर। संत जी ध्यान की गहराइयों में उतरने ही वाले थे कि कोई पंछी बड़े जोर से आवाज करते हुए गुजरा। उसकी आवाज सुनकर बाकी पक्षी और जानवर भी हल्ला करने लगे। अब संत जी के गुस्से का ठिकाना नहीं। बड़बड़ाते हुए संत महाराज उठ खड़े हुए और वहाँ से चल दिए। उन्होंने सोचा क्यों न पानी में चलें, वहाँ तो कोई व्यवधान न मिलेगा। ये विचार कर संत जी एक विशाल झील के पास पहुँचे। झील का पानी शांत और स्वच्छ था।

बड़ा ही मनोरम वातावरण था। उन्होंने आशा पूर्वक एक नाव खोली और खेते हुए झील के मध्य जा पहुँचे। वाकई यहाँ कोई शोर सुनाई न देता था। वे बहुत प्रसन्न हुए और नाव में ही ध्यान लगाकर बैठ गए। आधे घंटे हुए थे कि अचानक संत जी की नाव में एक ठोकर लगी। बंद आँखों के अंदर ही संत जी गुस्से से भरने लगे। उन्होंने मन में सोचा, कौन लापरवाह

उन्होंने मन में सोचा, कौन लापरवाह नाविक मेरी ध्यान साधना भंग करने अटका। वो आंख खोलते ही उस पर बरसते, मगर जब उन्होंने आंखें खोली तो आश्चर्यचकित रह गए। वो एक खाली नाव थी जो उनकी नाव से अटकराई थी। हो सकता है घाट पर कोई नाव खुली रह गई थी जो हवा के बहाव से धीरे धीरे बहते हुए उनकी नाव के पास आ गई। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। उसी क्षण संत जी को ये बात समझ आ गई कि क्रोध तो उनके भीतर ही भरा है, बस कोई बाहरी उत्प्रेरक मिलते ही वह बाहर आ जाता है। इस घटना के बाद जब भी उन संत को कोई गुस्सा दिलाता या नाराज करता, वो स्वयं को याद दिलाते कि ये आदमी भी एक खाली नाव ही है, गुस्सा तो मेरे ही भीतर भरा है। बनारस, यदि देखा जाए तो गुस्सा, लालसा, काम, क्रोध, ये हमारे भीतरी विकार हैं, हमारे भीतर ही छुप कर रहते हैं। अक्सर होता ये है कि हम इन पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं और इसके लिए दोष दूसरों को देते हैं। ये उसी तरह है कि हमने आग की लुआठी को कसकर पकड़ रखा है और फिर कहते हैं कि हमें जला रही है। और इसी तरह होती हैं हमारी आदतें भी। हम खुद आदतें बनाते हैं और फिर कहते फिरते हैं कि ये हमें छोड़ नहीं रही हैं। चाहे वो देर तक सोना हो, देर तक जागना हो, देर रात खाना हो, बहुत ज्यादा मोबाइल चलाना हो या फिर धूम्रपान करना हो। वैसे तो किसी भी प्रकार का धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन हम खुद को धोखा देते हैं कि अरे एक बार से क्या होगा, अच्छा चलो आज भर कर लेते हैं, कल से नहीं करेंगे। और होता ये है कि वो कल कभी आता नहीं और हम उसके अभ्यस्त होते चले जाते हैं। नहीं, गलत बात। बच्चन साहब का ये गाना याद है ना?

0: जी हाँ, इसी से कह रहे बुरी आदतों को छोड़िए और ऐसा करने के लिए आज से अच्छा दिन कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि आज है विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड नो टोबैको डे। तंबाकू हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना ज्यादा नुकसानदेह है बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं महामना कैंसर हॉस्पिटल के पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर स्वप्निल पटेल। तो आइए उन्हें सुन लेते हैं।
1: नमस्कार सभी को, मेरा नाम डॉक्टर स्वप्निल पटेल है। मैं एक कैंसर सर्जन हूँ। एम्स दिल्ली और टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई से ट्रेनिंग लेने के बाद मैं विदेश में कैंसर सर्जरी की स्पेशलाइज ट्रेनिंग लेने गया था, जिसमें स्टेज 4 कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है और लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक विधि से कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। मैं और मेरी टीम का निरंतर प्रयास रहता है कि हर प्रकार के कैंसर का कंप्लीट ट्रीटमेंट दिया जा सके। वर्ल्ड नो टोबैको डे के उपलक्ष्य पर, जो कि 31 मई को मनाया जा रहा है, मैं सबको एक इम्पोर्टेंट संदेश देना चाहूंगा। आप खुद टोबैको और टोबैको के दुष्प्रभाव से बचें और अपने साथ साथ अपने परिजनों, अपने दोस्तों को भी बचाएं। टोबैको एक नहीं अनेकों प्रकार से आपके शरीर को नष्ट करता है, जिसमें जो बीमारियां होती हैं उनको बोला जाता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, हार्ट की बीमारियां, लंग फाइब्रोसिस की बीमारी, स्ट्रोक की बीमारी और साथ ही साथ कैंसर जैसी जटिल और गंदी बीमारियां। टोबैको का यूज, चाहे वो स्मोकिंग हो, गुटखा हो, पान हो, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, इससे ओरल कैंसर होते हैं, हेड नेक कैंसर होते हैं, गले के कैंसर होते हैं, साथ ही साथ लंग कैंसर होता है, इसोफेगस कैंसर होता है, स्टमक कैंसर होता है और ना जाने कितने अन्य प्रकार के गंदे कैंसर होते हैं। तो ये मैसेज सबके लिए, अगली बार अगर आप खुद टोबैको का सेवन कर रहे हैं या अपने मित्र या अपने परिवार में किसी को देख रहे हैं, तो उनको इन कैंसर के बारे में जरूर बताएं और डराएं। इस बार वर्ल्ड नो टोबैको डे का उपलक्ष्य पे जो थीम है उसको बोल रहे हैं अनमास्किंग द अपील। टोबैको के लिए सबसे ज्यादा ससेप्टेबल जो जनता होती है वो होती है यंग एडोलसेंट्स, यंग पीपल, 13 से 15 साल का उम्र, जिसमें आकर्षण गंदी चीजों के लिए ज्यादा रहता है, जिनमें से एक बुरी आदत नशा टोबैको भी होता है। तो हमें इस वर्ल्ड टोबैको डे पे वो सब आकर्षित करने वाली जो तरीके हैं टोबैको कंपनीज के, उनका खंडन करना है। ये हमारा एम है, ताकि हम अपनी यंग जनरेशन को टोबैको और टोबैको के दुष्प्रभाव से बचा सकें। तो प्लीज इस वर्ल्ड नो टोबैको डे पे

0: ये प्रण लें कि आप खुद भी टोबैको का सेवन नहीं करेंगे और अपने घर वालों और मित्र यारों को भी नहीं करने देंगे। इसके बाद अगर कोई जानकारी में है जो ये कर रहा है इसका सेवन या किया हुआ है पहले, प्लीज उसको बोलें कि अपने शरीर में कैंसर की स्क्रीनिंग कराएं, ताकि अगर कोई शरीर में अंदर कैंसर पनप रहा है तो तुरंत जल्दी पता लग सके। इसके लिए बहुत रिसेंटली सुविधाएं अवेलेबल है, जैसे सीटी स्कैन की स्क्रीनिंग लंग कैंसर के लिए, ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग और अन्य कई प्रकार के स्क्रीनिंग की टेक्निक्स। तो एक पुनः आग्रह करना चाहूंगा सबसे, अपने हेल्थ के प्रति प्लीज जागरूक रहें और अपने लिए और अपने परिवार के लिए और यारों दोस्तों के लिए एक सुरक्षित एनवायरनमेंट बनाएं। थैंक यू, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे महामना कैंसर हॉस्पिटल वाराणसी के फॉर्मर एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर स्वप्निल पटेल को। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।

जी हाँ, आज का जो यह दिन है ये चांस देने का दिन है। अपने आप को भी चांस दीजिए। ऐसे लोग जो धूम्रपान के अभ्यस्त हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वे शायद इस पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। यू कैन ऑल्सो ग्रोन अप वंस अगेन, सो यू शुड ट्राई टू इट। और अब चलते हैं बनारस आगे। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस, आपकी वाणी आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। और अब बातें देश दुनिया और अपने शहर बनारस की। बनारस गर्मी में बिजली संकट झेल रहे उपभोक्ताओं को जून में आने वाला बिल बड़ा झटका दे सकता है। जी हाँ, इस बिल में 10% सरचार्ज जुड़कर आएगा। अगर किसी का बिजली बिल 1,000 रूपए हुआ है तो उसे 1,100 रूपए देने होंगे। ये वसूली ईंधन अधिभार में की जा रही है। आरोप है कि पावर कॉरपोरेशन ने बीते 2 साल का बकाया 1,400 करोड़ रूपए भी अधिभार शुल्क में जोड़ लिया है और इससे 10% की वसूली होगी। अगले महीने भी 10% बिल बढ़कर आने की संभावना है। जमीनों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए प्रशासन नए सर्किल रेट के लिए सर्वे शुरू कराने जा रहा है। 1 जून से लेखपाल और सब रजिस्ट्रार की संयुक्त टीम फील्ड में पुराने रेट की समीक्षा करेगी। माहभर सर्वे के आधार पर 1 जुलाई से नया रेट निर्धारित किया जाएगा। जनपद में वर्ष 2019 के बाद से जमीनों के सर्किल रेट में संशोधन नहीं हुआ है। 7 वर्ष पुराने रेट पर ही भवनों और जमीनों की रजिस्ट्री हो रही है। और बनारस से एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से जारी अधिसूचना के तहत दीवानी कोर्ट 1 जून से यानी कल से प्रातःकालीन पाली में संचालित होगी। सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक काम होंगे। ये जानकारी जिला जज कार्यालय से जारी सूचना के द्वारा प्राप्त हुई है। और साथ ही विद्युत वितरण खंड चिरई गांव के कैश काउंटर रविवार को भी यानी आज खुले रहेंगे। उपभोक्ता अपने नजदीकी उपकेंद्र या जनसुविधा केंद्र पर जाकर बकाया बिल का भुगतान कर सकते हैं। ऑनलाइन मोबाइल ऐप के जरिए भी पेमेंट किया जा सकता है। और आपको यदि मौसम का हाल बताएं तो मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक शनिवार को बनारस और आसपास के जिलों में न आंधी आई न बादलों की गर्जना हुई। पूरे दिन बादलों की आवाजाही से मौसम में गर्मी की तलखी नहीं रही, लेकिन वे कभी भी बरसने के मूड में नहीं दिखे। हालांकि रविवार और सोमवार को भी थंडर स्टॉर्म का येलो अलर्ट जारी हुआ है, लेकिन बादल बिजली के रौद्र रूप लेने की संभावना कम ही है। और अब खबरें खेल जगत से। आईपीएल 2026 का कारवां आज अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। आज गुजरात टाइटंस और बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स के बीच जंग होगी। अहमदाबाद में बेंगलुरु लगातार दूसरा खिताब जीतने उतरेगी, तो 5 वर्षों में तीसरी बार फाइनल में पहुंची गुजरात घर में वर्चस्व कायम करना चाहेगी। तो बनारस ये था देश दुनिया अपने शहर बनारस का हालचाल। और अब चलते हैं आगे और जान लेते हैं बातें गुजरे

0: हुए कल की।
1: बनारस आज ही के दिन बंबई में 1867 को आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे ने केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य एकेश्वरवाद का प्रसार करना, जाति प्रथा का विरोध करना, स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना था। आज जन्मदिन प्रसिद्ध पत्रकार लाला जगत नारायण और विनोद मेहता, मराठी रंगमंच के नाटककार अण्णा साहेब किर्लोस्कर और सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक राज खोसला। साथ ही आज पुण्यतिथि स्वाधीनता सेनानी विचित्र नारायण शर्मा, समाज सुधारक संतराम बीए और सुप्रसिद्ध संगीतकार अनिल विश्वास और पार्श्व गायक के की। बनारस के भारतीय संगीत इतिहास में अपनी सुंदर और मीठी आवाज के लिए हमेशा याद किए जाते रहेंगे। अपने पूरे करियर में 700 से अधिक गाने गाए इस कलाकार ने। कृष्ण कुमार कुन्नत भारतीय संगीत के जगत में एक ऐसे सितारे थे जिनकी आवाज ने अनगिनत श्रोताओं के दिलों को छू लिया। 23 अगस्त 1968 को दिल्ली में जन्मे और 31 मई 2022 को कोलकाता में आपने आखिरी सांसें ली।

0: और अब बनारस ही चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर, और जिसका रहता है आपको इंतजार और जिसका नाम है
1: काशी कथा।
0: जी हाँ, बनारस काशी कथा। बनारस आज है जन्म जयंती एक ऐसी वीरांगना नारी की जिसने काशी को उसका वर्तमान वैभव दिया और जिनका नाम है रानी अहिल्याबाई होलकर। मराठा साम्राज्य के महेश्वर नगरी के राजा मल्हार राव होलकर के पुत्र मार्तंड होलकर की पत्नी रानी अहिल्याबाई होलकर ने मुख्य रूप से काशी में यवनों द्वारा ध्वस्त कर दिए गए विश्वनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना कराई थी। रानी का यह कार्य इतना महत्वपूर्ण था कि इसने रानी को काशी के इतिहास में अमर बना दिया। काशी कथा में आज बात विश्वनाथ मंदिर के इसी इतिहास की। जैसा कि आपको पता है कि यवनों द्वारा अनेकों बार ध्वस्त किए गए विश्वनाथ मंदिर को अकबर के समय राजा मानसिंह और टोडरमल के सहयोग से पंडित नारायण भट्ट द्वारा फिर से बनवा दिया गया था, लेकिन सन 1669 में इसे एक बार फिर से ध्वस्त कर दिया गया। बाद में जब मुगलों का प्रभाव कम हुआ और अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा, तब रानी अहिल्याबाई काशी पधारी और विश्वनाथ मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू कराया। इस काम में अनेक बाधाएं आईं, लेकिन रानी के संकल्प शक्ति को डिगा नहीं पाई। आपने सबसे पहले ज्ञानवापी क्षेत्र में जमीन खरीदी और उसके बाद अवध के नवाब से मंदिर निर्माण की अनुमति प्राप्त की। आपकी संकल्प शक्ति ने ही सन 1777 में भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी सोमवार के दिन रोहिणी नक्षत्र और हर्षण नामक योग में मूर्त रूप ग्रहण किया। मंदिर बनकर तैयार हो गया और शास्त्रीय विधि विधान से मंदिर में देवताओं का आवाहन किया गया। मंदिर में लगे शिलालेख के अनुसार महारानी अहिल्याबाई ने जयराम शर्मा द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया। उनके कहने से अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने विश्वनाथ मंदिर में नौबत खाना बनवाया, जो कि आज भी कार्यरत है। आगे चलकर 1839 में पंजाब केसरी महाराजा रणजीत सिंह ने 22 मन सोने से मंदिर के दोनों शिखरों को स्वर्ण मंडित कराया। ज्ञानवापी का मंडप सन 1828 में चामजी अप्पा ने बनवाया। रानी अहिल्याबाई ने काशी में एक घाट और एक ब्रह्मपुरी भी बनवाई थी। दुर्गा कुंड स्थित दुर्गा कुंड का तालाब भी रानी अहिल्याबाई ने ही बनवाया है। काशी के विकास में रानी अहिल्याबाई के अनेक योगदान हैं, लेकिन उनके द्वारा विश्वनाथ मंदिर के निर्माण कार्य ने रानी को काशी के इतिहास में अमर कर दिया। तो काशी कथा में आज बस इतना ही।
1: काशी कथा।
0: और अब बनारस इसी के साथ दीजिए अनुमति अपने बनारसी बाबू को। नमस्कार बनारस, आपका दिन शुभ हो।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। थोड़ी देर में 7:20 से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में किया नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण। रक्षा मंत्री ने कहा, डिफेंस कॉरिडोर के जरिए रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बन रहा है प्रदेश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ग्रेटर नोएडा में स्टार्टअप लोहम का किया दौरा। कहा, लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों तथा उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा लोहम। और प्रदेश भर में आज आयोजित होगी उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा। हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम के जरिए होगी परीक्षा केंद्रों की निगरानी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर यह कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ के CG सिटी में 9 करोड़ रुपए की लागत से 2 एकड़ से अधिक क्षेत्र में निर्मित नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ राष्ट्रभक्ति और सैन्य गौरव का प्रतीक बन रहा है। श्री सिंह ने कहा कि नौसेना शौर्य वाटिका केवल बनावट का नमूना भर नहीं है, ये सबको सेनाओं के संघर्ष और योगदान को स्मरण कराएगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत का रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर होने की ओर तेजी से बढ़ रहा है, इसमें उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर की अहम भूमिका है।
1: हमने यहाँ पर लखनऊ में DRDO की प्रयोगशालाएं भी प्रारंभ की हैं। डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से उत्तर प्रदेश भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है और यहाँ लखनऊ में ब्रह्मोस का भी निर्माण हो रहा है और भी कई तरह से उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर रहा है।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री

0: योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय सैनिकों की वजह से 140 करोड़ भारतवासी चैन की नींद सोते हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही जन कल्याण एवं विकास योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंच प्रण के संकल्प से जुड़कर विकसित भारत की संकल्पना साकार हो सकती है।
1: देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने विकसित भारत की जिस संकल्पना को हमारे सामने रखा है, उसमें उन्होंने हर भारतवासी से कहा कि विकसित भारत के लिए हर नागरिक को पंच प्रण के साथ जुड़ना पड़ेगा। वे जो पंच प्रण है उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है, अपनी सेना के प्रति और यूनिफॉर्म धारी फोर्स के प्रति सम्मान का भाव हमारे मन में हो।
0: भारतीय नौसेना और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में विकसित ये परियोजना अत्याधुनिक ओपन एयर म्यूजियम और इंटरप्रिटेशन सेंटर के रूप में तैयार की गई है। नौसेना शौर्य वाटिका में भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त युद्धपोत INS गोमती को स्थापित किया गया है। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान कल से शुरू होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इस अभियान को राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए AI सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉ. सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR_JKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों तथा उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
2: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहाँ से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीनें जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीनें जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की NDA सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश में 5 जून से 21 जून तक विकास, सेवा, सुशासन और जनकल्याण की उपलब्धियों को समर्पित व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बैठक कर अभियान की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
3: अभियान के तहत 5 जून से 21 जून के बीच प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 10 किलोमीटर की प्रगति पथ यात्रा आयोजित की जाएगी। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण और 8 जून से 14 जून तक जनसंपर्क अभियान, संवाद कार्यक्रम और पैदल मार्च आयोजित किए जाएंगे। 11 से 14 जून तक मीडिया संवाद कार्यक्रम होंगे। 14 से 16 जून के बीच जन कल्याण मेलों का आयोजन होगा। वहीं 16 और 17 जून को जिला स्तर पर विकसित भारत संकल्प सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। 18 और 19 जून को केंद्र सरकार की 12 वर्षों की विकास यात्रा तथा विकसित भारत के संकल्प को प्रदर्शित करने के लिए विशेष प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट इक्विटी पोर्टल कल 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। अयोध्या स्थित डोगरा रेजिमेंटल सेंटर में कल अग्निवीर योजना के तहत 7वें बैच के 835 अग्निवीर जवानों ने सफलतापूर्वक अपना सैन्य प्रशिक्षण पूरा कर लिया। डोगरा रेजिमेंटल सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर जितेंद्र शर्मा ने बताया कि सभी जवान सेना में विभिन्न मोर्चों पर तैनात कर दिए जाएंगे।
4: 835 अग्निवीर जो है वो पासिंग आउट होके अपनी अपनी यूनिटों में को ज्वाइन करेंगे। हम जाति के साथ

0: भी अग्निवीर सिंह को वो जो अपना कार्य है वो करना पड़ेगा और उसके लिए यहाँ पर हमने इन्हें ट्रेन करा है और मुझे विश्वास है कि अपना ये कार्य अच्छे ढंग से ये पूरा करेंगे।
1: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जून महीने में बिजली बिल पर 10% का अतिरिक्त फ्यूल एवं पावर परचेस एडजस्टमेंट सरचार्ज लागू करने का निर्णय लिया है। अगले महीने उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिल में 10% अधिक भुगतान करना होगा। प्रदेश भर में आज उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा में 72 जिलों में स्थापित 1011 परीक्षा केंद्रों पर कुल 4,44,958 अभ्यर्थी प्रतिभाग करेंगे। परीक्षा 2 पालियों में संपन्न होगी। निगरानी के लिए एक हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया है। परीक्षा को लेकर प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज हवा चलने और वर्षा होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मुरादाबाद, फर्रुखाबाद और अमरोहा में कल रात आंधी के साथ गरज चमक के बीच बारिश होने की खबर है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ वर्षा का अनुमान जताया है, जबकि कई जगहों पर तेज हवा के साथ बिजली कड़कने की भी आशंका जताई गई है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में किया नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण। रक्षा मंत्री ने कहा, डिफेंस कॉरिडोर के जरिए रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है प्रदेश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ग्रेटर नोएडा में स्टार्टअप लोहम का किया दौरा। कहा, लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों तथा उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा लोहम। और प्रदेश भर में आज आयोजित होगी उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा। हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम के जरिए होगी परीक्षा केंद्रों की निगरानी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
3: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
2: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है उस्ताद अली अहमद हुसैन व साथी का शहनाई वादन। राग है देसी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं कुमार लाल मिश्रा।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे उस्ताद अली अहमद हुसैन का और साथियों का शहनाई वादन। राग था देसी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे कुमार लाल मिश्रा। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से सुन रहे थे। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे, कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने

0: में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डर कर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
0: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमार के राष्ट्रपति

0: क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन औंगलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रुपए प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13.50 रुपए प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
2: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस है जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर की हैं ऑन दी अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा उनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
0: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए

0: 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम गेब्रेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचल क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
1: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष दो में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से एक अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर आल्फियान की जोड़ी से होगा।
0: केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले दो दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवलीन। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमरीका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमरीका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमरीका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि ये गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के

0: करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है। IPL के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल पर नवभारत टाइम्स लिखता है, घर गुजरात का, दिलों पर RCB का कब्जा। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते असर को हिंदुस्तान ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि 9 से 17 वर्ष के 49% बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो उन पर बुरा असर डालता है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में डूब के रहने के लिए किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति उमिन नाउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। और IPL क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. Defence Minister Rajnath Singh says Indian Navy forced Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Myanmar's President U Min Aung Hlaing arrives in New Delhi on a 5-day visit to India, offers prayers at Mahabodhi Temple in Gaya. Centre notifies levies on exports of petrol, diesel and aviation turbine fuel for fortnight beginning tomorrow. IMD forecasts heavy rainfall over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Wednesday. And in cricket, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in IPL 2026 final in Ahmedabad this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 134th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Defence Minister Rajnath Singh has said that the Indian Navy forced the entire Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Addressing the inauguration ceremony of the Nausena Shaurya Vatika, an open-air naval museum in Lucknow, he said the Navy played a significant role in maintaining pressure on Pakistan during Operation Sindoor. The Defence Minister said Indian Navy was deployed in the Arabian Sea with full preparedness and strength, maintaining constant pressure on the adversary. He said as a result, Pakistan's entire Navy remained confined to its ports.
3: The cowardly terrorist attack in Pahalgam last year outraged the entire nation and stirred deep emotions across the country. In response, all three branches of the Indian Armed Forces launched Operation Sindoor, targeting and neutralizing terrorist infrastructure in Pakistan. While the Indian Army and the Indian Air Force played crucial operational roles in the mission, the Indian Navy remained strategically deployed in the Arabian Sea with full combat readiness, ensuring comprehensive support and preparedness throughout the operation.
2: Navy Chief Admiral Dinesh K. Tripathi also said that Indian Navy's immediate deployment of a carrier battle group and its forward operational posture in the Northern Arabian Sea forced the Pakistan Navy to remain confined to harbour or close to the Makran coast. President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, arrived in New Delhi last

0: make Asian Games cut promises to return to the mat. Economic Times says EV sales in fast lane, but Motortown treads the middle path. Less than half of new launches likely to be electric, as car makers unsure of transition best with multi-powertrain portfolio. Times of India cites Google fined for misdirecting searches to rivals' products. And finally, Times of India in a photo caption, Dhool Andar sweeps Rajasthan. Reports on the massive dust storm that barreled through several parts of Rajasthan, plunging several towns into darkness around 2 p.m. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. Defence Minister Rajnath Singh says Indian Navy forced Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Myanmar's President U Min Aung Hlaing arrives in New Delhi on a five-day visit to India, offers prayers at Mahabodhi Temple in Gaya. Centre notifies levies on exports of petrol, diesel and aviation turbine fuel for fortnight beginning tomorrow. IMD forecasts heavy rainfall over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Wednesday. And in cricket, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in IPL 2026 final in Ahmedabad this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के प्रोग्राम मन की बात के जरिए अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी बहरिया को उनकी बंदरगाहों तक महदूद कर दिया था। म्यांमार के सदर यू मिन ऑंग ल्हांग अपने पांच रोजा भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने गया के महाबुद्धि मंदिर में पूजा की। मरकजी हुकूमत ने कल से अगले 15 दिन तक के लिए पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाजों के ईंधन की बरामदात पर आयद होने वाले महसूलात को नोटिफाई कर दिया है। भारतीय महकमा मौसमियात ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकाल में बुध के रोज तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। और आईपीएल क्रिकेट 2026 के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला दिफाई चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के प्रोग्राम मन की बात के जरिए मुल्क और बैरूने मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 134वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर नशर किया जाएगा। इसके अलावा मन की बात को एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तलात नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। हिंदी नशरिए के फौरन बाद आकाशवाणी इस प्रोग्राम को मकामी जबानों में नशर करेगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी पाकिस्तानी बहरिया को उनकी बंदरगाहों तक महदूद कर दिया था। लखनऊ में ओपन एयर बहरी म्यूजियम नौसेना शौर्य वाटिका की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कल जनाब सिंह ने कहा कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखने में अहम रोल अदा किया। वजीर दिफा ने कहा कि बहरे अरब में भारतीय बहरिया को पूरी तैयारी और ताकत के साथ तैनात किया गया था, जिससे लगातार दबाव बना रहा। इसके नतीजे में पाकिस्तान की पूरी बहरिया अपनी बंदरगाहों तक महदूद होकर रह गई। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को शुरू किया गया था, जिसका मकसद पहलगाम दहशतगर्द हमले का बदला लेना था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौजों ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे पर मुतअद्दिद इंतहाई दुरुस्त हमले किए।
3: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डर कर अपने बंदरगाहों

0: में दुबक कर बैठ गई।
1: बहरिया के सरबरा एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहने, दूर तक कार्रवाई करने और जंग से बाज रखने की अपनी सलाहियत का भरपूर मुजाहरा किया। म्यांमार के सदर यूमिन ऑंग यिलैंग कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। इस मौके पर उमूर खारजा के वजीर मुमलिकत कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। इससे पहले म्यांमार के सदर अपने 5 रोजा भारत दौरे पर कल बिहार के बोधगया पहुंचे और महाबुद्धि मंदिर में पूजा की। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल शाम जनाब लियांग से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने देरीना दोतरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के तहत म्यांमार के सदर के मुस्बत रुझान की तारीफ की। म्यांमार के सदर कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे, जहां दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और सकाफती राबतों को मजीद मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मरकजी हुकूमत ने कल से अगले 15 दिन तक के लिए पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाजों की ईंधन की बरामदात पर आयात होने वाले महसूलात पर नजरसानी की है। इस कदम का मकसद मगरबी एशिया के बुहरान की वजह से जारी गैर यकीनी सूरत हाल के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की खातिरख्वाह घरेलू दस्तियाबी को यकीनी बनाना है। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
2: वजारत मालियात की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की बरामद पर 1.5 रुपया फी लीटर और डीजल की बरामद पर 13.5 रुपये फी लीटर की ड्यूटी आयद होगी। हवाई जहाज के ईंधन पर बरामदाती ड्यूटी 9.5 रुपये फी लीटर मुकर्रर की गई है। वजारत मालियात ने वाजे किया कि खसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी और सड़क बुनियादी ढांचा सेस पर मुश्तमिल बरामदाती लेवीज, जिन्हें इस साल 27 मार्च को मुतारिफ कराया गया था, का खाम तेल, पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज के ईंधन की औसत बैन अल-अक़वामी कीमतों की बुनियाद पर हर 15 दिन बाद जायजा लिया जाता है। तहम हुकूमत ने वाजे किया कि घरेलू खपत के पेट्रोल और डीजल की मौजूदा एक्साइज ड्यूटी में कोई तब्दीली नहीं की गई है। नजर सानीशुदा ड्यूटीज का कल से इतलाक होगा, जो अगले 15 दिन तक नाफिज रहेंगी। नई दिल्ली से विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
1: सरकार ने कपास की दरामद को अगले महीने की पहली तारीख से इस साल 31 अक्टूबर तक कस्टम्स ड्यूटी से आर्जी तौर पर मुस्तस्ना कर दिया है। एक नोटिफिकेशन में टेक्सटाइल्स की वजारत ने कहा है कि कपास के किसानों और कपास से मुतालिक पूरी वैल्यू चेन के मफाद को मलहूज खातिर रखते हुए यह फैसला किया गया है। इसमें कहा गया है कि अब जबकि कपास का सीजन नहीं है, तो इस कदम पर अमल दरामद से टेक्सटाइल सनत के लिए कपास की मुनासिब दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा सकेगा, एमएसएमई इदारों की मदद हो सकेगी, लागत को इतदाल पर लाया जा सकेगा और भारतीय टेक्सटाइल्स की मुसाबिकत को मुस्तहकम बनाया जा सकेगा। वजारत ने जोर देकर कहा है कि इस इकदाम से किसानों के मफादात का तहफ्फुज होगा और मार्केट में इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सकेगा। आज तंबाकू नोशी मुखालिफ आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद तंबाकू के इस्तेमाल के खतरात के तई बेदारी पैदा करना है। ये दिन तंबाकू के इस्तेमाल के खात्मे के लिए आलमी इदारे सेहत WHO की आलमी पहल है। इस साल के तंबाकू नोशी मुखालिफ दिन का उन्वान है निकोटीन और तंबाकू की लत से निमटना। पेश है एक रिपोर्ट।
2: तंबाकू नोशी मुखालिफ दिन मनाए जाने के हिस्से के तौर पर मरकजी सेहत सेक्रेटरी पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने जुमे के रोज नई दिल्ली में तंबाकू से पाक तालीमी इदारों टॉफी ऐप का पायलट वर्जन लॉन्च किया। इस ऐप का मकसद मुल्क के स्कूलों और कॉलेजों में तंबाकू मुखालिफ जाब्तों की निगरानी और निफाज को मुस्तहकम करना है। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए मोहतरमा श्रीवास्तव ने कहा कि मुल्क भर के अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, आयुष इदारों और दीगर सेहत देखभाल मराकज में 2000 से ज्यादा तंबाकू नोशी मुखालिफ मराकज कायम किए गए हैं। नई दिल्ली से चिराग झा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राममोहन नायडू ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम नस्ब किए जाने की सताइश की है। उन्होंने कहा कि स्काई कास्ट जैसे जदीद मौसमियाती निजाम कोहरे और खराब मौसमी हालात के दौरान परवाजों की कारकर्दगी को बेहतर बना सकते हैं। जनाब नायडू ने मजीद कहा कि इस टेक्नोलॉजी को मुल्क भर के मजीद हवाई अड्डों तक तौसी दी जाएगी, जिससे मुसाफिरों के सफरी तजर्बे को मजीद बेहतर बनाया जा सकेगा और सेफ्टी में इजाफा होगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब पीने के सानेहे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 21 हो गई है। मरने वालों में 7 अफराद का ताल्लुक पुणे शहर से और 14 अफराद का ताल्लुक पेचरी, चिंचोड़ और उर्वली कंचन इलाकों से है। इस मामले में अब तक 10

0: लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच की जिम्मेदारी सीआईडी को सौंपी गई है। इस मामले में बड़ी इंतजामी कार्रवाई करते हुए 22 अहलकारों को अपने फराइज के अंजामदही में मुबैना तौर पर लापरवाही बरतने पर मौतल कर दिया गया है। मौतल किए गए अहलकारों में 9 पुलिस अहलकार और रियासती आबकारी महकमे के 13 अफसरान शामिल हैं। जम्मू कश्मीर की वजीर सकीना इट्टू ने जम्मू डिवीजन के समर जोन के तहत आने वाले सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में 1 जून से 15 जुलाई तक गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान किया है। मोहतरमा इट्टू ने कहा कि जारी मौसम गर्मा के तनाजुर में यह फैसला लिया गया है ताकि तलबा तदरीसी अमले और कॉलेज अमले की बेहतरी को यकीनी बनाया जा सके। कौमी सेहत अथॉरिटी की जानिब से नाफिज करदा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत मुल्क भर में 90 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स आभा का तारीखी संगे मेल हासिल किया गया है। सेहत व खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा है कि एक मरबूत मुश्तरका तरीक़ेकार और शहरियों पर मरकूज डिजिटल सेहत इको निज़ाम की जानिब भारत के सफर में ये एक अहम पेशरफ्त है। वजारत ने कहा है कि 2021 में 14 करोड़ से ज्यादा आभा अकाउंट्स की तादाद बढ़कर इस साल 90 करोड़ हो गई है। आलमी इदारे सेहत WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस गेब्रियासिस ने जमहूरिया कांगो और युगांडा में इबोला की वबा फूट पड़ने के बाद सफरी पाबंदियां आयद करने या अपनी सरहदें बंद कर देने वाले ममालिक से इन इकदाम पर दोबारा गौर करने की अपील की है। जनाब गेब्रियासिस का कहना है कि इस तरह के इकदाम बीमारी से निमटने की कोशिशों में रुकावट बन सकते हैं। मशरकी कांगो के बुनिया में इजहार ख्याल करते हुए जनाब गेब्रियासिस ने कहा कि बुनिया के उनके दौरे का मकसद मुतासर बिरादरियों के साथ सीधे तौर पर मसरूफ अमल होना है और सबसे ज्यादा मुतासर इलाकों में बीमारी से निमटने की कोशिशों को मुस्तहकम करने में मदद करना है। जमहूरिया कांगो के सेहत हुकाम ने 900 से ज्यादा मुश्तबा इबोला मामलों में 200 से ज्यादा मुश्तबा अमवात रिपोर्ट की हैं। वहीं पड़ोसी युगांडा ने राजधानी कंपाला में नए इन्फेक्शन समेत मजमुई तौर पर 9 मामलों की तस्दीक की है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बुध के रोज तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके अलावा ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्सों में भी कल तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि मशरकी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ के कुछ मकामात पर आज छींटे पड़ने के साथ झालाबारी भी हो सकती है। वहीं दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ मकामात पर कल तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ आंधी चलने का इम्कान है। इस दौरान भारतीय महकमा मौसमियात ने कोंकण और गोवा में आज मौसम के गर्म और मरतूब रहने का इम्कान जाहिर किया है। मौसमियाती एजेंसी ने अगले 2 दिन के दौरान राजस्थान के मुख्तलिफ मकामात पर धूल भरी आंधी चलने की भी पेशगोई की है। केरलम में शदीद बारिश के इम्कान के तहत 6 जिलों में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 4 दिनों के दौरान रियासत में कहीं कहीं शदीद बारिश और 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की पेशगोई की गई है। अलबत्ता केरला में बाज़ाब्ता तौर पर मानसून की आमद का ऐलान नहीं किया गया है। IPL क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 2026 सीजन के फाइनल मैच में गुजरात टाइटंस और दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान मैच खेला जाएगा। RCB ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया है और 3 दिन के वक्फे के बाद फाइनल में दाखिल हो रही है। टूर्नामेंट की मजबूत तरीन उनकी बल्लेबाजी रही है जिसमें विराट कोहली की कारकर्दगी नुमाया रही है, जबकि गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड नई गेंद के साथ टीम के अहम खिलाड़ियों में शामिल रहे हैं। दूसरी जानिब शुभमन गिल की क्यादत में गुजरात टाइटन्स ने लीग मरहले में टॉप 2 में जगह हासिल की और क्वालिफायर 1 में शिकस्त के बाद वापसी करते हुए फाइनल में अपनी जगह बना ली। टीम एक बार फिर अपने अहम बल्लेबाजों गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर पर इंतजार करेगी, जबकि ऑलराउंडर जैसन होल्डर ने सीजन के दूसरे हिस्से में अहम विकेट्स लेकर गेंदबाजी को और मजबूत किया है। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। खातीन के क्रिकेट में कल रात ब्रिस्टल में T20 बैन अल्कामी क्रिकेट सीरीज के दूसरे मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 20 रन से हराया। 3 मैचों की सीरीज अब 1-1 मैच से बराबरी पर है। बैडमिंटन में सिंगापुर ओपन के फाइनल में आज भारत के मर्दों की डबल्स की जोड़ी सत्विक साई राज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया की जोड़ी मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर अल्फियान से होगा। फुटबॉल में पेरिस सेंट जर्मेन ने कल रात बुडापेस्ट में होने वाले फाइनल में आर्सेनल को पेनल्टी शूट आउट में 3-4 से शिकस्त देकर UEFA चैंपियंस लीग का खिताब हासिल कर लिया है। और अब अखबारात के आईने के साथ है तौहीद हक्कानी।
1: शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: पापा ये सब?
2: हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए।
1: ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD।
3: अरे ये कैसे रह गया?
1: पैसे गए?
3: नहीं नहीं नहीं, उपाय है।
2: बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है।
4: ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें।
5: दादू ये
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: सही कह रहा है।
8: हमारी जनगणना हमारा विकास।
9: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
10: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
11: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
10: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
11: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
10: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
11: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

मधुरिमा कार्यक्रम सुनने वालों को ज्योति स्वरूप का नमस्कार। फूलों की रंगत और भी खिलने लगती है जब तेरे चेहरे पर मुस्कान खिल उठती है। यूं ही खिलखिलाते मुस्कुराते रहना तुम्हारी हंसी से मेरी जिंदगी चहक उठती है।

आपके दीदार के लिए आते हैं तारे, आपकी खुशबुओं ने महकाई है बहारें। आप साथ हो तो ऐसे होते हैं नज़ारे कि चांद भी छुप छुप कर आपको निहारे।

ये हकीकत है कि तुम मेरी हसरत हो, जो बस ख्वाबों में मिले वही दौलत हो। क्यों देखती हो तुम आईने में चांद, तुम तो चांद से भी खूबसूरत हो।

ये कायनात की खुशबू भीनी भीनी है सांसों में, गर्मी के भरे दिन में पेड़ की छाँव बन जाओ तुम, मैं तुम्हारी चांदनी और मेरे चांद बन जाओ तुम।

0: आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मधुरिमा। ये कार्यक्रम आप थोड़ी देर में इस संदेश के बाद सुनेंगे।
1: ढोल वाला, किटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई।
2: बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे।
1: अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा।
2: कैसे?
1: मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया, बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं।
2: अच्छा लाइए, मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला।
1: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: मधुरिमा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। चाहत तो हमेशा से थी चांद को पाने की, ये ओठ है या पंखुड़ी गुलाब की, इनके मुस्कुराते ही सब महक जाते हैं। आपको जो पाया तो ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई।

0: मधुरिमा द साउंड ऑफ मेलोडी मधुरिमा।
1: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। सुबह के 9:15 हो रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे सामयिक चर्चा हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है, आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
1: सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के सेवा और सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने पर वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार लखनऊ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये विशेष परिचर्चा है केंद्र सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार के तीसरे कार्यकाल में 12 वर्ष अब तक पूरे हो चुके हैं जब लगातार तीसरी बार भाजपा की केंद्र में सरकार रही है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे। इन 12 वर्षों में भारत का कितना विकास हुआ है, सामाजिक आर्थिक स्तर में कितना परिवर्तन आया है, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्तर में क्या चुनौतियां हैं और इन 12 वर्षों में उन्हें कैसे हासिल करने का प्रयास किया गया, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह रावत हैं। वीरेंद्र जी, आकाशवाणी समाचार लखनऊ के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत।
3: धन्यवाद सुशील जी।
2: जो 12 वर्षों का कार्यकाल केंद्र सरकार का रहा है, लगातार तीसरा कार्यकाल है ये नरेंद्र मोदी सरकार का, तो इसको आप भारत के विकास में किस तरीके का प्रभाव छोड़ने वाला, ये 12 वर्ष किस तरीके से भारत के इतिहास में याद रखे जाएंगे?
3: नरेंद्र मोदी सरकार जब से आई है, आपने देखा दो बहुत ही माइलस्टोन चीजें हुई हैं। एक तो डोमेस्टिक इकोनॉमी से रिलेटेड है, जीएसटी जो लेकर आई 2017 में, बहुत पहले से ये पेंडिंग पड़ा था, पिछली सरकारें लाना चाहती थी लेकिन किसी वजह से नहीं ला पाई। दूसरा एक वैश्विक एक कोरोना काल आपने देखा। तो जब नरेंद्र मोदी सरकार की आप बात करेंगे, उनकी उपलब्धियों की बात करेंगे, तो इन दोनों चीजों को आपको परिपेक्ष में रखना पड़ेगा कि किस तरह से जो एक जीएसटी का जो पूरा एक रिफॉर्म था, बिजनेस को और अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी को कैसे पुश देना है, कैसे उसको मल्टीप्लायर इफेक्ट की तरह यूज करना है, जो काफी समय से पेंडिंग पड़ा था उसको लेके आना, और साथ ही साथ जो वैश्विक स्तर पर, जैसे मैंने कहा कोविड-19 की जो एक काल था जिसमें दुनिया के बड़े से बड़े जो विकसित देश भी हैं, यूरोप के हों चाहे यूएस हों चाहे इधर जापान को देख लें, वो भी किस तरह से को झेला और किस तरह से वो अपने को आगे लेके चले, और भारत ने इन दोनों चीजों को कैसे बैलेंस किया, क्योंकि ये एक ऐसा इवेंट था जिसका कोई प्रेसिडेंस नहीं था। तो मैं बार बार इस पे फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये इस दौरान भी किस तरह से आपके जो लोकल इकोनॉमी थी, जो पूरा पॉलिटिकल इकोनॉमी थी, उसको कैसे नेविगेट करके सक्सेसफुली ले जाने का काम किया है। 12 सालों में आपने देखा कि इंटरनेशनल लेवल पे जैसे क्वाड बना है, भारत जापान और ऑस्ट्रेलिया और यूएस का जो इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के पूरे पैराडाइम को देखते हुए बनाया गया, खासतौर से चाइना को कैसे कंटेन करना है, उसकी जो पॉलिसीज हैं, जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज हैं, उसको कैसे लेके जाना है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर को कैसे उसमें यील्ड बढ़ा के कैसे एक्सपोर्ट से उसको मार्केट को, जिसमें फार्म टू फोर्क में जैसे एक लिंकेजेस की जो बात पहले से चली आ रही थी उसको कैसे चरितार्थ किया है। एमएसएमई सेक्टर हो, आपने देखा होगा फर्टिलाइजर को लेके, कोल को लेके, क्योंकि ये कमोडिटीज ऐसी हैं जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, उसको लेके बहुत सारी चीजें हुआ करती थी हमेशा, भारत कहीं ना कहीं टेंटर हुक्स पे रहता था, उसको लेके बहुत ही सुदृढ़ता से लेके चला है। अभी आपने देखा वेस्ट एशिया पे जिस तरीके का एक ऑल क्राइसिस चल रहा है, उस दौरान भी

0: कैसे नेविगेट किया गया है। रशिया यूक्रेन का वॉर वैसे तो दूर पे चल रहा है, लेकिन उसकी वजह से भी जो इंटरनेशनल फ्यूड सिक्योरिटी है वो भी काफी बाधित हुई। आपने देखा इसराइल और गाजा में जो एक अभी भी चल रहा है, आपने देखा उसकी वजह से जो इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स है, एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी के जितने भी आप देखेंगे घटक को देखेंगे, इसमें कहीं ना कहीं अस्थिरता की एक स्थिति बनी हुई है। लेकिन इन सब चीजों को जब आप एक कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, एक केंद्र सरकार है वो उसने किस तरह से नेविगेट किया है जिससे हमारी इकोनॉमी हो, हमारी जो सिक्योरिटी को लेके जो हमारे चैलेंजेस रहे हैं, आगे जाके जिस तरह से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह की बात है, आपने देखा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब ना केवल कंप्यूटर तक सीमित रह गया है लेकिन सिक्योरिटी मिलिट्री वेयर में यूज हो रहा है। बहुत सारे युद्ध अभी जो आपने देखा ग्लोबल जो चल रहे हैं उसमें AI का किस तरह से यूज हो रहा है, उस परिपेक्ष में किस तरह से हम अपने को ना केवल सुदृढ़ रखें, अपने को सुरक्षित रखें, बल्कि एक नेक्स्ट लीप लेके जाएं, क्योंकि AI से जो है जॉब का एक पूरा लिंकेज है, जॉब जाएंगी, नई जॉब्स आएंगी, लेकिन स्किलिंग का जो पूरा एक वैल्यू चेन है उसको कैसे आगे लेके जाना है और ना केवल डोमेस्टिक, क्योंकि अब जो वर्क फोर्स है वो केवल एक जगह सीमित नहीं रहता है, वो इंटरनेशनली अलाइंड रहता है। तो जो हमारा वर्क फोर्स निकल रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेश स्टेट है इंडिया का और करीब 10% के आसपास का GDP कंट्रीब्यूट करता है, तो उत्तर प्रदेश हो चाहे अन्य राज्य हो, सारे जो मिलके जिस तरह से AI को कैसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करना है जिससे ना केवल हमारी मिलिट्री और सिक्योरिटी के जो एस्पेक्ट्स हैं उसको संरक्षित किया जा सके, बल्कि उसको जॉब के साथ कैसे अलाइन करना है। तो जब आप सारी चीजों को एक होलिस्टिक व्यू देखेंगे तो देखेंगे जो केंद्र सरकार ने काफी अच्छा काम किया है।
1: जी, हम कुछ खास सेक्टर्स की चर्चा करते हैं, जैसे कि हम युवाओं के लिए 12 सालों में कितनी स्थितियां बदली हैं, रोजगार से लेकर के आपने AI की बात की, पढ़ाई को लेकर के ये क्या क्या चेंजेस हुए हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज खुली हैं, लगभग 500 के आसपास जो है नए विश्वविद्यालय अस्तित्व में आए हैं जिसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों विश्वविद्यालय हैं। एम्स की संख्या लगातार बढ़ रही है और कई क्षेत्रों में वहां तक दूर दराज तक जो है स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सके इनके लिए काम हो रहा है। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचे की। किस तरीके से आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए जो काम किया गया वो एक स्पष्ट तौर पर दिखता भी है। अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें तो एक्सप्रेस वे की एक लंबी श्रृंखला की शुरुआत हो चुकी है मुंबई में, दिल्ली मुंबई कनेक्टिविटी, खासतौर पर सीमा के क्षेत्रों में। जिन चुनौतियों की आपने चर्चा की उसमें बहुत बड़ी चुनौती ये भी थी कि करगिल युद्ध के बाद पहली बार ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उससे पहले गलवान हुआ था, तो इस नाते सीमावर्ती क्षेत्रों में भी आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की एक बड़ी चुनौती। 12 सालों में आप क्या महत्वपूर्ण बदलाव देखते हैं?
0: देखिए, जब इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज होती है जो अपना इकोसिस्टम बनाता है, और वो इकोसिस्टम ना केवल जैसे आपने बहुत अच्छा मेंशन किया कि सिक्योरिटी को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो माउंटेनस रीजन है जहां पे पहाड़ी क्षेत्र है, जहां पे हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर्स लगी हुई है, वहां पे अगर कोई ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो कितनी जल्दी से मिलिट्री वेयर और हमारी आर्मी वहां पे जल्दी से जल्दी पहुंचे, ना केवल पहुंचे बल्कि लॉजिस्टिक्स का पूरा जो सप्लाई चेन है वो सुदृढ़ता से बना रहे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो ना केवल मिलिट्री के लिए लेकिन हमारी इकोनॉमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तभी आता है। तो आपने जैसे अभी आपने कई चीजें मेंशन करी है, एक्सप्रेस वेज की बात आप कर लें, चाहे एयरपोर्ट्स की बात कर लें, चाहे ना केवल एक्सप्रेस वेज बल्कि जो टर्शरी रोड्स हैं जो स्टेट लेवल पे भी बहुत सारी बनती है, लेकिन जब तक केंद्र सरकार लोन से लेके एक एक्सपर्ट जो एक इनपुट होता है उसको लेके, जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जैसे आपने देखा कि लखनऊ कानपुर का जो एक्सप्रेस वे है वो NHAI बना रहा है, अभी कुछ ही दिनों में उसका उद्घाटन भी हो जाएगा, तो ये जब आप पूरा देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जो मोदी सरकार है वो पहले से भी काफी बुलिश रही है और उसने उस चीज को चरितार्थ किया है, और इसी का परिणाम आप देखेंगे कि भारत ने इन्वेस्टमेंट को लेके काफी नए नए आयाम गढ़े हैं। बहुत सारे आपने देखा एप्पल का प्लांट इंडिया में आया है, सैमसंग का जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट जो है आपके नोएडा में लगा हुआ है, इसी तरीके के अन्य क्षेत्रों में AI को लेके भारत की जो कंपनियां अग्रणी कंपनियां हैं विदेशी कंपनियों के साथ उनका टाई अप होता है, क्योंकि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर आपका नहीं होगा अच्छा तब तक इन्वेस्टर जो है किसी भी उसको बाईपास कर देता है। तो मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके काफी बुलिश रही है और काफी अच्छा काम हो रहा है और आने वाले दिनों में और भी अच्छा काम होगा।
1: जी, और अगर हम 12 सालों का जो एक तरीके से लेखा जोखा जब आदमी करने बैठता है, जब आप तरीके से देखते हैं कि क्या बड़ी चीजें हुई, तो हम उसमें ये भी ध्यान रखते हैं कोरोना काल से शुरू हुई जो योजना थी वो PM गरीब कल्याण अन्न योजना थी, जिसमें 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को भरपेट भोजन पूरे महीने नसीब हो सके, इसके लिए राशन की दुकानों से अन्न मिल रहा है, और स्वच्छता अभियान एक मिशन की तरह से शुरू हुआ, 12 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट उसके अंदर जो है वो बन चुके हैं, हर घर जल की अगर बात करें 15 करोड़ से ज्यादा देश भर में कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जो एक बहुत गेम चेंजर योजना थी वो PM आवास योजना भी, 4 करोड़ से ज्यादा घर उसके तहत जो है वो पात्र लोगों को दिए जा चुके हैं, मुद्रा योजना के तहत जो है 50 करोड़ से ऊपर का लोन दिया जा चुका है, तो ये सारी चीजें तो है ही। लेकिन अंत में जो मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि देश के युवा

0: आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई आई, सरकार ने शिक्षा नीति में पूरी तरीके से बदलाव करने की कोशिश की। युवाओं के लिए अगर आप देखें तो बहुत छोटे से संक्षेप में मुख्तसर सा एक जवाब चाहेंगे कि इसमें क्या 12 साल में युवाओं के लिए इस सरकार से उम्मीद रही और क्या कितना मिला?
1: देखिए, किसी भी देश का जो पूरा डेस्टिनी होती है वो युवाओं के हाथ में होती है, और इस समय इंडिया और इंडिया में उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा यूथ वर्कफोर्स है उसको कंट्रीब्यूट करता है। तो आपने देखा होगा कि जो स्टार्टअप को लेके, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे मैंने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं एक जो जॉब मार्केट को डिसरप्ट कर रहा है, ना केवल जॉब मार्केट, सारे भी डोमेन्स को डिसरप्ट कर रहा है। खासतौर से हमारे युवा जो डिग्री लेके निकल रहा है उसको कैसे जॉब के साथ जुड़ना है, ना केवल सैलरीड जॉब बल्कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्टार्टअप। तो स्टार्टअप के जो कल्चर को बढ़ावा देने का काम किया है, आपने देखा कि अपने मन की बात में स्टार्टअप को लेकर बहुत ही बुलिश रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इंकरेज करने का है। और युवा भी इस चीज को समझ रहे हैं और पॉजिटिवली ले रहे हैं कि ना केवल वो नौकरी की तरफ जाएं बल्कि खुद स्वयं का उद्यम करें। उसको लेके बैंक से जो लोन का पूरा एक इकोसिस्टम है वो भी डेवलप किया गया, बहुत सारी स्कीम्स है एमएसएमई को लेके कि कोलैटरल लोन कैसे देना है। स्टार्टअप के लिए अलग स्कीम्स है, केंद्र सरकार की भी है, राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की बहुत सारी स्कीम्स है जो स्टार्टअप को बढ़ावा देती है, क्योंकि महिलाएं, क्योंकि हमारा 50% पॉपुलेशन की है और युवा हमारे कल के भविष्य हैं। तो इन दोनों को जो है सुदृढ़ कैसे करना है, क्योंकि जब ये सुदृढ़ रहेंगे, ये जब स्ट्रांग रहेंगे, तभी हमारी आगे की अर्थव्यवस्था, हमारा जो आगे का पूरी डेस्टिनी है वो भी एक सही पाथ पे चलेगी।
0: जी वीरेन जी, आपने 12 साल के सरकार के कार्यकाल और उसकी उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के सेवा और सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने पर वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी।

कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार हम आपको खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना बता दें। सीमा सिंह पुत्री राजवीर सिंह, जिनकी उम्र 19 वर्ष है, ये 18 मार्च 2026 को दिन में 1 बजे से नाथूपुर से लापता हैं। ये निवासी हैं नाथूपुर पोस्ट भुल्लनपुर थाना मंडवाडी जनपद वाराणसी की। लापता होने के समय इन्होंने ग्रे कलर का सलवार सूट पहना हुआ था। इनका रंग सांवला है, कद 5 फुट की है। इनके बारे में जानकारी मिलने पर कृपया मंडवाडी थाने को सूचित करें या नज़दीक के किसी भी थाने को सूचित करें।

कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार रोशनी, जो दिनांक 2 मार्च 2026 को अपने निवास स्थान धन्नीपुर लोहता वाराणसी से शाम 7 बजे कहीं चली गई, जो अभी तक वापस नहीं आई हैं, इनके बारे में जानकारी मिलने पर कृपया सूचित करें ग्राम धन्नीपुर पोस्ट लोहता थाना लोहता जिला वाराणसी को।

कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार इंद्रजीत कुमार पुत्र शंभुनाथ, जिनकी उम्र 31 वर्ष है, ये निवासी हैं ग्राम कनेरी, पोस्ट गंगापुर, थाना रोहनिया, जिला वाराणसी के। ये 23 जनवरी 2026 को सुबह 6 बजे मोहन सराय से लापता हैं। इनकी लंबाई 5 फीट है, इनका रंग गेहुआ है, इनकी आंखें सामान्य हैं। इनके बारे में जानकारी मिलने पर थाना रोहनिया को सूचित करें या नज़

नजदीक के किसी भी थाने को सूचित करें। आप सुन रहे थे कमिश्नरेट वाराणसी से खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है।

आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। सुबह के 9:30 हो रहे हैं। थोड़ी देर में होगा उर्दू कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं उर्दू कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा शायर बशीर बद्र को आकाशवाणी लखनऊ की जानिब से खिराज अकीदत। आवाज रेखा मिश्रा की है। इसके अलावा आप सुनेंगे खत के लिए शुक्रिया कार्यक्रम। सदाकार हैं शाजिया खान और सुरेंद्र राजेश्वरी।
1: मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। इन शेरों के खालिक मशहूर उर्दू शायर बशीर बद्र साहब 28 मई 2026 को इस जहाने फानी से कूच कर गए। आज के इस उर्दू कार्यक्रम में हम उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हैं और उनकी अदबी, इल्मी और शायरी की खिदमात को सलाम करते हैं। बशीर बद्र साहब का कलाम मोहब्बत, इंसानियत और जिंदगी के नाजुक एहसास का आईना रहा है। उनकी यादें और उनकी शायरी हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी।
2: सामीन, आज हम उर्दू प्रोग्राम की महफिल सुखन में बात करेंगे पद्म श्री अवार्ड याफ्ता, सत्या एकेडमी इनाम याफ्ता, बा कमाल जमाल शख्सियत, इकाई, इमेज, आमद, आस, आसमान और आहट जैसे शेरी मजमुओं के तख्लीककार, जदीद उर्दू गजलियात के अलम बरदार, अपने मुनफरिद लबो लहजे के अजीमुल मर्तबत शायर, उर्दू शायरी के चश्मों चराग जनाब बशीर बद्र साहब की, जिन्होंने अपनी शायरी के चराग से अंधेरों को रोशनी में तब्दील कर दिया और जिनकी गजलों ने दिल के कोने कोने में जाकर उजाला कर दिया। इसी मौके पर बशीर साहब फरमाते हैं, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, हमारा दिल सवेरे का सुनहरा जाम हो जाए, चरागों की तरह आंखें जलें जब शाम हो जाए, मैं खुद भी एहतियातन उस तरफ से कम गुजरता हूँ, कोई मासूम क्यों मेरे लिए बदनाम हो जाए, समंदर के सफर में इस तरह आवाज दे मुझको, हवाएं तेज हो और कश्तियों में शाम हो जाए। सामीन, बशीर बद्र साहब सिर्फ शायर नहीं बल्कि आशिक़े सुखन हैं। बिलाशुबा उनकी गजलों ने उर्दू शायरी को नई सांसें अता की हैं। जरा ये शेर समाअत फरमाएं। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है जरा फासले से मिला करो। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि बशीर बद्र साहब की गजलें जब मुशायरों में पढ़ी जाती तो लोग दीवानावार दाद देते, वो महफिल में आते तो लफ्जों की खुशबू बिखर जाती। ये अशार इसके बखूबी मिसदाक हैं। दुश्मनी लाख सही, खत्म ना कीजिए रिश्ता, दुश्मनी

0: लाख सही, खत्म न कीजिए रिश्ता, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए। गम है आवारा अकेले में भटक जाता है, गम है आवारा अकेले में भटक जाता है, जिस जगह रहिए वहां मिलते मिलाते रहिए, जाने कब चांद बिखर जाए घने जंगल में, जाने कब चांद बिखर जाए घने जंगल में, अपने घर के दरो दीवार सजाते रहिए। इतना ही नहीं, बद्र साहब की लिखी हुई गजलों को फिल्मी दुनिया के बहुत से गुलकार हजरात ने अपनी आवाज देकर उसे हर दिल का गुनगुनाता हुआ नगमा भी बना दिया है। ऐसे ही एक गजल न जी भर के देखा न कुछ बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। सामीन, बशीर बद्र साहब की शायरी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो आम जिंदगी की छोटी छोटी बातों को बड़े सादे मगर असर अंगेज अल्फाज में कहे जाते हैं। उनके मिसरे रोजमर्रा के जुमलों की तरह दिल में उतर जाते हैं। इस पसे मंजर में वो फरमाते हैं, दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाए, जब कभी हम दोस्त हो जाए तो शर्मिंदा ना हो। बशीर बद्र साहब का कमाल यही है कि उनकी शायरी में दिल की धड़कन सुनाई देती है। मोहब्बत हो या जुदाई, उम्मीद हो या मायूसी, हर जज्बा उनके यहाँ अपनी पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है। इस पर वो कहते हैं, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मट्टी है, खो जाए तो सोना है।
1: आदाब सामेईन, एक बार फिर हम लेकर हाजिर हैं आपकी खिदमत में आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम खत के लिए शुक्रिया। मैं आपकी मेजबान शाजिया खान और मेरे साथ इस सफर में साथ दे रहे हैं सुरेंद्र राजेश्वरी।
2: सभी सुनने वालों को राजेश्वरी का आदाब और शाजिया खान साहब आपको भी बहुत बहुत आदाब। लगभग एक महीने के बाद मुलाकात का मौका फराहम हुआ है सुनने वालों के साथ में
1: जी।
2: ये अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा करम है। मैं समझता हूँ कि तमाम हमारे जितने भी सुनने वाले हैं बहुत खुश होंगे और सेहतमंद होंगे।
1: बिल्कुल, तो बिला किसी ताखीर के मैं आज का पहला खत लूं राजेश्वरी जी।
2: जी बिल्कुल,
1: तो आज का पहला खत जो हमारे पास आया है वो बहुत दूर से आया है, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर से, और उसे भेजा है शैलजा खाती साहिबा ने, जो लिखती हैं हमारे प्रोग्राम सुखन के आईने के मुतालिक, और लिखती हैं, मैं ये खत एम्स्टर्डम से लिख रही हूँ। आपके उर्दू प्रोग्राम मैं अक्सर यूट्यूब के जरिए सुनती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट सुना जिसमें शाजिया खान की प्रोफेसर अब्बास रजा नैयर से खास बातचीत सुनी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जिससे उर्दू को लेकर मेरी जानकारी में भी काफी इजाफा हुआ। आकाशवाणी लखनऊ की इस पहल को मैं दिल से सराहती हूँ।
2: शैलजा खाती साहिबा, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल इस प्रोग्राम में, शुक्रिया भी अदा करते हैं आपकी समातों का। जिस प्रोग्राम का आपने जिक्र किया है, प्रोफेसर अब्बास रजा नैयर साहब मौजूद थे स्टूडियो में, सुखन के आईने में जो प्रोग्राम आपने सुना। प्रोफेसर नैयर साहब हिंदुस्तान के बहुत नामवर हस्ती हैं, सुखनवर हैं और बेहतरीन अदीब हैं, और बड़ा मकबूल नाम है हिंदुस्तान में।
1: शायर भी हैं,
2: शायर भी बहुत बेहतर हैं। ये बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपने उस प्रोग्राम को सुना, उस पॉडकास्ट को हमने सराहा है। कोशिश कीजिएगा कि और भी प्रोग्राम हमारे जो पॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट जब आप तक पहुंच रहे, इतनी दूर से आपने ईमेल किया है, आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया शैलजा जी।
1: हमारा अगला खत हमें मौसूल हुआ है कानपुर से गुलेजर अदीबा का, जो लिखती है हमारे प्रोग्राम अफसाना दुनिया के नक्शे में आदमी के मुतालिक। ये लिखती है, बहुत उम्दा, यूं तो पूरा प्रोग्राम ही समात के लुत्फ को दुबाला कर रहा था, लेकिन जनाब शाहिद अख्तर साहब का अफसाना दुनिया के नक्शे में आदमी सुनकर वाकितन आंखों में आंसू भर आए। अफसाने के तमाम तर अज्जाए तरकीबी अफसाना के आला होने का सबूत पेश कर रहे थे। अहम बात यह है कि अफसाना सिर्फ एक अफसाना नहीं बल्कि माशरे के हर तबके के लिए नसीहत आमेज भी था। इसके अलावा इस अफसाने के मुतालिक मोहतरम जनाब उमैर साहब की तमहीदी गुफ्तगु भी पुरअसर रही। आप दोनों मेरी जानिब से मुबारकबाद कबूल फरमाएं। मैं इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए प्रोग्राम के पेशकार जनाब आसिफ इकबाल साहब को भी कलबी मुबारकबाद पेश करती हूँ।
2: गुलेजर अदीबा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। और शाजिया जी,
1: जी
2: ये अफसाना का जब मसला होता है आप ये देखें कि कहने ही क्या। गुलेजर अदीबा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अफसाना जो कि दुनिया के नक्शे में आदमी के मौजू पर था, उस उनवान से आपने ये अफसाने को सुना, बहुत शुक्रिया।

0: आप कीमती वक्त देती हैं और हमें अच्छा लगता है कि हमारे प्रोग्राम आप तक बाकायदा उसी सलीके से पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आइंदा भी रब्ता कायम रखिएगा और प्रोग्राम को और भी कैसे बेहतर कर सकते हैं इसके बारे में भी हमें जरूर लिखिएगा। आपका बेहद शुक्रिया।
1: हमारा अगला खत है हमारे प्रोग्राम सेहतनामा के मुतालिक, जिसे भेजा है जहां आरा सलीम ने। ये लिखती हैं, सेहतनामा प्रोग्राम सुना। शम्सुल आरफीन के सवालात, डॉक्टर फरहा आसिफ के जवाब बड़ी अहमियत के थे। डॉक्टर फरहा साहिबा के एक आम इंसान को गर्मियों के मौसम में खुद को बीमारियों से बचाने के लिए क्या खाना पीना, क्या एहतियात करनी चाहिए, बेहद आसान जबान में बताने में कामयाब रही। आवाज दोनों की बहुत क्लियर शीरी रही। प्रोग्राम आजकल के मौसम के लिहाज से अहम और कारामद रहा। आसिफ इकबाल साहब की पेशकश बहुत उम्दा रही।
0: जहाँ आरा सलीम साहबा, बहुत शुक्रिया आपका ईमेल करने के लिए। और सेहतनामा जो हमारा प्रोग्राम है, इसका मकसद सिर्फ इसलिए कि ताकि हमारे सुनने वाले हैं वो अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, और जैसे जैसे शाहजहाँ खान साहबा मौसम में तब्दीली होती है तो हमारी कोशिश होती है कि जैसे इन दिनों शिद्दत की गर्मी पड़ रही है तो किस तरह से अपना ख्याल रखना है, बच्चों का ख्याल रखना है, बुजुर्गों का ख्याल रखना है, ये बड़ी बात है। डॉक्टर फरहा साहिबा ने इस सेहतनामा के प्रोग्राम को आप तक पहुँचाया था, शुक्रिया उनको भी। इस माइक्रोफोन के जरिए हम पहुँचा रहे हैं और आसिफ इकबाल साहब की कोशिश थी वो कामयाब हुई। सलीम साहिबा, आपका बेहद शुक्रिया।
1: इसी प्रोग्राम के मुतालिक हमें एक और खत मौसूल हुआ है और ये भेजने वाले हैं जनाब अब्दुल कुद्दूस हाशमी। ये भी लिखते हैं, मेजबान और मेहमान जब दोनों डॉक्टर हों तो मकालमे सेहतमंद और सामईन के लिए मुफीद होते हैं। मौसम गर्मा की एहतियात तदाबीर से लेकर अमराज निस्वा जरासीम और आलूदगी से होने वाले मोहलिक अमराज और तदराक पर मालूमाती गुफ्तगू सेहतमंद जिस्म सेहतमंद माशरे की तश्कील करता है। इस लिहाज से जनाब आसिफ इकबाल साहब का मौजू का इंतखाब, साथ ही जनाब सईद अख्तर साहब का एहतमाम और मोहतरमा डॉक्टर फरहा आसिफ साहिबा से डॉक्टर शम्सुल आरफीन के मौजू के लिहाज से सवाल और डॉक्टर फरहा आसिफ साहिबा की उर्दू अंग्रेजी और हिंदी अल्फाज पर मुश्तमिल पुरअसर गुफ्तगू। सामईन डॉक्टर साहिबा की सेहतमंद गुफ्तगू और मशवरों से इस्तेफादा करेंगे, यही सेहतनामा का मकसद है। मैं अपने और तमाम सुनने वालों की जानिब से दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ।
0: अब्दुल कुद्दूस हाशमी साहब, आपका शुक्रिया कि आपने सेहतनामा के इस प्रोग्राम को सुना और डॉक्टर फरहा साहिबा को हमने मदु किया था। कोशिश ये थी कि तमाम सारी बातों पर बातचीत हो जो आपके फायदेमंद दिया है, उसके लिए हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।
1: हमारा जो एक प्रोग्राम है बैतबाजी का, जो बहुत ज्यादा पसंद भी किया जाता है, हमारा अगला खत इसी प्रोग्राम के तई इसी निस्बत से हमें मौसूल हुआ है और ये भेजने वाले हैं रिजवानुल रजा साहब, जो लिखते हैं, आज रेडियो से नश्र होने वाले उर्दू प्रोग्राम में बैतबाजी से लुत्फंदोज हुआ। शम्सुल आरफीन की निजामत में तमाम शुरका ने बेहतरीन और मयारी अशार सुनाए। आखिर में जनाब आसिफ इकबाल साहब ने रेडियो के उर्दू नशरियात पर अपने ख्यालात का इजहार किया और उसकी अहमियत और जरूरत के साथ उसकी अफादियत पे भी रोशनी डाली। दिली मुबारकबाद।
0: बहुत शुक्रिया रिजवान रजा साहब आपको। और बैतबाजी का प्रोग्राम शाहजा बड़ा एक अपने आप में खुद में एक बड़ी बहुत मजे की चीज है।
1: बहुत मजे।
0: आप ये देखें कि ये शुरू बहुत पहले इस प्रोग्राम में कभी हुआ करता था
1: जी,
0: बाद में ये आसिफ साहब ने दोबारा इसको शुरू किया तो मुझे लगता है कि सुनने वालों तक उस तरीके से पहुंच भी रहा है तो शायद पसंद आ रहा है लोगों को और अच्छा भी था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: अगला खत हमें भेजा है दुर्गेश नागनपुरे, राधे श्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू कुसुमबाई बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से, ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से। और ये लिखते हैं, हमें आपका उर्दू कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हमें दिनांक 7 मई 2026 का उर्दू प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। इस प्रोग्राम में नवाबीन अवध की गजाएं विषय पर मेहमान हफीज अतीक इदवई जी से प्रेजेंटर शम्सुल आरफीन साहब की बातचीत बहुत अच्छी लगी। और इन्हीं का एक खत हमें और मौसूल हुआ है, अगर इजाजत हो मैं वो भी पढ़
0: दूं। बिल्कुल
1: जी। जो अगला खत इन्होंने भेजा है वो हमारे प्रोग्राम आकाशवाणी @90 क्विज प्रोग्राम के लिए भेजा है, जिसके मुतालिक ये लिखते हैं, हमें आपका उर्दू कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हमें दिनांक 18 मई 2026 दिन सोमवार का उर्दू प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी @90 विषय पर इरम यूनानी मेडिकल कॉलेज लखनऊ कैंपस में की गई बातचीत और क्विज टाइम पार्ट 1 बहुत अच्छा लगा। प्रेजेंटर जमशेद सिद्दीकी, शम्सुल आरफीन, आसिफ इकबाल जी को हार्दिक बधाई।
0: शाहजी मैं आपको एक बात बताऊं कि ये हमारे कार्यक्रमों को लगातार सुनते हैं
1: जी,
0: और लगभग सारे कार्यक्रमों में इनका खत आता है और तफसील
1: हमारे बड़े अजीज सामे हैं।
0: आपने नवाबीन अवध की जो गजाएं थी इस पर जो अपनी प्रोग्राम था और खासतौर से आकाशवाणी का जो क्विज प्रोग्राम आपने सुना, वो कोशिश ये थी कि जो 90 साल का हमारा आकाशवाणी का सफर है उस पर तमाम सारे प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में किए जा रहे हैं और उसी सिलसिले में ये प्रोग्राम भी किया था क्विज का। आपको पसंद आया नागनपुरी जी, और आपके तमाम परिवार के लोगों को, आपके दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अगला खत हमें मौसूल हुआ है लखनऊ से ही, लिखने वाले

0: लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे कल्पना चटर्जी के गाए लोकगीत। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है, प्रस्तुत है सामुदायिक गान शिक्षा पाठ असमिया भाषा में।
1: बच्चों, अभी एक अखोमिया गीत आपको सिखाऊंगा। इस गीत का लेखक और संगीतकार है रुद्र बरुआ। क्या नाम था?
2: रुद्र बरुआ।
1: हाँ, सिखाने का भार मेरा ऊपर दिया गया है। मैं हूँ रमन चौधरी। बताओ क्या नाम था?
2: रमन चौधरी।
1: तो अब लीजिए, गीत पहले लिख लीजिए।
3: जी।
1: मैं धीरे धीरे कहूंगा, आप लोग लिखिए। ओ तुल तुल तुल ओ बुल बुल ओ हेउटी तरा लुका ठाकू भाल ना लागे खेल कोयना दौड़ा। तो ये पहला मुखड़ा हो गया, इसके बाद पहला अंतर आएगा। तो लिख लीजिए, टूल टूल आमार कोयना हो बुल बुले हो दौरा। इसके बाद है मोय नामोती मोती नाम
2: नाम
1: लगाय
2: लगाय
1: दियूं
2: दियूं
1: दौरा
2: दौरा
1: घोरिया जोड़ा
2: जोड़ा।
1: तो इसका बाद आएगा ओ खेउटी ह दौरा माक
2: माक
1: घट
2: घट
1: टेकेली धौरा। तो ये पहला अंतरा खत्म हो गया, इसका बाद दूसरा अंतरा आएगा। आप लोग लिख लीजिए, कुरु कारे
2: कारे
1: दूर लीते साउल हब बाली कोसु पातत हला कानी हेये हबो साकी पानी पोसात पानी तुलिम दूरोनी घाट
2: घाट
1: गौरा
2: गौरा।
1: तो ये दूसरा अंतर अभी खत्म हो गया।

0: या इसका बाद आएंगे तीसरा अंतरा, तो लिख लीजिए पाता
1: पाता
0: बाहर
1: बाहर
0: पात आनी
1: पात आनी
0: बेई खोनी
1: बेई खोनी
0: लोम
1: लोम
0: हाजी
1: हाजी।
0: तो इसका बाद आएगा मीसा मीसी
1: मीसा मीसी
0: हालो धीरे
1: हालो धीरे दुयू कु
0: नुआम
1: नुआम
0: आमी
1: आमी
0: तोराय लोबो
1: तोराय लोबो
0: तुल तुलक
1: तुल तुलक
0: हेउतिये
1: हेउतिये
0: बुल बुलक
1: बुल बुलक
0: ओ
1: ओ।
0: इसका बाद आएगा डांगी आनी
1: डांगी आनी
0: बोहू आबो
1: बोहू आबो
0: बेई तलर
1: बेई तलर
0: पड़ा
1: पड़ा।
0: तो ये तीसरा अंतर भी खत्म होगा, इसका बाद फिर मुखड़ा आएगा ओ तुल तुल ओ बुल बुल, ठीक है ना?
2: जी बिल्कुल ठीक।
0: आप लोग गाना लिख लिया ना?
1: जी हाँ।
0: ये गाना, ये धुन है ये खेमता ताल का ऊपर, तो इसका संदा है ऐसा माफिक हम बता देता हूँ, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः। तो अभी मेरा साथ आप लोग एक साथ में गाए, इस संदा में गाए हाँ?
2: जी, जी।
0: ओ तुल तुल ओ बुल बुल ओ खेउती तारा
1: ओ तुल तुल ओ बुल बुल ओ खेउती तारा
0: लुका भाकु भाल ना लागे खेल कोई ना डोरा
1: लुका भाकु भाल ना लागे खेल कोई ना डोरा।
0: तो फिर और एक बार आप लोग बोलिए,
1: ओ तुल तुल ओ बुल बुल ओ खेउती तारा लुका भाकु भाल ना लागे खेल कोई ना डोरा।
0: ये तो मुखड़ा खत्म हो गया, अभी फिर पहला अंतर आएगा। तुल तुल आमार कोयना होक बुलबुले होक डोरा
1: तुल तुल आमार कोयना होक बुलबुले होक डोरा
0: मोयना मोती नाम लगाई दियो डोरा घोरियाक जोरा
1: मोयना मोती नाम लगाई दियो डोरा घोरियाक जोरा
0: ओ खेउती हो डोरा मा घट्टे के ली धोरा
1: ओ खेउती हो डोरा मा घट्टे के ली धोरा।
0: इसका बाद फिर मुखड़ा आएगा, ओ तुल तुल ओ बुलबुल ओ खेउती तारा
1: लुका भाकु भाल ना लागे खेल कोई ना डोरा।
0: बहुत अच्छा है। तो अभी दूसरा अंतर लीजिए, कुरु करे दुरो लिते साउल होबो बाली
1: कुरु करे दुरो लिते साउल होबो बाली
0: कुसु पतत खला कानी हे होबो साकी
1: कुसु पतत खला कानी हे होबो साकी
0: पानी पसात पानी तुलिम दुरोनी घाट गोरा
1: पानी पसात पानी तुलिम दुरोनी घाट गोरा।
0: इसका बाद फिर मुखड़ा आएगा, ओ तुल तुल ओ बुल बुल ओ खेउती तारा
1: लुका भाकु भाल ना लागे खेल कोई ना डोरा।
0: नहीं ये बात नहीं है, तो आप लोग जो मुखड़ा गाया अभी ऐसे नहीं है, ओ तुल तुल ओ बुल बुल ओ खेउती तारा बोलिए,
1: ओ तुल तुल ओ बुल बुल ओ खेउती तारा
0: लुका भाकु भाल ना लागे खेल कोई ना डोरा
1: लुका भाकु भाल ना लागे खेल कोई ना डोरा।
0: तो इसका बाद तीसरा अंतर लीजिए, पाता बाहर पात आनी बेईखनी लम हाजी
1: पाता बाहर पात आनी बेईखनी लम हाजी
0: मिसा मिसी हालो धीरे दियो कुनुआम आमी तराय लब तुल तुलक हेउतिये बुलबुलक ओ
1: तराय लब तुल तुलक हेउतिये बुलबुलक ओ
0: दांगी आनी बहु आब बेई तलर परा
1: दांगी आनी बहु आब बेई तलर परा।
0: तो फिर आप मुखड़ा गाए, ओ तुल

0: चल कोई ना दौड़ा।
1: अभी मैं लय दूंगा, गाऊंगा, आप लोग सुन के मेरे साथ गाएगा।
2: जी हाँ
3: जी।
1: तो लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3।

तो ये मुखड़ा खत्म हो गया, इसका बाद आएगा अंतरा, ये पहला अंतरा आएगा। तो आप ला लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3।

तो ये दूसरा आंकड़ा अभी शुरू होगा, तो अभी मैं फिर से लाइ दूंगा, उसका बाद पहले मैंने गा लूंगा, उसका बाद आप लोग भी मेरे साथ गाइए। एक दो तीन चार, एक दो तीन।

0: बच्चों गाना आप लोग सीख लिया, सीख लिया ना?
1: हाँ, सीख लिया।
0: अभी पूरा गाना एक बार मेरे साथ गाएं।

0: अभी आप सुन रहे थे सामुदायिक गान शिक्षा पाठ असमिया भाषा में। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था। थोड़ी देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या?
2: एब्सोल्यूट
3: मेरी नई स्कूटी के लिए।
2: वो बनो से आनी नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी।
3: मतलब
1: सुनो, ऑनलाइन लर्निंग एप्स को जांच परख कर RBI अधिकृत बैंक NBFC से ही आप लोन लीजिए। अनधिकृत एप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा।
3: दादू बन गई सियानी।
2: गिफ्ट नहीं खोलेंगे
4: स्कूटी।
2: RBI कहता है इनसे सुनिए,
5: जानकार बनिए,
6: सतर्क रहिए।
7: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
8: याद रखिए, शौक सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
7: पार्टियों में नशा नहीं खुशियां बांटिए,
8: नशा नहीं जिंदगी अपनाइए।
7: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
8: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
9: फिल्म संगीत में सबसे पहले आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। ये गीत है फिल्म सागर से। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत RD बर्मन का है।

अब भाई सुनते हैं पेंटर बाबू फिल्म का ये गीत, आवाज़ किशोर कुमार और लता मंगेशकर की ही। मनोज कुमार का लिखा ये गीत है, संगीतकार उत्तम सिंह और जगदीश खन्ना।

अब आइए सुनते हैं जावेद अख्तर का लिखा ये गीत अनु मलिक के संगीत निर्देशन में। फिल्म का नाम है सड़क, आवाज़ है अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की।

अब आइए हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मिशन कश्मीर फिल्म का ये गीत। आवाज़ है अलका याग्निक और उदित नारायण की। इस गीत को लिखा है समीर ने, संगीतकार हैं शंकर एहसान लाए।

विरासत फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त करने की हमें अनुमति दीजिए। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी कांट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शब्द कीर्तन,
3: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

0: टेलीलॉ के माध्यम से ना सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: बोल बोल के थक गया। क्या हुआ?
5: नया किडबैग चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो।
5: नहीं सुना तो मैनेजर से।
4: करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले
5: ले आ गया नया किडबैग।
6: RBI कहता है
7: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
8: पर्सनल लोन ऑफर
9: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
8: ट्रिप टू दुबई
9: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
10: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
9: तो क्या करूं?
10: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस

0: कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
0: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई TND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
2: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
4: नमस्कार सर। नमस्कार।
5: नमस्कार सर।
3: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में भी जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
4: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ, एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया, एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ, एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था, एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया, एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है, एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
3: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
5: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ, और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे, तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल, तो हम अपने घर की सफाई करते हैं, तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था, तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। तो जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया, तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में, तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ, तो मेरे को लेके जाने लगे जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था, तो मेरे को सिखाने लगे, तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा, तो एक स्टोरी ऐसे फनी

0: मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया, आप पढ़ो। तो मैं कहा भी ठीक है, आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी, देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
1: वाह वाह, बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
0: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे,

0: फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी, उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया, तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था, फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा, तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे, तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे कि मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं, जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं भी हम नहीं कर सकते, हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया, तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला, और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर।
1: देखिए, आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर बीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है।
0: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
1: अनिमेश जी,
2: सर, मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूंगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना, एंड देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब चीज़ हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कंपटीशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा। मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
2: सर जी, पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कंपटीशन में राइवलरी रहती है। बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही कि उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है, एंड हमारे ही हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
0: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया, फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था भी अनिमेश वो ब्लॉक सही है, उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं, तो दोस्ती भी चाहिए सर। बट जब

0: ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए, आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
0: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ, जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम और ओडिशा में बेलपना, वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, ये तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगन पल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की

कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं बहुत विशेष है। ऐसे ही छाए रहिए साथियों। गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस न हो, कोई बड़ी बिल्डिंग न हो, कोई क्लासरूम भी न हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में किन्यान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली है। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शन 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में

खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहाँ अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहाँ एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहाँ युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहाँ ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाए। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।

साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती है। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर है, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने

0: अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
3: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे पुनरेकवारं भवद्भिः सह संयुज्य अहम् अत्यन्तम् आनन्दितः अस्मि। देशस्य विभिन्नेषु भागेषु अस्माकं देशवासिनः देशहिते समाजहिते च एतादृशानि अद्भुतानि कार्याणि कुर्वन्तः सन्ति। वयं च यदा तद्विहितानां कार्याणां विषये शृणुमः तदा वयं नूतनां प्रेरणां प्राप्नुमः। अद्य कार्यक्रमस्य आरम्भम् अहम् एथलेटिक्स् इत्येतस्मिन् क्रीडाक्षेत्रे देशस्य अनयैव उपलब्ध्या करिष्यामि। कतिपयेभ्यः दिनेभ्यः पूर्वमेव झारखण्ड राज्यस्य रांची नगरे नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन इत्याख्या प्रतियोगिता समायोजिता। एतस्यां प्रतियोगितायां देशस्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः आगताः प्रायः 800 क्रीडकाः सहभागितां कृतवन्तः। एतस्मिन् नवधौ भिन्नासु चतुर्षु स्पर्धासु चत्वारि राष्ट्रिय मानाङ्कनानि भग्नानि जातानि। गुरिन्दर वीर सिंहः, विशाल टीके इत्यसौ, तेजस्विन शंकरः, देवमीणा, कुलदीप कुमारश्च एतैः मित्रैः विभिन्नेषु वर्गेषु नूतनानि कीर्तिमानानि रचितानि। सर्वप्रथमम् अहम् एतान् सर्वानपि भूरिशः वर्धापयामि। सखायः, एकस्याः स्पर्धायाः अधिदेशं बहु चर्चा जायमान अस्ति। सा च अस्ति शत मीटर मित धावन स्पर्धा इत्येषा, अर्थात् शत मीटर मितः धावनक्रमः। केवलं दिनद्वये पुरुषवर्गीये शत मीटर मिते धावनक्रमे राष्ट्रिय मानाङ्कनं वारत्रयं भग्नं जातम्। याभ्यां क्रीडकाभ्याम् एतत् भद्र प्रदर्शनं कृतं तौ स्तः गुरिन्दर वीर सिंहः, अनिमेष कुजूरश्च। अहं चिन्तितवान् ऐषमः मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे एताभ्यां क्रीडकाभ्यां सह वार्तां कुर्याम्। प्रधानमन्त्री अनिमेषवर्य नमस्कारः। गुरिन्दर वीरः भवतेपि नमस्कारः। सत्श्री अकाल च। अनिमेष गुरिन्दर वीरौ नमस्कारः श्रीमन्। नमस्कारः महोदय। प्रधानमन्त्री साधु भ्रातः, भवता तु अतिविशिष्टा उपलब्धि समधिगतास्ति। भवद्युगलमपि विशेष प्रदर्शनमकरोत्। वयं सङ्गीते तु युगलप्रदर्शनं दृष्टवन्तः, परं समाह्वानेऽपि अधुना युगलप्रदर्शनं भवति। तत्र प्रथमं एकः समाह्वानं पुरस्करोति, द्वितीयश्च तत् समाह्वानं स्वीकरोति, तृतीयवारं पुनश्च समाह्वानं करोति। अत्यन्तं रुचिकरः विषयः अभवत् भवतोः। अहमिच्छामि मन की बात इत्यस्य श्रोतारः अपि एतस्मिन् विषये भवतोश्च विषये जानीयुः। भवद्भ्यां यः पराक्रमः कृतः तं विषयमभिजानीयुः।

दोस्तों, अपने किरदार को आपके किरदार से जोड़कर प्यार भरे रिश्तों का एक मुकम्मल जहां बनाने और इस कार्यक्रम के सुनहरे सफर में सुनने आपके दिल की बात और पूरी करने आपकी फरमाइशों को गीतों के जरिए हाजिर हूं मैं आपका दोस्त शैलेश दुबे। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: दोस्तों टेलीफोन नंबर 0542221052 यानी 0542221052 पर कॉल करके आप भी जुड़ सकते हैं सीधे मेरे साथ कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश में। तो बस देर किस बात की, शुरू करते हैं आपसे बातचीत का सिलसिला और लेते हैं ये पहला कॉल। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते नमस्ते,
1: आपका नाम जान सकते हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात आपके दोस्त शैलेश दुबे के साथ हो रही है। आपका शुभ नाम?
1: मैं रेखा पांडे, चौखंडे यहाँ पे वाजिद से बोल रही
0: हूँ। रेखा पांडे जी, बहुत बहुत हाँ। स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद आपका, कब से ट्राई कर रही थी, लगी नहीं रहा था, मुझे लगा कि नहीं लगेगा फोन।
0: नहीं नहीं, एक्चुअली होता क्या है ना कि हमारे अन्य जो श्रोता साथ

0: उन लोगों का भी प्रयास लगातार जारी रहता है फोन लगाने का और बातचीत करने का, तो बस इसलिए थोड़ी सी असुविधा हो जाती है हमारे अन्य साथियों। तो क्या करती हैं रेखा जी आप?
1: मैं तो हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, हाउसवाइफ हैं, और हाउसवाइफ हमें लगता है कि ये जो है वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
1: जी, किसी दिन छुट्टी नहीं।
0: हाँ, ये 24/7 का जो ये जॉब है वो अहम भी हो जाता है, क्योंकि बाकी जितनी चीजें हैं, चाहे वो नौकरी हो, बिजनेस हो, वो शुरुआत उसकी हर दिन घर से ही होती है। तो ये जो जिम्मेदारी आप लोगों की है वो सबसे अहम है, क्योंकि आप लोग जो है ना वो बच्चों को भी, जो उनकी देख रेख है उनकी बात कर लें, या जो घर के बड़े हैं उनकी देख रेख की बात कर लें, या जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके देख रेख की बात कर लें, तो बिना कुछ सोचे, यानी हम दूसरे शब्दों में कहें तो बिना खुद के बारे में सोचे आप लोग लगातार लगी रहती हैं। इसके लिए आप लोग
1: पहले पति, फिर उसके बाद बच्चे। जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों पर ज्यादा ध्यान देते।
0: हाँ, ये पति और बच्चों के साथ साथ अगर हम लोग एक संयुक्त परिवार में हैं जहाँ दादा दादी भी हैं बच्चों के, तो उन लोगों का भी परवरिश करना और तीन तीन पीढ़ियों को संभालना, देखना और अपने बारे में थोड़ा सा कम सोचना, ये एक नैतिक जिम्मेदारी के रूप में आप लोग लेती हैं। इसके लिए भी आप लोग जो है वो धन्यवाद के पात्र हैं। तो और घर में और कौन कौन है?
1: मेरे दो बेटी हैं, दोनों बेटियों की शादी हो गई है, बस वही बेटे हैं अभी।
0: अच्छा,
1: क्या छोटा है, बेटियां भी दोनों मतलब जॉब पे ही करती हैं, ससुराल में भी हैं, जॉब करती हैं।
0: अच्छा
1: बच्चों को जरूरत है, पढ़ा लिखा कर इतना काबिल किया कि घर में बैठने का जरूरत ही नहीं है।
0: बिल्कुल, और ये होना भी चाहिए कि बच्चों को जो है वो एक आरामदायक जिंदगी तब तक मुहैया कराएं जब तक उनके लिए जरूरी है, लेकिन थोड़ी सी सीख जो 5 से 10 वर्ष का हो सकता है वो जरूर उन्हें अपने रहते तपा के और निखारने का पूरा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि बच्चे अपने बारे में उस सीमा तक जाके नहीं सोच पाते हैं जो उनके आने वाली जिंदगी में बहुत जरूरी हो जाता है।
1: जी, मेरे बच्चे क्या है, देखिए बेटी और बेटा मतलब दोनों मतलब ही गवर्नमेंट यहाँ से बीएचयू से ही लोग पढ़ के निकले हैं।
0: चलिए, अच्छी बात है। तो किस फिल्म का गीत सुनवा दें हम आपको?
1: मुकदमा फिल्म का,
0: मुकदमा फिल्म का कौन सा गीत?
1: और छोटा सा एक घर होगा, घर में होंगे सजना जी।
0: चलिए, तो हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। नमस्कार।
1: नमस्ते।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार नमस्कार, किससे बात हो रही है?
1: जिला सागर तहसील बंडा मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, करण सिंह।
0: करण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या हालचाल है आपके?
1: हाँ, वो किसान करते हैं
0: जी, आपका जो मुख्य काम है वो खेती बाड़ी का ही है?
1: हाँ, खेती बाड़ी का काम करते हैं।
0: जी जी तो परिवार में और कौन कौन है आपके?
1: सभी है, माता है, पिता है, सभी है।
0: चलिए, सबसे अच्छी बात यह है कि आपके परिवार के जो सदस्य हैं वो आपके साथ हैं, तो खुशियां जो हैं वो थोड़ी बढ़ जाती हैं। जब कोई भी अवसर आता है खुशी का तो वो बढ़ जाता है, उसको मनाने का, त्योहार को मनाने का या कोई अवसर है उसको मनाने का जो आनंद है वो दोगुना हो जाता है।
1: हाँ, तामिल जोर के रहते हैं।
0: तो करण जी, आपकी तरफ का मौसम कैसा है आजकल?
1: अबे हमारे सागर मध्य प्रदेश में बहुत गर्मी हो रही है।
0: बहुत गर्मी है।
1: हाँ,
0: तो आप लोग
1: हो
0: गर्मी से
1: रही है।
0: बचने के लिए किस तरह के जो प्रयास हैं वो करते हैं, कौन कौन से ऐसे उपाय हैं?
1: ये जो तौलिया है, कपड़ा है, मुंह से बांध लेते हैं, ज्यादा पानी पीते हैं और 5-6 बजे घर से निकलते हैं।
0: क्योंकि खेती बाड़ी का जो काम है वो ऐसा काम है कि उसकी जरूरत लगातार बनी रहती है, तो आप लोगों को ज्यादा समय जो है वो खेतों पे गुजारना पड़ता है, अपने बाग बगीचों में गुजारना पड़ता है।
1: काम में तो हम और एक किसान है तो रहते ही हैं।
0: जी जी जी इसीलिए मैंने कहा ना कि आप लोगों को जो बीज बचाव का जो बचाव के तरीके हैं वो अपनाने पड़ते होंगे बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग समय में, तो वो काफी अहम हो जाता है आप लोगों के लिए कि जो गर्मी के मौसम हो या जाड़े का मौसम हो या बरसात का मौसम हो, आप लोगों का खेतों से जो जुड़ाव है वो कम नहीं होता या आप लोग बचने का प्रयास नहीं करते। तो जो प्रयास करते हैं वो मौसम के मार से बचने का करते हैं कि आप लोग चूंकि किसान हैं तो आप लोग हम लोगों के लिए बहुत अहम हो जाते हैं।
1: जी जी
0: तो किस फिल्म का गीत सुनवा दें हम आपको करण जी?
1: सोल्जर,
0: अच्छा
1: बॉबी देवल की।
0: जी जी जी सोल्जर फिल्म का कौन सा गीत?
1: महफिल में बार बार उन पे नजर गई।
0: चलिए, तो आपने हमें कॉल किया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। नमस्कार।
1: नमस्कार सर।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: मैं मुरलीधर गुप्ता एडवोकेट गुप्ती सोनभद्र उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ सर जी। नमस्कार।
0: मुरलीधर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: नमस्कार सर, आप शैलेश जी शायद बोल रहे हैं।
0: जी जी जी हम शैलेश ही बोल रहे हैं। और आपने
1: आप
0: जी
1: मैं आपकी आवाज पर ध्यान लिया सर।
0: क्या बात है। और ये जो प्यार है और ये जो मोहब्बत आप इस पहचान के जरिए

0: जता रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। तो कैसे हैं मुरलीधर जी?
1: हम अच्छे सर, आप कैसे हैं सर?
0: बस आप अच्छे हैं तो हम लोग भी अच्छे हैं। बस थोड़ी सी गर्मी का जो माहौल है वो थोड़ा परेशान करके रखा हुआ है, ना केवल मुझे बल्कि ऐसा लगता है कि समाज का बहुत सा ऐसा वर्ग है जो इस समय गर्मी से बहुत परेशान है।
1: बहुत बहुत बहुत इस समय गर्मी एकदम बहुत तेज गर्मी चल रही है सर। ये नौटप्पा गर्मी ये 25 तारीख से शुरू हुआ है सर।
0: जी, ये नौतपा के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि नौतपा यानी 25 तारीख के पहले भी अगर आप गर्मी का माहौल देखिए तो वो काफी बढ़ा हुआ है, और उसमें काफी बढ़ा हुआ था।
1: इस वर्ष बहुत तेज गर्मी है सर,
0: हाँ, बहुत तेज गर्मी।
1: और जरूरी भी है सर। गर्मी नहीं होगी तो बरसात कहाँ से आएगी?
0: क्या बात है।
1: ये तो ऋतु का परिवर्तन का समय है। नहीं परिवर्तन होगा तो पानी नहीं बरसेगी, बरसात नहीं होगी तो खेती कहाँ से होगा।
0: जी,
1: गर्मी भी होना जरूरी है, बरसात भी होना जरूरी है, और सर्द का मौसम भी जो आता है वो भी जरूरी है।
0: जी बिल्कुल, ताकि जो ऋतु का परिवर्तन है, जो मौसम का परिवर्तन है, वो हमें ये एहसास भी दिलाता है कि जिस तरह से अलग अलग मौसम हैं तो वो एक दूसरे के पूरक के रूप में हो जाते हैं। जब गर्मी है तो हमें ठंडी भी अच्छा लगता है, या ठंडी है तो गर्मी का भी आनंद आता है, और अलग अलग ऋतु है तो अलग अलग फल को खाने का भी मौका मिलता है जो अलग अलग सीजन में हमें मिलते हैं। जैसे कि इस समय आम का जो समय है, हमें लगता है कि जितने भी हमारे श्रोता होंगे, ये एक ऐसा फल है जो सबको पसंद आता है।
1: फलों में राजा आम ही तो है सर।
0: जी, फलों का राजा भी आम है, और
1: जी
0: गर्मी में ये हमें मिलता है, इसलिए भी गर्मी थोड़ी सी राहत आती है, कहीं ना कहीं से हमें राहत पहुंचाती है, और गर्मी से बचने के बहुत सारे उपाय भी हम लोगों को करने पड़ जाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे प्रयास होते हैं जो हम लोग अपने व्यक्तिगत बचाव के लिए करते हैं, तो साथ ही साथ बहुत से ऐसे हमारे जो श्रोता साथी हैं उनका ये भी प्रयास रहता है कि जो हमारे समाज में बहुत से जानवर हैं, बहुत से पशु हैं, पशु पक्षी हैं, तो उनके बचाव के लिए भी हम लोग प्रयास करते ही रहते हैं, और ये करते रहना भी चाहिए क्योंकि वो लोग बेजुबान होते हैं और हम लोगों से खुल के कुछ मांग नहीं सकते, तो हम लोगों की ये नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि उन लोगों के लिए भी हम लोग थोड़ा फिक्र करें, जो परवाह है वो करें, ताकि उनको भी राहत मिल सके इस उमस भरे और गर्म भरे मौसम में। तो किस फिल्म का गीत सुनवाते हैं आपको?
1: और तो हम चाहेंगे सर इस गर्मी में हर लोग अपना अपना बचाव रखें सर।
0: जी बिल्कुल, तो मुरलीधर जी किस फिल्म का गीत सुनवाते हैं हम आपको?
1: सिलसिला फिल्म है सर
0: जी,
1: जी, देखा एक ख्वाब तो है झूल खिले हुए।
0: क्या बात है। आपके पसंद की अगर हम बात करें तो इस उमस भरे मौसम में ये बहुत ही खुशनुमा गाना हो जाएगा सभी लोगों के लिए।
1: जी, आपने बताया, तारीफ किया तो मैं कहा ठीक है सर, धन्यवाद।
0: नहीं, ये प्यार जताने का तरीका होता है, कभी आप लोग जताते हैं हम लोगों के लिए, तो हम लोग भी एक प्रयास करते हैं कि ये जो आप लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट है वो हमेशा ऐसे ही बनी रहे, और मुस्कुराहट जो है वो हर रोज ऐसे ही खिल के हम लोगों के सामने आए। तो आपने हमें कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम सुनवा रहे हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत, नमस्कार।
1: ओके सर, नमस्कार।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: हेलो सर, नमस्ते। जी
0: नमस्ते नमस्ते, किससे बात हो रही है?
1: सर, आपकी वही जानी पहचानी श्रोता रिंकी और पिंकी बात कर रही हूँ, जगदीशपुर शिवगढ़ जिला रायबरेली से।
0: रिंकी और पिंकी जी, बहुत दिनों बाद आप लोगों से बात हो रही है, तो इस इंतजार को खत्म करने के लिए आप लोगों
1: कि
0: को बहुत
1: हमारी
0: बहुत
1: कॉल ही नहीं
0: शुक्रिया।
1: लगेगी। जी सर, सर हमें लग रहा था कि आज हमारी कॉल ही नहीं लगेगी, पर मुलाकात हो गई तो सर बहुत अच्छा लगा।
0: बस ऐसे ही खुशी के जो पल होते हैं वो
1: जी
0: हम लोगों
1: वैसे
0: को भी
1: सर
0: मिलता रहता है।

0: पुराने श्रोताओं के लिए प्यार कम हो गया, तो इसीलिए हमने कॉल लगाना भी छोड़ दिया।
1: जी नहीं, ये नहीं कह सकते कि जो हमारे परिवार के पहले के सदस्य हैं उनके प्रति हमारा प्यार कम हो जाता है, ऐसा हो ही नहीं सकता।
0: क्या है ना, बहुत सारे चैनलों पर नए पुराने के चक्कर में ना सब पुराने श्रोताओं के साथ बहुत गलत किया जा रहा, तो हमें लगा आपके चैनल भी ऐसा हो रहा होगा।
1: नहीं, आकाशवाणी की सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत बात यही है कि हम नए साथियों का स्वागत तो करते हैं, लेकिन जो हमारे पुराने श्रोता साथी हैं उनका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ते। बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है।
0: बनारस के क्या हाल चाल है?
1: बनारस के हालचाल बहुत अच्छे हैं, बस थोड़ी सी मौसम जो है वो गर्मी वाली है, तो बाकी लोग और हम लोग भी थोड़े परेशान हैं गर्मी के चलते।
0: जी सर, इस समय सर बहुत ज्यादा धूप पड़ रही है और सर काफी ज्यादा गर्मी भी हो रही है, सभी लोग अपना ख्याल रखें और सर धूप में जाने से बचें।
1: बिल्कुल, और ये सरकार की तरफ से भी अपील की जा रही है लगातार, और प्रशासन की तरफ से भी अपील की जा रही है कि अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो आप लोग बाहर ना निकलें, और जो काम अगर घर से करना संभव हो तो आप लोग घर पे ही उस काम को निपटा लें, ताकि बाहर जाने की
0: सर वैसे तो सर इस समय तो हम लोग घर पे ही रहते हैं, अपने खेतों में भी नहीं जाते, या तो 4 बजे से जाते हैं या सुबह सुबह ही जाते हैं,
1: हाँ,
0: बाकी
1: क्योंकि
0: तो सर घर पे ही समय बिताते हैं और साथ में रेडियो भी सुनते रहते हैं सर।
1: बिल्कुल, क्योंकि काम भी जरूरी है, और मौसम के चलते अगर हम लोग काम छोड़ दें तो भी वो सही बात नहीं होगी। तो बस इस एक जो सामंजस्य होता है कि अपने काम को पूरा करने के लिए हम लोग समय को परिवर्तित कर देते हैं और शिफ्ट करके कभी सुबह में या फिर थोड़ा शाम में या लेट नाइट कर लेते हैं, ताकि काम भी हो जाए और जो मौसम की मार है उससे भी हम लोग बचे रहें। तो रिंकी पिंकी जी, आपको हम किस फिल्म का गीत सुनवा दें?
0: मूवी का नाम है स्टेंट मैन और गीत के बोल हैं आज मिले हो कल फिर मिलना। सर और सर मेरी बहन से भी थोड़ी सी बात कर लीजिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बात कराएं।
0: हेलो सर, नमस्ते सर।
1: नमस्ते नमस्ते, तो हम अभी किससे बात कर रहे हैं?
0: रिंकी बात कर रहे हैं।
1: अच्छा, यानी कि अभी तक जो माहौल था वो पिंकी जी ने बना रखा था और अब
0: जी
1: मेरी
0: सर
1: बात हो रही है
0: बिल्कुल।
1: रिंकी जी से।
0: जी सर,
1: तो
0: सर
1: कैसे?
0: कैसे हैं आप?
1: बस हम अच्छे हैं, आप कैसी हैं?
0: सर हम भी बहुत अच्छे हैं, और आपसे बात हो गई तो और अच्छे हो गए।
1: बस, तो ऐसे ही आप लोगों के चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो हमेशा बनी रहे और आप लोग हमेशा खुश रहें, यही हम लोग सोचते हैं।
0: जी सर
1: तो रिंकी जी और पिंकी जी, आप लोगों ने हमें कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम सुनवा
0: जी
1: रहे हैं
0: सर
1: आपको आपकी पसंद का ये गीत,
0: नमस्ते
1: नमस्कार
0: सर।
1: नमस्ते नमस्ते।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते नमस्ते, किससे बात हो रही है हमारी?
1: सर प्रगति पांडे।
0: प्रगति जी, कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: सर फिलहाल तो मैं इलाहाबाद से हूँ। मुझे परमानेंट एड्रेस लिखा हुआ रांची का।
0: अच्छा, आप अपने बनारस से ही हैं?
1: हाँ जी सर।
0: तो आप इलाहाबाद में घूमने गई हैं या फिर? अच्छा,
1: ऑक्यूपेशन से मैं टीचर हूँ।
0: तो प्रगति जी, आप बनारस में कहाँ से हैं?
1: सर बनारस में चौखंडी रांची बाजार वाराणसी से।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप शादी के बाद अभी जो है वो शिफ्ट हो गई हैं अपने ससुराल यानी इलाहाबाद में?
1: मैं पीएचडी एडमिशन के प्रिपरेशन के लिए मैं बनारस का प्रिपरेशन कर रही हूँ।
0: अच्छा
1: पीएचडी एडमिशन।
0: अच्छा अच्छा यानी पढ़ाने लिखाने के साथ साथ अभी जो पढ़ाई लिखाई का दौर है वो आपने जारी रखा हुआ है, और अच्छी सोच है ये, क्योंकि हमेशा जो हम एक मुकाम हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद अगर वहाँ पे खड़े हो के हम और आगे की सोच रखें और उसके लिए प्रयास करें तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें जो एफर्ट लगते हैं वो थोड़ा बढ़ा के लगाना पड़ता है।
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो इलाहाबाद की तरफ का अभी जो मौसम है वो कुछ बदला बदला सा है या फिर अभी गर्मी का वही रूप है? अभी गर्मी वैसे ही पड़ रही है।
1: सर आपका नाम? आपसे तो मेरी फर्स्ट टाइम बात हो रही है।
0: जी जी आपसे मेरी बात पहली बार हो रही है और हम शैलेश दुबे बोल रहे हैं। तो प्रगति जी, किस फिल्म का गीत सुनवाते हैं हम आपको? अरिजीत सिंह की आवाज में कोई भी गीत? चलिए तो हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। नमस्कार।

0: कार्यक्रम
1: हेलो मैम
0: हेलो फोन इन फरमाइश।
1: जी, नमस्ते
0: नमस्ते, किससे बात हो रही है
1: जी।
0: हमारी?
1: मैं इंदौर से बोल रही हूँ, जीनत परवीन
0: जी जीनत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में।
1: जी। पहली बार कॉल पर लगा है मेरा
0: बहुत बहुत और बहुत स्वागत है फिर तो आपका।
1: जी।
0: तो कैसी हैं आप?
1: जी अच्छे हूँ
0: और उम्मीद है कि इस कार्यक्रम को सुनने के बाद आप और अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि आपकी जो बात हो रही है पहली बार हो रही है, तो ये
1: जी
0: बहुत प्यारा पल है आपके लिए और मेरे लिए भी।
1: जी
0: तो वहाँ आप क्या करती हैं?
1: हाउसवाइफ हूँ।
0: जी, आप अपने ससुराल में हैं या कहीं मतलब जॉब के सिलसिले में बाहर हैं?
1: नहीं,
0: पति के
1: जॉब
0: से?
1: के लिए बाहर रहते हैं हम, इंदौर में ही। ससुराल तो इधर है, नीमच की तरफ
0: अच्छा, मतलब जॉब के सिलसिले में आप लोग उधर हैं इंदौर में।
1: जी।
0: चलिए, अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग जन्म कहीं लेते हैं और कर्म भूमि कहीं और बना लेते हैं।
1: वैसे मेरी पैदाइश इंदौर की है ना
0: इसलिए आप इंदौर को ज्यादा पसंद करती होंगी।
1: जी, इंदौर अच्छा लगता है
0: और अच्छी जगह है भी इंदौर, बहुत साफ सुथरा जगह है और
1: जी।
0: अच्छी जगह भी है।
1: स्वच्छता पे भी अच्छा है, साफ सफाई है बहुत, खाने पीने में भी सब अच्छा है
0: और आपसे बात करके लग रहा है कि उधर के जो लोग हैं वो भी बहुत अच्छे और बहुत प्यारे हैं।
1: जी।
0: तो आपकी तरफ का मौसम कैसा है?
1: मौसम तो अभी गर्मी बहुत है
0: बहुत गर्मी है।
1: जी, बस घर पे ही रहते हैं
0: क्योंकि अभी गर्मी अगर थोड़ी बढ़ के है इस समय, जैसा कि हर तरफ गर्मी का मौसम बहुत परेशान कर रहा है लोगों को, तो
1: जी।
0: ज़रूरी यही है कि इस मौसम को प्यार से और समझदारी से निकाला जाए, और बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकले, क्योंकि
1: अब जेंट्स को तो निकलना ही पड़ता, लेडीज घर पर रहती हैं सब क्या
0: हाँ, लेकिन जो घर के मेल मेंबर्स हैं, अगर उनको घर से बाहर निकलना है तो उनको सही तरीके से निकालने का तो तरीका हम लोग कह लें, या जो व्यवस्था है वो आप लोगों के हाथों में ही होता है कि उनको
1: जी।
0: टाइम से खिलाना पिलाना और उनको सही तरीके से व्यवस्थित तरीके से बाहर भेजने की जो जिम्मेदारी आप लोग निभाती हैं, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी,
0: तो किस फिल्म का गीत सुनवा दें हम आपको?
1: मुझे वो सुनना है, बदलते रिश्ते है ना फिल्म। मेरी सांसों को जो महका रही है पहले
0: बहुत प्यारा गीत
1: प्यार
0: है।
1: की। चले जाऊंगी मम्मी का, मंदसौर में रहती हूँ, वो भी सुनती है जी।
0: बताएं।
1: मम्मी का नाम पूर्वी है, बहन का नाम अंजुम परवीन, रोशन, रुकाना, शम्मी, शाइस्ता, गजाला, अंजुम, ये बहनें हैं हमारी
0: चलिए, तो अच्छी बात है कि आप ना केवल अपनी फरमाइश हम तक पहुंचाई हैं, बल्कि आप जिनको बहुत ज्यादा प्यार करती हैं उनका भी आपने नाम लिया, और अब वो लोग भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। तो जीना
1: जी।
0: जी, आपने कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम सुनवा
1: जी
0: रहे
1: थैंक यू
0: हैं
1: सर।

0: कार्यक्रम
1: हेलो फोन एंड फरमाइश।
0: जी कार्यक्रम हेलो फोन एंड फरमाइश।
1: जी नमस्कार अंकल जी।
0: नमस्कार नमस्कार। इतनी प्यारी सी आवाज किसकी है
1: जी? लक्ष्मण सिंह चंदेल, ग्राम बोतराई, तहसील पथरिया, जिला दमोह, मध्य प्रदेश से।
0: लक्ष्मण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: जी सर धन्यवाद।
0: कैसे हैं आप और आपकी तरफ का मौसम कैसा है?
1: बिल्कुल बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है सर, 43-44 के समथिंग सर।
0: तब तो ये बहुत ज्यादा है।
1: जी जी सर।
0: तो इतनी जो तपन वाली स्थिति है, इससे आप लोग कैसे बचने का जो प्रयास है वो किस तरीके से बच पाते हैं?
1: देखिए सर, अभी तो हम तो किसान आदमी हैं सर
0: जी,
1: और अभी खेत से आ चुके हैं सर अभी, क्योंकि सुबह गए थे 7-8 बजे।
0: जी जी।
1: और 11 बजे घर आ जाते।
0: अगर हम लोग आप लोगों की बात करें जो हमारे किसान साथी हैं, तो उन लोगों के लिए तो स्थिति और ये जो परिस्थिति है बहुत मुश्किल भरी हो जाती है।
1: जी बिल्कुल सर।
0: चलिए, ये जो हौसला है आप लोगों का, ये जो अपने प्रयास आप लोग हमेशा करते हैं, ताकि खुद के लिए भी सोचते हैं आप लोग, हम लोगों के लिए सोचते हैं, तो इसके लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और हर मौसम में आप लोग खेतों का जो एक खूबसूरत चित्र बनाते हैं अपने हलों के द्वारा, अपने प्रयासों के द्वारा, वो ऐसे ही हमेशा बना रहे, आप लोगों का प्रयास जो है हमेशा सफल हो, ये हम लोग कामना करते हैं।
1: क्योंकि अभी सर मूंग की कटाई चल रही है, मूंग की।
0: जी, तो यानी आप लोगों का काफी समय निकल जाता होगा खेतों पे।
1: बिल्कुल सर, अभी कटाई होगी, उसके बाद में फिर सोयाबीन की बुआई चालू हो जाएगी सर।
0: चलिए, तो आप लोग स्वस्थ रहिए, क्योंकि आप लोगों का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। जो आपका काम है वो अनवरत चलता रहे, रुके ना किसी भी स्थिति परिस्थिति में। तो लक्ष्मण जी, 90 वर्ष पूरे हो गए हैं।
1: जी जी सर।
0: तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे हमारे साथियों को, जो हमारे रेडियो के नियमित श्रोता हैं, जो हमारे रेडियो के नए नए श्रोता हैं, जो नए नए जुड़े हैं, जो रेडियो के प्यार में हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप?
1: जी सर, हम तो जय के वो चाहेगा रेडियो तो सर ऐसा कौन हुआ सर, मतलब साथी है सर। बिल्कुल सर, और रेडियो के बिन हम रह नहीं सकते, खेत पे हो चाहे घर पे हो सर, रेडियो लेकिन हम सुनते रहते हैं
0: हमेशा।
1: बिल्कुल।
0: और ये प्यार जो है वो हमेशा बना रहे, ऐसी हम कामना करते हैं, क्योंकि रेडियो जो है वो अपने सभी साथियों के लिए हमेशा एक कदम आगे बढ़ के रहने का प्रयास करता है, लेकिन आप श्रोता साथी जो है वो हमेशा एक कदम आगे ही मिलते हैं।
1: देखिए सर, रेडियो एक ऐसा साधन है
0: जी,
1: जो आप अपना काम भी करते रहे और सुनते रहे।
0: चलिए, तो किस फिल्म का गीत सुनवाते हैं हम आपको?
1: आज सुने फिल्म हमको तुमसे प्यार है, उसके गीत के बोल है तेरे इश्क में पागल हो गया रे।
0: चलिए, तो आपने
1: कुछ मित्रों के नाम भी लेना चाहते सर?
0: बहुत प्यार से ले अपने मित्रों के नाम।
1: जी, मांगीलाल चंदेल हैं, ओम प्रकाश नेमा जी हैं, और विपिन कटारे जी हैं, गोरू भाई हैं सर। बस
0: तो ये सारे मित्र जो हैं, उन लोगों का हम इस कार्यक्रम में आपके ही जरिए स्वागत करते हैं, और आपको और आपके सभी मित्रों को सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत सा गीत। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम का ये भाग आप सुन रहे थे अपने दोस्त शैलेश दुबे के साथ। इस कार्यक्रम में आप भी शामिल हो सकते हैं और सुन सकते हैं अपने पसंद के गीत। आप हमें फोन कर सकते हैं प्रत्येक बुधवार को सुबह 10:30 से। हमारा फोन नंबर है 0542-222-1052, यानी 0542-222-1052। दोस्तों, ऐसे ही किसी प्यार भरे एक और खूबसूरत सफर में आप और हम होंगे फिर से साथ साथ। तो अगली मुलाकात तक के लिए दीजिए अपने दोस्त शैलेश दुबे को इजाजत।

वादे के साथ कि आप जहां भी होंगे अपने चेहरे की मुस्कुराहट को यूं ही बरकरार रखेंगे और अगर हो सके तो किसी और चेहरे की मुस्कुराहट का कारण भी जरूर बनेंगे। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश, प्रस्तुति शैलेश दुबे की थी। मीडियम वेव 241.56 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। दिन का 1 बजने को है, कुछ क्षणों में आप सुनेंगे समाचार जिसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जा रहा है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्रपट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं।

0: ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं। श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
0: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक अपनी पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
0: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
1: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील भी की। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले एक वीडियो का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण होता है। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत करने पर बल दिया। सिलीगुड़ी में श्री बोस ने बताया कि पर्याप्त बाड़ न लगाए जाने के कारण भारत बांग्लादेश सीमा का एक संवेदनशील हिस्सा असुरक्षित बना हुआ है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया है। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण हो रहा है और इसे श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमताओं से लैस किया जाएगा। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा और ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 241.5 हर्ट्ज मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। लीजिए सुनिए कुछ खोए व्यक्ति के संबंध में सूचना। पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से प्राप्त सूचना के अनुसार रूपा पत्नी दिनेश कुमार गुप्ता ये ग्राम रामपुर थाना जिगना जनपद मिर्जापुर की रहने वाली हैं, कहीं लापता हो गई हैं। रूपा के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार है। उम्र 32 वर्ष, लंबाई 5 फीट 2 इंच, रंग सांवला, इकहरा मजबूत बदन, चेहरा गोल है। रूपा जब लापता हुई थी उस समय साड़ी पहने हुए थी। रूपा के बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर

अपने निकट के थाने या पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर को सूचित करें। यहीं से एक और भी सूचना प्राप्त हुई है। आकाश कुमार, पिता का नाम सूर्यबली, ये ग्राम पतलुकिया थाना चुनार जनपद मिर्जापुर के निवासी हैं। आकाश कुमार के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 18 वर्ष, लंबाई 5 फीट 2 इंच, रंग गोरा,

रंग गोरा, इकहरा बदन, चेहरा लंबा है। ये जब लापता हुए थे उसमें काले रंग का टी शर्ट और नीले रंग का जींस और पैर में स्लीपर पहने हुए थे। आकाश कुमार के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो अपने समीप के थाने या पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर को सूचित करें। एक और भी सूचना यहीं से है। ललिता पुत्री शिवपाल बिंद, निवासनी ग्राम महेशपुर, थाना ड्रमंडगंज, जनपद मिर्जापुर, कहीं लापता हैं। ललिता की उम्र है 21 वर्ष, लंबाई 5 फीट 6 इंच, रंग गोरा, डील डोल सामान्य है, चेहरा गोल है। ये जब लापता हुई थी उसमें मैरून और लाल रंग की साड़ी पहने हुए थी। ललिता के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो अपने निकट के थाने या पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर को सूचित करें। आप सुन रहे थे खोए व्यक्ति के संबंध में सूचना। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में सुनिए शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा का प्रसारण होगा रात्रि 10 बजे। ये कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का प्रोग्राम अंजुमन आप सुनेंगे रात 9:30 पर। रात 8 बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे मनहर उदास। शाम 7:31 पर पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में प्रतिभागी होंगे अरुण पांडे और सना सलीम। कृषिगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर किसान भाई सुनेंगे प्रसव काल में पशुओं की देखभाल विषय पर डॉक्टर आलोक पांडे से सुधीर कुमार श्रीवास्तव की बातचीत। इसी कार्यक्रम में कल्पना चटर्जी का लोकगीत भी होगा। शाम 5 बजे बच्चे सुनेंगे अपना कार्यक्रम बाल गोपाल। शाम 5:15 पर युवा साथी युवाणी कार्यक्रम में सुनेंगे आज की बात युवाणी कैंपस से, यूथ डायरी, विश्व घटनाचक, रोजगार सूचना और फिल्म संगीत। स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 2:30 पर आरोग्यम। फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम जो व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित होगा आप सुन सकते हैं दिन में 1:30 पर। आज इतवार है, इस कार्यक्रम में दिन 1:15 पर आप सुनेंगे झलकी छटंकी गुरु, लेखक ठाकुर प्रसाद सिंह, प्रस्तुति विश्वनाथ पांडे की। कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, DTH, DRM 1233 किलोहर्ट्स, वेव्स OTT पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब से कुछ ही पलों बाद यानी ठीक 1:10 पर आप सुनेंगे इलाकाई खबरें जिसे लखनऊ केंद्र से संप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर बचाव के उपकरण है, यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सके। जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते।
1: वजीर आजम ने उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के आकाश गुप्ता का भी जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की मनोरमा नदी को साफ किया।
0: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी हो, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गए।
1: वजीर आजम ने कहा कि हिंदुस्तान के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें तरगीब देता है। उन्होंने आवाम से अपील की कि आप सभी अपने आसपास की जा रही ऐसी कोशिशों को जरूर देखें और जो लोग मुआशरे के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, उनकी सताइश कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। फर्टिलाइजर के तवाजुन और मुनासिब इस्तेमाल को फरोग देने के लिए एक महीने की खेत बचाओ मुहिम कल से शुरू होगी। मरकजी वजीर बराए ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इस मुहिम को कौमी मुहिम बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग में उन्होंने कहा कि मुहिम का खास मकसद फर्टिलाइजर का तवाजुन और मुनासिब इस्तेमाल, मौसम के चैलेंजेस के मद्देनजर किसानों को वक्त पर मशवरा, पंचायत सतह पर किसानों की शराकत दारी और गांवों को बराए रास्त स्कीम के फायदे पर मरकूज होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिकी और इत्तलात तकनीकी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कल उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। जनाब वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और दीगर खसूसी मदनी और एडवांस्ड अशिया का प्रोडक्शन कर रहा है। पूरी रियासत में आज उत्तर प्रदेश मुश्तरका बीएड दाखिला इम्तिहान 2026 का इनेकाद किया जा रहा है। इस इम्तिहान में 72 इजला में कायम 1011 इम्तिहान मराकज पर कुल 4,44,958 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। यह इम्तिहान दो मीटिंगों में मुनक़िद हो रहा है। निगरानी के लिए एक हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम कायम किया गया है। इम्तिहान के मद्देनजर इंतजामिया ने हिफाजत के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। इम्तिहान मराकज की CCTV से निगरानी की जा रही है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जून महीने में बिजली बिल पर 10% एडिशनल फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज नाफिस करने का फैसला किया है। अगले महीने सार्फीन को अपने बिजली बिल में 10% ज्यादा अदायगी करनी होगी। आज आलमी नो टोबैको डे मनाया जा रहा है। यह दिन तंबाकू के इस्तेमाल को पूरी तरह खत्म करने के मकसद से आलमी सेहत तंजीम के जरिए शुरू की गई खसूसी आलमी पहल का हिस्सा है। इस साल का मौजू है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। और रियासत के बेशतर इजला में तेज हवाएं चलने और बारिश होने से दर्जा हरारत में गिरावट दर्ज की गई है और आवाम को गर्मी से निजात मिली है। मुरादाबाद, फरुखाबाद और अमरोहा में कल रात आंधी के साथ गरज चमक और बारिश होने की खबर है। महकमा मौसमियात ने उत्तर प्रदेश के 56 इजला में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन इजला में खसूसी तौर से लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, बनारस, गोरखपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, गोंडा, बलरामपुर, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, बरेली, हमीरपुर और महोबा शामिल है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
2: मीडियम वेव 241.5 मीटर यानी 1,242 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। आज इतवार है। इस कार्यक्रम में सुनिए झलकी छटंकी गुरु, लेखक ठाकुर प्रसाद सिंह, प्रस्तुति विश्वनाथ पांडे की।

0: आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की आवाम को शदीद गर्मी के मौजूदा मौसम में बेहद एहतियात बरतने के साथ सरकारी गाइडलाइन पर अमल करने की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम के जरिए वज़ीर-ए-आज़म ने आवाम से ज्यादा मकदार में पानी पीने और धूप से बचाव के तरीके इस्तेमाल करके घर से बाहर निकलने का मशवरा दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने गर्मियों के साथ साथ आम का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी के लंगड़ा के साथ हर इलाके के आम का जायका अनोखा और उसकी महक सौंधी होती है। उन्होंने कहा कि आम हमारी ज़रई मईशत के लिए भी बहुत खास है। वज़ीर-ए-आज़म ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी हवाला दिया। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे मुहिम के तहत बनाई गई हिंदुस्तान की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस ने इसमें खुसूसी रोल अदा किया है।
1: डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है।

0: जहां तक वश चलता वाराणसी से बाहर नहीं जाते, या अगर कभी जाना भी पड़ गया तो वहां से भागने के चक्कर में रहते। बिना अंग्रेजी मुहावरा पढ़े ही वो जान गए थे कि यात्रा का मजा घर लौटने में है। इस गर्मी का आलम तो देख ही रहे हैं, ऊपर से बिजली पानी का चक्कर, बनारस वाले बिलबिला उठे, पर छटंकी को इसका पता तक नहीं लगा। रोज पंचगंगा घाट पर दिव्य स्नान, मंदिर भ्रमण और घर लौटकर नीम के पेड़ के नीचे सोना। अभी तक नीम की शाखों में बिजली के पंखे जब अमेरिका तक में नहीं लगे तो वाराणसी की क्या बिसात। मैंने छटंकी की सूझ की दाद दी, नीम के पेड़ से झूलते बिजली के पंखे, क्या आइडिया है। छटंकी चिटके,
1: आखिर के भकुआ कहले सरे कि नीम पर पंखा लटका। अरे नीम तो खुदे पंखा झले ले, मुस्कियात गदराइल में हरिया मती, हौले हौले हरी बनात का झालर वाला पंखा मालिक, मजा आ जाला नीम के नीचे। हाँ भैया हम चली।
0: बस याद आ रही है, मैं लाख रोकूं छटंकी अब रुकने के नहीं। वो बेचैन प्रेमी की तरह एकदम घर भागते हैं, जहां मुस्कुराती नीम पंखा लिए उनकी राह देख रही होगी। पतली गली में दुनिया भर के बच्चे बेमतलब के खेल खेलते होंगे, बीच बीच में रिक्शे वाले आते जाते, घरों के दरवाजे से किसी भी समय कूड़ा बाहर गली में आकर गिरता होगा, शाम को जलने से इनकार करती भट्टियों के कसैले धुएं से गली भरी होगी, पर कुएं की जगत पर नीम की छाया में छटंकी को कोई दुख नहीं है। पूरा मोहल्ला घर जैसा ही तो है, बस लड़कों को पहचानना जरा मुश्किल है, कौन उनका अपना नहीं है, फिर अपने घर में कष्ट कैसा। ये किसी को नहीं पता कि छटंकी क्या कमाते धमाते हैं, कोई जानना भी नहीं चाहता और किसी को जानना चाहिए भी नहीं। हर एक के दुख दर्द में वो सबसे पहले पहुंचते हैं, बीमारी में सब काम छोड़कर दवा दारू ला देते हैं, इतना सबको पता है। कुछ त्योहारों में उनके शरीर पर पूरे वस्त्र होते हैं, यानी एक कुर्ता गले में डाल लेते हैं, नहीं, गावटी का एक गमछा पहने और एक कंधे पे रखे वो बिना हिचक कहीं भी जा सकते हैं। जवाहरलाल की सभा हो चाहे बेनियाबाग की चुनाव सभा, वे इसी वेश में हर कहीं जय हिंद बोलने के लिए हाजिर। 1942 में सोनारपुरा के जुलूस में गोली उनके कान के पास से निकल गई थी, तब भी वो गमछा कंधे पर रखे हुए थे। वैसे चप्पल पहनने का रिवाज तो इधर चला है, छटंकी को जूते चप्पल से बड़ी दिक्कत होती है।
1: भाई मंदिर मंदिर घूमे वाले खातिर चप्पल वैसने लगाला जैसे साधु सन्यासी गांठ में मेहरिया बांध के घूमे। हाँ मालिक, हल्का रह तो उड़त रह बा, अतनिको मोह कैला नाही कि धरती धर ले बा। हाँ भैया।
0: छटंकी को जवानी में कसरत का शौक था, कभी 500 बैठक और 100-200 दंड निकाला करते थे, अखाड़े की मिट्टी भी लगाते थे और उस्ताद से गंडा भी बंधवाया था। उम्र के साथ शौक तो चला गया पर तेवर बाकी हैं। अभी भी रास्ते में निकलते हैं तो दोनों कंधे अपने आप डैने की तरह फूले रहते हैं। शरीर में मांस तो तब भी कम ही था, अब बिल्कुल लोहे की सांकल लगते हैं, जगह जगह ऐसे बल खाए हुए। उनकी जवानी उनके किस्सों में ही रह गई है, उन्हें वे रस ले लेकर सुनाते रहते हैं। खाने पीने का थोड़ा शौक है छटंकी को, पर वो शौक भी ज्यादा दिक्कत तलब नहीं। सुबह ललरी साव की जलेबी उनकी कमजोरी है, शाम को मल्लू सरदार की मलाई वो जरूर लेते हैं। वैसे पहले खाते थे, अब सुरमे की तरह आंखों में लगाते हैं, मूड में आने पर बस इतना ही खुलते हैं, नहीं तो महंगाई की शिकायत करते उन्हें मैंने कभी नहीं सुना। बिना अर्थशास्त्र का अध्ययन किए ही वो जानते हैं कि बेकार की खरीद फरोख्त से काले धन का चक्कर बढ़ता है, सो वे इस चक्कर में पड़ते ही नहीं। मलाई दूध का मजा चीनी बिगाड़ देती है, और जिस दिन वो गली से निकलकर सड़क छाप चाय पी लेते हैं उन्हें नींद ही नहीं आती। कहते हैं टूथब्रश दांत खराब कर देते हैं।
1: भला नीम का दतुवन के रहते अरे के ऊंट का बाल मुहे में नावे। राम राम राम राम राम, का जमाना आ गयल हो। अरे साबुन कौनो देहे में लगावे का चीज हो, अरे वो से तब बस गम

0: में साफा दा और सूखे खातिन बांस पर फैला के मालिक सीधे गंगा मैया के गोदी में पहुंच जा। अरे माई से निमन सफाई के करी ये साबुन, अरे राम राम कहा मालिक।
1: किसी सवारी पर बैठे उन्हें एक जमाना हुआ। गैबी, सारनाथ, दुर्गा जी, संकट मोचन, गाजी मिया, नाटी इमली का भरत मिलाप, कहां नहीं जाते वो।
0: बाकी तो देवी देवता का दर्शन खातिर अरे कौनो हाथी घोड़ा सजावल जाला, वहां तो जितना घोड़े से चल के पहुंचबा उतना मजा मिली, फिर पुण्य मुनाफे में। हाँ भैया,
1: छटंगी का एक ही शौक है, रामनगर की रामलीला। वो बनारस के पुराने नेमी हैं, यानी हर साल हर लीला देखकर आरती लेकर नाव से भरी गंगा पार करने वाले। वो किसी से डरते नहीं, नंगा नाचे फाटे का उनका प्रिय मुहावरा है। वो एकदम फटक चंद गिरधारी हैं।

0: आपको न चाहे ताके बाप को न चाहिए कि ठसक वाले छटंकी किसी से ईर्ष्या नहीं करते। शहर में एक से एक पैसे वाले हैं, पर छटंकी उनसे कहीं दबते नहीं। वो मंदिरों तथा गंगा मैया से सीधे जुड़े हुए उन हजारों लोगों में से हैं जिनकी नजर पर और कोई चढ़ता ही नहीं। वो सपने नहीं देखते और दुनिया भर के लोभ नहीं पालते, न ऊधो का लेना न माधो का देना। तुलसी के हिसाब से काहू की बेटी से बेटा नहीं ब्याहना, न किसी की जात बिगाड़नी है। उन्हीं की तरह से भगीरथी जलपान करते, राम का नाम स्मरण करते, काशीपुरी बनारसी में निच्छद्म का मजा लेने में मगन रहते हैं। अपने पूर्वजों की भांति छटंकी भी अन्याय की बातों पर बुरी तरह उखड़ जाते हैं। अगर किसी बात से उनका मन भिदक गया तो वो हत्थे से उखड़ जाते हैं। पिछले दिनों विश्वनाथ मंदिर में हुई चोरी पर वो ऐसे बिगड़े जैसे पुराने बनारसी राम हल्ला या हरछड़ी में अपने आपे से बाहर हो गए थे। फिर तो गली छोड़कर उन्होंने चौक थाने के सामने ही डेरा डाल दिया, दाढ़ी बढ़ा ली और विरोधी जुलूसों के स्थायी सदस्य हो गए। सोना मिलने के बाद शिवरात्रि के दिन उन्होंने व्रत रखा तथा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पूरे दिन ज्ञानवापी की क्यू में खड़े रहे। बीच बीच में थकने पर हर हर महादेव की जयकार ललकारा करते। दर्शनार्थियों की लाइन में लगे लोगों का दुख सुख सुनते समझते वो इंच इंच आगे बढ़ते रहे, पर इस चाल से उन्हें कोई शिकायत नहीं थी। देवता के दरबार में हड़बड़ी कैसी, उन्हें किसी से मतलब भले ही न हो, पर वाराणसी के चलते फिरते ज्ञानकोश वो जरूर हैं। कहाँ क्या मिलता है, कहाँ क्या नहीं मिलता, कौन सामान कहाँ सस्ता मिलता है, कहाँ दिन दहाड़े लूट होती है, कहाँ दलाल मिलते हैं, कहाँ ठग लगते हैं, ये कोई उनसे पूछे पूरी सूची हाजिर कर देंगे। कौन डॉक्टर दयालु है और किस वैद्य के हाथ में जस है ये भी वो निधड़क बता देंगे। किस घाट पर कौन पंडा ठीक है और कहाँ तिलक चंदन लगवाया जाए ये भी वो जानते हैं। गांधी जी कब कब बनारस आए और जवाहरलाल जी ने कब क्या कहा इसकी पूरी सूचना उनसे ले लीजिए। राजनीति से वो दूर रहते हैं लेकिन अपनी राय वो रखते हैं। वो अंधे नागरिक नहीं हैं, आंखें खुली रखते हैं और फैसले खूब गुणा भाग करके लेते हैं। उन्होंने वाराणसी से बाहर कम ही दुनिया देखी है, पर देश पर वो जान देते हैं। झगड़ा चाहे जितना करो पर बंटवारा नहीं होना चाहिए। उनके विचार से देश एक बड़ा परिवार ही तो है।
1: भैया, जहां चार ठे गगरा रहियन ढन मनाई है जरूर, त का क्यों पनघट छोड़ दी? अरे जे छोड़ी ते खलिये रह जाई, क्यों दुई कौड़ी कभी ना पूछी? हाँ भैया,
0: कथा वार्ता सुनने में छटंकी को बड़ी रुचि है। जो सुनते हैं अपनी तरह से समझते भी हैं। कजरी दंगलों में रात रात भर रत जगा करते हैं और हफ्तों उसी रस में डूबे रहते हैं। 7 वार और 9 त्योहार वाले इस शहर में वो तन से नहीं मन से जीते हैं। मन से जीने का इंजाम काशी जी में खूब है, इसलिए वो थोड़ा खाकर काशी में रहते हैं। इतना सब होते हुए भी

देह दरे का दंड तो हर आदमी को भोगना पड़ता है, सो वो भी दंड से बाहर कहाँ। उनकी स्वनिर्मित सुरक्षा की खोल कभी कभी दरकती है, जिंदगी की कठोर सच्चाइयां उन्हें कभी कभी कस कर झकझोरती भी हैं, पर इस सब पर उनकी प्रतिक्रिया खालिस या उनके शब्दों में निखालिस उनकी ही होती है। वाराणसी के धार्मिक राजनीतिक नेता क्या कहते रहते हैं ये तो वो ही जाने, छटंकी की राय हमेशा छटंकी की राय होती है। उनके हल्के शरीर पर मत जाइए, उनकी राय वजनदार होती है। फिर आपको उनके वजन से क्या लेना देना, आप क्या वेटलिफ्टर हैं? आप बात का वजन देखिए और उठा सकें तो छटंकी के नाद उठाइए, लीजिए हारे हैं।

0: आप सुन रहे थे झलकी छटंकी गुरु। लेखक थे ठाकुर प्रसाद सिंह, प्रस्तुति विश्वनाथ पांडे की थी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।
5: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
6: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
5: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
6: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
5: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
6: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
7: मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी।
8: हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में।
9: रोमांस तो हमारे जमाने में होता था।
8: पेमेंट भी उसी जमाने का है।
10: अरे भैया, डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में।
8: इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने? ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। RBI कहता है
11: डिजिटल पेमेंट अपनाओ
12: और उनको भी सिखाओ।
13: मीडियम वेव 241.56 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR DTH DRM 1233 किलोहर्ट्स। वेव्स OTT पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को। प्रस्तुत है आपके व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम जो कि लोकगीतों का होगा, लोक रंग। और आज कार्यक्रम लेकर हाजिर आपका रेडियो दोस्त अनुपम, आप सभी को हमारा नमस्कार। इस कार्यक्रम में लोकगीतों को आप सुनना चाहेंगे, उसके

हमारा नंबर नोट कीजिए, हमारा नंबर है 7905519981, यानी कि 7905519981। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भेजेंगे और जो श्रोता एक बार संदेश भेज दें अगला संदेश अगले कार्यक्रम में। तो हमें उम्मीद है कि आप सहयोग जरूर करेंगे। कार्यक्रम में पहला गीत हम आपको सुनवाएंगे गीतांजलि मौर्य के स्वर में। और संदेश आने शुरू हो गए अनारकली बाजार जगरामा पंजाब से। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गायवे मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी, जयपाल यादव। और ये संदेश भेजा है गांव छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा ने। गांव खारिया ढाणी जिला सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक योगेश, पूजा आरजू, नव्य बिजारनिया। जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल। गमरिया जमशेदपुर से बिपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल, आर्य कुमार जायसवाल। जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल, अभिनव जायसवाल। रिंगनी छत्तीसगढ़ से संदेश भेजा है दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। सोन वर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से भाई अनीस राजभर, मनीष राजभर, आशीष राजभर, आकर्ष राजभर। दिलदार नगर गांव पश्चिम मोहल्ला जिला गाजीपुर से जनार्दन पांडे, लक्ष्मीकांत पांडे, श्याम नारायण सिंह यादव, दीनानाथ सिंह यादव और कयूम शाह का भी संदेश में प्राप्त हुआ। रामशंकर चौधरी ने संदेश भेजा है मौनी बाबा धाम चोचकपुर बाजार जिला गाजीपुर से। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर। सावतपुर छत्तीसगढ़ से ऋषि सेन, रितेश सेन, हर्ष कुमार सेन। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंद्र भूषण, संस्कृत और पौरुष। आदर्श नगर मलोड पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, सायना शर्मा, निवान शर्मा। ग्राम पंचायत बटेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, उमेश धनेश्वरी वर्मा। गांव चोहलदा बागपत से संजय टिंगिया, नमन डिंगिया, कमल सहनी। गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, बबरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू जायसवाल, देवंती जायसवाल, चकिया बाजार चंदौली से सुंदर जायसवाल, सुमन जायसवाल। संदेश बहुत तेजी से आ रहे हैं। बाबा कुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष चौहान। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक। पटेल नगर मुगल सराय से शशि सिंह, आस्था सिंह और आकाश सिंह। ग्राम बहुरा पोस्ट दिलदार नगर जिला गाजीपुर से अकलू राम, केदार राम और दीनानाथ सिंह। मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी, नंदनी कुमारी। वार्ड नंबर एक पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगणकर, दिशांत कुमार सिंगणकर और अर्पिता जी। लोहारू हरियाणा से बिल्लू सिंह, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार, बरखा, योगेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार और इनके परिवार के सभी सदस्य। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राहे, महराज जहां ने आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से संदेश में भेजा है मुबारकपुर ऊंची तक या आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन, फातमा सोगरा, वकार हैदर, कनी सकीना और हसीना दिलशाद। गांव फरान से जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और सौरभ डूडी। गाजीपुर गांव नारी पचदेवरा से अजय सिन्हा, कैलाश सिन्हा, भोले सिन्हा, सचिन और उनके मम्मी पापा। नया पर भिरई से बसंत कुमार ठाकुर, सरोज ठाकुर। जौनपुर से ऋषु मौर्या का भी संदेश हमें मिला है। नवागढ़ कटे जिला बेमितरा छत्तीसगढ़ से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, मयंक, जीत, पुष्पांजलि वर्मा। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। कुटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कला जिला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय। सोनबरसा खानपुर चुनार मिर्जापुर से आशु राजभर, अक्षय राजभर। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक, समस्त डागला परिवार। अपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी,
फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अब्बान अब्बासी और अब्बासी परिवार के बाकी अभी सदस्य जो बचे हैं वो भी शामिल।

रहे हैं इस कार्यक्रम में इस गीत के माध्यम से। बोरसरा नैना छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, उशान चीपा, पूजा परिहार। मिर्जापुर कुरुक्षेत्र से यशपाल धीमान, श्रीमती कृष्णा धीमान, राहुल धीमान, शुभम धीमान, आंचल कुंज पर प्रवीण धीमान, चिराग रजत धीमान, राजेश धीमान, और इन्होंने गुड आफ्टरनून लिखा है, तो आपको भी बहुत गुड आफ्टरनून भाई। अमितेश कुमार तिवारी ने करनई बलिया से संदेश भेजा है। भास्कर दुबे जीप स्टन चौचकपुर गाजीपुर से संदेश रिपीट होने शुरू हो गया, ऐसा न करें। आशीष कुमार ने महारेव जौनपुर से संदेश भेजा है। तुलसी मस्किन, बीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु और रिधान खुराना। ये संदेश भेजा है रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राय, शमशुल कुमार राही, बेगम रुखसार, अकीबा साइन और तुबा आफरीन ने। नया पारा भिरई जिला बालोद छत्तीसगढ़ से बसंत कुमार ठाकुर, सरज ठाकुर, पप्पू ठाकुर। दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा। शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष रजा, चैतन्य मस्किन, लगता है संदेश रिपीट हुआ। और ये संदेश हमें भेजा है, संदेश नहीं, इसमें कुछ इन्होंने लिखा है तो अभी बाद में इसको पढ़ेंगे। अभी सुनिए अपनी पसंद पर गीतांजलि मौर्या के स्वर में ये किसानी गीत, इसके बाद आप सुनेंगे मन्ना लाल यादव और साथी के स्वर में गीत।

इसी गीत के लिए संदेश भेजा है डांडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर।

जायसवाल रामनगर कदमा जमशेदपुर से, मुराहो जायसवाल देवंती जायसवाल चकिया बाजार चंदौली से सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल, सोनू बिंद जौनपुर से और ये संदेश भेजा है, सोनवर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से, सोनाली राय अनु राय साइना राय, धनौरी तेली वाले से निसार सलमानी नौशाद सलमानी बेबी आलिया आयान बाबू, हरिश्चंद्र उपाध्याय केकरिया लोहता वाराणसी से इन्होंने संदेश ककरिया लोहता वाराणसी से संदेश इन्होंने भेजा है, राधेश्याम यादव नागालीपुर गाजीपुर से इन्होंने संदेश भेजा है, ग्राम पीपल रोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा पूनम वर्मा ज्योति और शिवांश वर्मा, शिवराम प्रजापति शांतनु प्रजापति गायत्री प्रजापति रिया प्रजापति और समस्त प्रजापति परिवार गोसाईगंज सिकरारा बाजार जौनपुर से, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब और बिहारी बाबू, भीमपुर भदोई से महेंद्र कुमार सरिता सानवी आशीष पूजा सतीश नीतू प्रद्युम्न रत्तू नंदलाल और लालू, ग्राम बलुआ जिला गाजीपुर से अमृतेश कुमार पांडे अनिल कुमार पांडे सुनील कुमार पांडे, वामी खामगांव महाराष्ट्र से अनंता वाडे रामेश्वर वाडे शुभम साक्षी और खुशी, पन्नालाल यादव गुवाहाटी असम से इन्होंने संदेश भेजा, यहीं से हरेन पांड्या नरेन पांड्या और वीरेन पांड्या, मन्नालाल यादव और साथी का लोकगीत सुनना चाहे है राजू चौधरी ग्राम नगदरीपुर पोस्ट रेवतीपुर जिला गाजीपुर से, कांदी नांडेन महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़ दयानंद गायकवाड़ ओमकार गायकवाड़ साई गायकवाड़, मुबारकपुर पुरानी बस्ती से शाहिद जमाल अनवर जमाल दानिश जमाल आसिफ जमाल और सहजीब अनवर, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राजपाल गजभिये राधिका गजभिये बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, आप सभी सुनिए अपनी पसंद पर मन्ना लाल यादव और सातिक स्वर में ये दादरा, इसके बाद आप सुनेंगे डॉक्टर माधवी सिंह का गायन लोकगीत।

अब आप सुनेंगे दादरा कलाकार मुन्ना लाल यादव और उनके साथी, और सुनने के लिए मैं संदेश भेजा आप सभी श्रोताओं ने। गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, बबरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज

0: कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
1: की गिनती देश की शान जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
4: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
5: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
4: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
5: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
4: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
6: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: अंतराल के बाद आप सभी का फिर स्वागत है कार्यक्रम लोक रंग में। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से अपने रेडियो दोस्त अनुपम के साथ। कार्यक्रम में अगला संदेश भेजा है लालगंज रायबरेली से के साहू, अमिता साहू, स्वस्तिका, ऋषु, इला और विनस ने चितबड़ा गांव। बलिया से जीसी गुप्ता, आराधना गुप्ता, नेहा, निधि, आयुषी और अनुष्का। ओबरा सोनभद्र से ये संदेश भेजा है शुभम और आयुषी ने। ये संदेश अगला हमें भेजा है कनॉट प्लेस नई दिल्ली से डॉक्टर अर्चना और पुरुषोत्तम ने। उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शिवन्या गोस्वामी। दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा। कटरा मुबारकपुर से जावेद अख्तर अंसारी, निकाहत परवीन, नुसरत परवीन, सलीम जावेद, शमीम अख्तर अंसारी, शाहिद हसन आजमी। काली माता मंदिर दिलदारनगर गांव जिला गाजीपुर से श्री किशुन सिंह कुशवाहा, हृदय नारायण गुप्ता और छविनाथ शर्मा। रविंद्रनाथ सिंह, रमन कुमार, जयंत कुमार, देवरिया, नुआव, रामगढ़, कैमूर, बिहार से। पटेल नगर मुगलसराय से आप हैं सुनील कुमार सिंह। विशाल मिश्रा बंधुआ बाजार माधोपुर इमिलिया जौनपुर से। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह, पद्मा टागिच नेपानगर मध्य प्रदेश से। आप सभी सुनिए अपनी पसंद पर यात्रा गीत, कलाकार डॉक्टर माधवी सिंह। कार्यक्रम के अंत में आप सुनेंगे हनुमत पाल व साथी का गाया लोकगीत।

कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं हनुमत पाल और साथी के स्वर में गंगा गीत और सुनने के ख्वाहिशमंद आप सभी। गोपालापुर, जौनपुर, रमईपुर से अवधेश तिवारी, प्रियंका तिवारी, शिवांगी तिवारी ये संदेश भेजा है। कीर्ति नगर नई दिल्ली से मानसी, गौरव अरोड़ा और इनके परिवार के सभी सदस्य। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। डिड वाजता ने वाराणसी से संदेश भेजा है। कुर्मा, जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से दिलदार मेरी, ज्योति जानवी और दीक्षांत मेरी। पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अकरम अंसारी और अल्ताफ अंसारी। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और वसीम अंसारी। सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी, आफ्ताब अंसारी, महताब अंसारी, मिराज अंसारी, कल्लू और मल्लू अंसारी। तो कार्यक्रम के अंत में आप सभी सुनिए ये गंगा गीत स्वर हनुमत पाल और साथियों का। इसी गीत के लिए संदेश भेजा है विशाल मिश्रा ने बंधुआ बाजार माधोपुरी मिलिया जौनपुर से।

इसी ख्वाहिश के साथ की होगी फिर मुलाकात। लोकरंग कार्यक्रम समाप्त करने की अपने रेडियो दोस्त अनुपम को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR, DTH, DRM 1233 किलोहर्ट्ज़ और वेव्स OTT पर। दिन के 2 बजने को हैं, कुछ क्षणों में आप सुनेंगे समाचार जिसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। श्रोताओं कीजिए कुछ पलों का इंतजार और सुनिए समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब, चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार

0: छठी सातवीं शताब्दी के पांडुवंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की तीन पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: किन्यान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ तीन दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस छठी सातवीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राज राजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
1: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, ये तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
0: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहां से नेशनल का सेलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
3: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
2: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10

0: वन के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूं मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूं।
1: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
2: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
2: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
2: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
3: नेवी, एयरफोर्स,
4: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
3: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
1: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही हुर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में

0: 100 पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोएबुल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्ते।
1: मीडियम वेव 241.56 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम। आज का विषय है न्यूरो और स्पाइन के कारण, लक्षण और इलाज। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अवनीश राय, आपसे बातचीत किया है शिखा श्रीवास्तव ने।

0: नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आपको तो पता होगा कि स्वस्थ शरीर की ताकत हमारी मजबूत नसों और रीढ़ की हड्डियों में छिपी होती है, लेकिन जब यही नसें दर्द देने लगे, रीढ़ कमजोर होने लगे या दिमाग से जुड़े संकेत डगमगाने लगे तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। और इसी मुश्किल को आसान करने आज मैं आपके रेडियो सखी शिखा श्रीवास्तव आपके अपने स्वास्थ्य फोनिंग कार्यक्रम आरोग्यम में इस खास विषय पर जानकारी साझा करने आई हूँ। तो आइए समझते हैं न्यूरो और स्पाइन के रोगों से जुड़ी पूरी कहानी जाने माने न्यूरो और स्पाइन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अवनीश राय जी के साथ। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद शिखा जी।
0: जब तक श्रोताओं के फोन आते हैं तब तक एक प्रश्न का आप जवाब दें सर, कि आजकल ये देखा जाता है कि बहुत कम उम्र के लोगों में नसों की समस्या या स्पाइन की समस्या देखने को मिलती है, तो ऐसा क्यों है?
1: बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है शिखा जी। बिल्कुल सही चीज आपने पूछा है। स्पाइन की जो प्रॉब्लम है ये अभी कम उम्र के लोगों में काफी ज्यादा हो रही है। रीजन क्या

0: है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा घट चुकी है, लोग बाहर खेलते कम है और सिटिंग जॉब का काम ज़्यादा हो गया है। तो जितना ज़्यादा सिटिंग जॉब, बाहर की एक्टिविटीज़ कम, मसल एक्टिविटीज़ कम, फिजिकल मूवमेंट कम होना, ये सारी चीज़ें बैक पेन को बढ़ाता है।
1: जी
0: इसके अलावा जो मस्तिष्क को लेकर के आपने बताया, तो अब क्योंकि ज़्यादातर काम आपका इलेक्ट्रॉनिक या फ़ोन से ही रिलेटेड है और लोगों का आपस में सोशल इंटरेक्शन भी कम हो गया है, तो इससे जो है मेंटल डिजीज़ की भी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। सोसाइटी भी हमारी ब्रेक कर रही है, पुराना जो सामाजिक संरचना थी वो भी अब जो है ब्रेक हो रही है, और एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम जो था पहले का समाज, वो अब धीमे धीमे बदल रहा है।
1: जी
0: तो ये सब बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण से मस्तिष्क के रोग और स्पाइन के रोगों की संख्या ज़्यादा हो रही है और इनफैक्ट कम एज के लोगों में हो रही है।
1: जी सर, ऐसा होता है कि कभी कभी हमको रीढ़ की हड्डी से संबंधित कुछ समस्याएं होती हैं या न्यूरो से संबंधित समस्याएं होती हैं, लेकिन अगर चक्कर आ रहा हो, सिर दर्द हो रहा हो, तो उसको सर्वाइकल मान के लोग बहुत दवाइयां करते रहते हैं। तो कैसे हम पहचाने कि ये सर्वाइकल का दर्द है या फिर न्यूरो की प्रॉब्लम हो रही है?
0: जी, ये अच्छा आपका प्रश्न है, क्योंकि कई बार हमारे पास चक्कर के रोगी आते हैं
1: जी
0: और वो कहते हैं कि सर हमारे सर्वाइकल में दिक्कत है। तो आज आप लोग के माध्यम से लोगों को ये भी हमें बताना है कि ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि जो चक्कर वाला चीज़ है जिसे हम लोग वर्टाइगो कहते हैं, वो गर्दन से होता है। वर्टाइगो का सबसे बड़ा जो होता है कारण होता है वो होता है बीपीपीवी, जिसे हमें कहते हैं टेक्निकल भाषा में बेनाइन पेरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो।
1: जी
0: ये एक्चुअली कान के इंटरनल ईयर के अंदर में कुछ कभी कभी कुछ क्रिस्टल जमा हो जाते हैं जिसके कारण से चक्कर आता है। तो हम लोगों के पास और भी टेस्ट भी होते हैं जिससे हम लोग इस चक्कर का जो है रीज़न पता कर लेते हैं। कभी कभी चक्कर जो होता है वो बड़ा गंभीर चीज़ होता है और वो कई बार स्ट्रोक के भी रोगियों में होता है। किसी को अगर ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, वो भी पेशेंट्स को कभी कभी चक्कर की समस्या होती है। तो अगर किसी को चक्कर आ रहा है और लगातार आ रहा है, उल्टियाँ हो रही है, तो उस स्थिति में आपको एक किसी अच्छे डॉक्टर को ज़रूर जाना चाहिए, और कम से कम अगर सीरियस लग रहा है तो स्ट्रोक के लिए भी आपको एक बार जांच अपनी ज़रूर होनी चाहिए।
1: सर, माइग्रेन में भी तो चक्कर आता है या आधे सिर में दर्द होता है, तो क्या वो भी कोई न्यूरो समस्या हो रही है?
0: जी, माइग्रेन में भी एक वैरायटी होती है जिसे हमें कहते हैं वेस्टिबुलर माइग्रेन।
1: जी
0: तो वो वाले रोगी जो होते हैं माइग्रेन के, उनको सर सर में दर्द के साथ जो है चक्कर आता है। और अभी क्योंकि गर्मी का सीज़न बहुत ज़्यादा चल रहा है, 40 डिग्री के ऊपर चल रहा है, तो इस सीज़न में हम लोग स्पेशली माइग्रेन के बहुत सारे पेशेंट देख रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है तो माइग्रेन के रोगियों को अक्सर गर्मी, पानी की कमी, डिहाइड्रेशन, नींद में कमी, तो ये सब स्थिति से उन लोगों को स्टार्ट हो जाता है। और उनमें से कुछ पेशेंट्स होते हैं वेस्टिबुलर माइग्रेन के जिन्हें दर्द के साथ जो है वर्टाइगो वाले भी सिम्टम्स होते हैं, चक्कर के सिम्टम्स होते हैं।
1: जी बहुत अच्छी जानकारियाँ आप दे रहे हैं हमारे श्रोताओं को। सर, इसी जानकारी के क्रम में ये जानना चाहेंगे कि कभी कभी होता क्या है कि न्यूरो से संबंधित बीमारियाँ हैं या स्पाइन से संबंधित समस्याएं हैं, वो बहुत आगे तक बढ़ जाती हैं और मरीज उसको पहचान नहीं पाता है और एकदम लास्ट मोमेंट पे डॉक्टर के पास पहुँचता है, तो वो कौन से ऐसे लक्षण हैं जिससे उसको ये संकेत मिल जाए, ये पता चल जाए कि हमको ये समस्या हो रही है?
0: जी, सबसे जो घातक बीमारी है स्ट्रोक, जिस जो हम लोग कहते हैं ब्रेन स्ट्रोक, वो एक इमरजेंसी स्थिति होती है, और उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पेशेंट एक फिक्स टाइम में डॉक्टर के पास आ जाए।
1: जी
0: तो दो टाइप के स्ट्रोक होते हैं नॉर्मली, एक तो होता है ब्रेन हैमरेज होता है, और एक होता है कि ब्रेन में किसी हिस्से में खून नहीं जा रहा है। तो इनमें हम लोग लोगों को जानकारी के लिए एक हम लोग उनको कोड बताते हैं कि आप याद रखिए बी फास्ट। बी फास्ट का मतलब होता है कि BEFAST, मतलब तुरंत जाइए बी फास्ट। तो बी का मतलब होता है बैलेंस, तो बी बैलेंस में अगर किसी को दिक्कत हो रही है, किसी की ईज का मतलब होता है आई, यानी आँख से उसको धुंधलापन या उसको टेढ़ापन आँख में अगर हो गया। फास्ट में एफ का होता है मतलब फेस, यानी चेहरा एक साइड से ढीला हो गया, झूल गया या डिविएट कर गया।
1: जी
0: ए से होता है आर्म, यानी हाथ की ताकत में कमी। एस का मतलब होता है स्पीच। तो ये एक कोड हम लोग बताते हैं कि अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिख रहे हैं, तो आप तुरंत किसी न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन के पास तुरंत जाइए।

0: और अपना इवैल्यूएशन कराइए। कारण ये है कि अब कुछ ऐसी दवाएं आ गई हैं कि अगर स्ट्रोक के रोगी 4.5 से 6 घंटे के अंदर भी अगर पहुंच जाते हैं तो हम लोग उनको थ्रोम्बोलाइज कर देते हैं, जिसमें उनको जीवन भर की वीकनेस, कमज़ोरी, जो हाथ पैर की ताकत की जो है पैरालिसिस है, वो उनकी ठीक हो सकती है। पर इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि पेशेंट स्ट्रोक होने के 4.5 से 6 घंटे के अंदर में किसी भी कीमत पे अपना इंजेक्शन लगवा ले।
1: अगर किसी को लकवा मारता है तो तुरंत में क्या करना चाहिए?
0: देखिए, जब जैसे जैसे हमें स्ट्रोक के जो होते हैं पेशेंट होते हैं पैरालाइज जिसे हमें कहते हैं, तो इनका सबसे पहले तो इवैल्यूएशन होना चाहिए कि इसका जो है कारण क्या है। और कारण जैसे कि आपको अभी बताया कि या तो इश्मिक स्ट्रोक होता है, यानी ब्रेन के एक हिस्से में खून नहीं जा रहा है,
1: जी।
0: या उनको ब्रेन में हेमरेज होता है। तो अगर इश्मिक स्ट्रोक होता है तो आपको जैसे बताया कि अगर तुरंत इवेलुएट कर लिया जाए और पेशेंट टाइमली अगर हॉस्पिटल पहुंच जाए तो उस केस में उनको ना थ्रोम्बोलाइज किया जा सकता है, जिससे कि ये जीवन भर की लकवा वाली प्रॉब्लम उनकी नहीं होगी। और अगर ब्रेन में ब्लीडिंग हुई है, हाइपरटेंसिव ब्लीड है, या कोई ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण से नस फटी है, नस फटने के भी बहुत सारे कारण होते हैं, उन कारणों को फिर हम लोग इवेलुएट करते हैं और कई बार इन इन पेशेंट्स को दवाओं से और बहुत बार इन पेशेंट्स को ऑपरेशन करके ठीक किया जाता है। और लेकिन हाँ, दोनों ही पेशेंट्स में लंबे समय तक आपको ना फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन की आवश्यकता पड़ती है।
1: सर, ऐसा भी होता है कि किसी को हार्ट अटैक आया हो, उसके कारण उसको ब्रेन हैमरेज वाली समस्या हो जाए?
0: जी, जो भी हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स होते हैं, जो जिनमें भी वैस्कुलर प्रॉब्लम है, जैसे जिनके हार्ट में कोई वॉल्व लगा हुआ है, या हार्ट में स्टेनोसिस है, या एरिदमिया है, यानी हार्ट की उनकी गति ठीक नहीं चलती, या तेज़ चलती है, या चीज़ स्लो चलती है, ये सारे पेशेंट्स ज़्यादा रिस्क के होते हैं ब्रेन ब्रेन स्ट्रोक के।
1: जी
0: और अक्सर ये लोग के पेशेंट्स खून पतला करने वाली दवाओं पर रहते हैं, थिनर्स पर रहते हैं, तो इनके में एक और भी खतरा रहता है जो भी रहते हैं थिनर में, कि ब्रेन में उनके ब्लीडिंग हो सकती है। तो कई बार इसलिए हार्ट के डॉक्टर इन लोगों का INR चेक कराते रहते हैं, खून की क्या है थिनिंग, उसको देखने के
1: जी
0: लिए।
1: सर, एक फोन आ रहा है, श्रोता का फोन ले लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। हेलो, कौन बोल रहे हैं?
2: जौनपुर जिला से बोल रहे हैं, ओम प्रकाश दुबे।
1: अच्छा, ओम प्रकाश दुबे भैया, आरोग्य में आपने फोन किया है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब लाइन पे
0: जी
1: हैं।
0: जी बताएं।
2: एक बार लकवा मारा था तो न्यूरो अस्पताल में भर्ती हुए थे। हमारा इलाज हुआ, ठीक हो गया, लेकिन अभी भी जो है उलझन नहीं कर रहे।
0: उलझन का मतलब क्या हुआ, क्या क्या फील होता है?
2: उलझन का मतलब ये कि कभी कभी जो है घबराहट ऐसा होता है, ब्लड प्रेशर का हम मरीज भी हैं।
0: ये आपको जो है नींद वगैरह कैसी आ रही है?
2: नींद आती है, कम आती है रात में।
0: हाँ, तो एक बार
2: दिन में थोड़ा बहुत सो लेते हैं।
0: जी, तो हो सकता है ना कि थोड़ा सा एंग्जाइटी हो गई है। और
2: अच्छा,
0: ये ना बहुत बार स्ट्रोक के पेशेंट्स में रिकवरी के पीरियड में थोड़ा सा एंग्जाइटी या डिप्रेशन वाला चीज़ भी होता है। मुझे लगता है कि एक बार आपको दोबारा डॉक्टर साहब से एक बार जो है मिल लेना चाहिए और अपनी इस समस्या के बारे में बोलना चाहिए। इसमें एक दो ना मेडिकेशन वो नई अगर स्टार्ट कर देंगे तो उससे आपकी जो घबराहट वाली चीज़ है वो भी आपकी अच्छी हो जाएगी। और जहाँ तक स्ट्रोक वाला जो पार्ट है, आपको अभी भी एक साइड में वीकनेस लगती है, तो इस पोस्ट स्ट्रोक आपको ना फिजियोथेरेपी भी लगातार चाहिए। तो रोज थोड़ी सी एक्सरसाइज जरूर किया करिए, और जो भी ब्लड प्रेशर और शुगर अगर है तो उसका भी बोरा के ध्यान रखिए।
2: हमारी उम्र 80 साल है साहब।
0: जी, तब तो ठीक है, आप थोड़ा बहुत अपने आप से किया करिए व्यायाम, अपने से एक्सरसाइज किया करिए थोड़ा
1: तो
0: बहुत।
1: डॉक्टर साहब जैसा बता रहे हैं कि आप किसी विशेषज्ञ से मिल करके एक बार कंफर्म कर लें कि आपको क्या करना है, ठीक है भैया? सर, एक फोन आ रहा है। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
3: सभाकांत
1: सभाकांत जी, आरोग्य में आपने फोन किया है, बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में जाने माने स्पाइन और न्यूरो रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अवनीश राय जी आए हैं, तो आप अपनी समस्या डॉक्टर साहब से पूछ लें।
3: सिद्धार्थ सर नमस्कार।
0: जी, नमस्ते।
3: मस्तिष्क जो होता है उसमें दर्द होता है, तो हमें क्या करना चाहिए?
1: मस्तिष्क में दर्द होता है? हाँ बताएं सर।
0: तो मस्तिष्क में दर्द के तो मतलब बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन सबसे जो कॉमन हम लोग देखते हैं कारण वो होता है माइग्रेन।
3: जी,
0: और
3: रात के समय होता है सर, सुबह के समय नहीं होता है।
0: तो देखिए, बहुत सारे रीजन रहते हैं। अगर जैसे गर्मी में या धूप में या इस समय ज्यादा अगर श्रम भी कर रहे हैं, या जो है मानसिक स्ट्रेस या तनाव है, तो ऐसी भी स्थिति में बहुत सारे पेशेंट्स को

0: TTH होता है, जिसे हम कहते हैं टेंशन टाइप हेडेक। इसमें सर के बाहरी हिस्से में आपको ना भारीपन रहता है, और थोड़ा सा ना ये इसमें बाकी चीज़ें भी जानना होता है कि कब हो रहा है, कितनी ना देर तक रहता है, उसके साथ उल्टी होती है कि नहीं होती है, नींद आपकी कैसी है, खान पान कैसा है। तो ये जो आप मुझे बता रहे हैं कि सर के ना बाहरी हिस्से में थोड़ा सा भारीपन रहता है, ये टेंशन टाइप हेडेक है। और हमको लगता है कि इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा पीजिए, नींद अच्छी लीजिए, धूप से थोड़ा बचिए, गर्मी से बचिए, और अगर लगातार अगर बना रहता है तो एक बार किसी को, अच्छे डॉक्टर को जो है दिखा लीजिए, क्योंकि कई बार जो है
1: जी,
0: सिटी
1: इसमें दर्द है,
0: स्कैन
1: इसमें
0: में।
1: चाय का भी सब पीना, पीसने के नहीं पीना चाहिए, चाय पीने से थोड़ा ठीक देर के लिए राहत दे देता है, तो इसको चाय क्या कर बंद कर दें आप, चाय
0: नहीं
1: भी बंद
0: नहीं
1: कर दें।
0: चाय अगर पीने से आपको कोई अगर प्रॉब्लम हो रही है तो एकदम मत पीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है, श्योर है कि हम चाय पीते हैं, उससे हमको गैस बनती है, उसके बाद हमको सर में दर्द होता है, तो चाय एकदम अपनी वो कर दीजिए, घटा दीजिए। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम लगातार बनी रहती है तो एक बार आपको डॉक्टर को आकर के दिखाना पड़ेगा।
1: नशा कोई करता है ठीक है, नशे के ऐसे दारू पीता है, कोई अगर पान मसाला खाता है तो इससे भी प्रभावित हो सकता है या नहीं?
0: देखिए, अल्कोहल तो एनी हाउ अच्छा चीज़ नहीं है, मसाला भी अच्छा चीज़ नहीं है, दोनों दोनों की अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स। तो एक स्वस्थ जीवन के लिए तो इन दोनों चीज़ों से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए।
1: जी, बहुत धन्यवाद आपको, शिखा श्रीवास्तव जी आपको भी धन्यवाद।
2: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आरोग्य में फोन करने के लिए। सर, एनस दबने की समस्या या स्पॉन्डिलाइटिस का भी क्या न्यूरो से कुछ लेना देना है?
0: जी, जो नस आप दबने का बता रहे हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड में सर्वाइकल और लंबर एरिया में अक्सर हम लोग नस दबने की हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम, क्योंकि कई बार डिस्क हो जाती है, डिस्क निकल जाती है, या स्पाइन के अंदर कुछ अगर ट्यूमर होता है, या टीबी का पस, या ऐसी स्थिति में नस दबती है। तो इनमें कई बार अगर नस अगर ज़्यादा दबती है तो उस केस में फिर कई बार हम लोगों को शल्य क्रिया के थ्रू उस दबाव को जो है हटाना पड़ता है।
2: जी,
0: तो ये चीज़ जो है डिपेंड करती है कि एमआरआई की फाइंडिंग क्या है उसके ऊपर।
2: अच्छा सर, कभी कभी ये देखा जाता है कि ब्रेन ट्यूमर की जो समस्या होती है, शुरुआत में पता नहीं चलती है और वो जब बहुत आगे तक पहुंच जाती है स्थिति, तब पता चलता है कि ये दिमाग के 80% एरिया को कवर कर लिया है या 60% एरिया को कवर कर लिया है, और तब स्थिति बहुत खतरनाक हो जाती है। तो ऐसे में कैसे ये जाने कि हमको ब्रेन ट्यूमर की समस्या हो रही है, या हो जाती है तो उसका उपाय फिर क्या है?
0: जी देखिए, बिल्कुल सही चीज़ पूछा है आपने, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर अक्सर हम लोगों के पास उस स्टेज में आते हैं जब उनकी साइज़ काफ़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि शुरुआती स्टेज में ब्रेन जो है कंपनसेट कर रहा होता है।
2: जी
0: और अक्सर जो ट्यूमर्स होते हैं इनमें, इसके साथ जो है पेन नहीं जुड़ा होता है, तो अगर पेशेंट को पेन नहीं होता है तो वो अपने आप को डॉक्टर को दिखाता नहीं है।
2: जी
0: लेकिन अगर किसी को भी दौरे या झटके आ रहे हो, एक साइड में झटके आ रहे हो, या उसको सुबह उठने पे सर में भारीपन या वॉमिटिंग जैसा फील होता हो, या उसकी चाल, बैलेंस, आवाज़, या इन हिस्सों में कोई भी आ रहा हो फ़र्क, तो इसको तुरंत किसी विशेषज्ञ से मिल करके अपना सीटी स्कैन या एमआरआई करा लेना चाहिए। कारण ये है कि अगर हम ब्रेन ट्यूमर को अर्ली डिटेक्शन कर लेते हैं
2: जी
0: तो हमारे पास उसको मैनेज करने के लिए अच्छे साधन मौजूद होते हैं। ज़्यादा अगर बड़ी साइज़ हो जाती है तो मरीज की भी जान को इसके बाद थोड़ा सा खतरा ज्यादा हो जाता है।
2: मतलब हर स्थिति में उसका ऑपरेशन ही इलाज है या दवा से सही हो सकता है?
0: देखिए, छोटे अगर ट्यूमर्स होते हैं, जैसे
2: जी
0: कुछ कुछ ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, मेनिनजियोमास जैसे होता है, ये औरतों में ज्यादा होते हैं फीमेल्स में, तो कई बार हमारे पास कोई बूढ़ी अम्मा या ऐसी पेशेंट आती है जिनका हमने सीटी स्कैन कराया और उसमें एक छोटा सा ट्यूमर निकला, तो उस केस में हम इन लोगों को बोल देते हैं कि बस आप ऑब्जर्व करिए, कुछ आपको ध्यान, मतलब इसके लिए मत होइए परेशान, क्योंकि ऑलरेडी इनकी उम्र ज़्यादा है और ये छोटा सा ट्यूमर है, तो इससे कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ,
2: अच्छा
0: अगर उसकी साइज़ बड़ी है ट्यूमर की, और ब्रेन के इंपॉर्टेंट हिस्सों को अगर वो दबा रहा है, और या उसके चलते मरीज़ के हाथ पैर की ताकत में कमी आ रही है, तब हमें ऑपरेशन के विषय में सोचना पड़ता है।
2: जी, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां सर आप दे रहे हैं, और आपसे बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है, और श्रोता भी आपकी इन जानकारियों से लाभ उठाएंगे। एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि ये जो स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है, जो कि हर तीसरे व्यक्ति चौथे व्यक्ति को सुनने में आती है, जो ये क्रॉनिक स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है जिसे बम्बो स्पाइन कहते हैं, तो उसमें क्या ट्रीटमेंट संभव है, इलाज संभव है, या वो न्यूरो से संबंधित है या आर्थराइटिस से?
0: देखिए, ये जो अभी आपने पूछा ना, बैम्बू स्पाइन, या ये तो बैम्बू स्पाइन

0: माइंड हमारी लचीलापन उसके अंदर रहती है, और फ्लेक्सिबिलिटी के कारण से ही हम लोग झुक के इसके सामान उठा सकते हैं, बैठ सकते हैं, नीचे बेंड करना, ये चीज़ कर पाते हैं। तो आर्थराइटिस में क्या होता है कि शरीर के जोड़ों में सूजन होने लगती है, और सबसे ज़्यादा अफेक्ट ये अक्सर स्पाइन को करता है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बात करिए, चाहे रोमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करिए, तो इनमें स्पाइन का इन्वॉल्वमेंट बहुत हो जाता है, जिससे स्पाइन में दर्द रहता है। और सबसे ज़्यादा कॉमन रहता है कि सुबह पेशेंट अर्ली मॉर्निंग कंप्लेन करता है कि सुबह सो के उठता हूँ तो पीठ में जकड़न रहती है, ये करती है। ये इनमें कई बार मल्टीपल डॉक्टर्स का रोल रहता है, रूमेटोलॉजिस्ट का रोल रहता है, जो जॉइंट के एक्सपर्ट होते हैं उनका रोल रहता है, कि उनमें कुछ स्पेशल दवाएं भी आ गई है, बायोलॉजिकल मॉडिफायर्स वगैरह, जिनको वो लोग अपना चलाते हैं, जिससे ये बीमारी आगे ना बढ़े।
1: जी
0: लेकिन इसमें भी अर्ली डिटेक्शन का रोल ज़्यादा है, क्योंकि एक बार जॉइंट में या स्पाइन में डैमेज हो गया तो वो डैमेज वापस नहीं हो सकता।
1: जी
0: तो वो डैमेज होने के पहले ही आप उसको डिटेक्ट कर लीजिए और आप प्रॉपर दवाओं को स्टार्ट कर दीजिए। दवाओं के साथ इसमें फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज और योगा का भी बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि ये पेशेंट्स को हमेशा हम लोग बोलते हैं कि आप अपना वजन कम करके रखिए, लचीलापन बढ़ा करके रखिए, एक्सरसाइज करते रहिए और डॉक्टर से भी अपना बात करते रहिए। कभी कभी ये इतना ज़्यादा सीवियर हो जाता है, उस केस में कई बार सर्जरी की भी ज़रूरत हो जाती है, या अगर बैम्बू स्पाइन हो गया और कोई अगर फ्रैक्चर हो गया स्पाइन में, तो उसमें कई बार आपको ऑपरेट करने की भी ज़रूरत हो जाती है। तो
1: जी
0: ये बीमारी की स्टेज और उसकी जो है कैटेगरी के ऊपर डिपेंडेंट होता है।
1: तो सर इसका न्यूरो से लेना देना है?
0: बिल्कुल, अगर ये फ्रैक्चर हो के स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है प्रेस कर रहा है,
1: जी
0: और जैसे हम लोग गर्दन में भी कई बार एक C1 C2 हड्डी होती है, वहाँ पर भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाती है और वो स्पाइनल कॉर्ड को जो है दबाने लगती है, वैसी स्थिति में हम लोगों का रोल आ जाता है, जिसमें हम लोग ऑपरेट भी करते हैं और सर्जरी भी हम लोग वो
1: जी
0: करते हैं, प्लान करते हैं।
1: जी सर, महिलाओं में कमर दर्द की जो समस्या होती है वो बहुत देखने को मिलती है और वो उसको नज़रअंदाज करती हैं, लेकिन कभी-कभी ये स्थिति देखने में मिलती है कि वो कमर दर्द आपके न्यूरो रोग से संबंधित होता है, तो क्या ये सही है?
0: देखिए, बैक पेन तो बहुत कॉमन है हमारी इंडियन उसमें पॉपुलेशन में, बहुत बड़ा
1: सर
0: रीज़न है।
1: रोकना होगा आपको, एक फ़ोन आ रहा है। हेलो,
2: हाँ नमस्ते मैम,
1: नमस्ते, कौन बोल रही हैं
2: हम
1: आप?
2: समीक्षा सारनाथ से।
1: अच्छा, सारनाथ से समीक्षा जी, बताएं, आज जो है डॉक्टर अवनीश राय जी, जाने माने न्यूरो और स्पाइन रोग विशेषज्ञ हमारे बीच में हैं, आप क्या जानना चाहती हैं?
2: मैम मैं जानना चाहती हूँ डॉक्टर साहब से, एक्चुअली कुछ दिन से मेरे लेफ्ट हैंड में या राइट हैंड में जब मैं कुछ पकड़ती हूँ तो थोड़ा सा झंझनाहट होती है, मतलब कांपने जैसा होता है,
1: डॉक्टर साहब
2: तो ये
1: बताएं।
2: किस वजह से हो सकता है?
0: नहीं, समीक्षा जी, अब ये बताइए कि आपको दर्द होता है कि आपको हाथ में जो है कंपन हो रहा है, ट्रेमर हो रहा है?
2: बस फेमस है सर, एक्चुअली दर्द तो नहीं है लेकिन 2 दिन पहले से जैसे उसमें पेन भी है एक लेफ्ट हैंड में, शोल्डर में, लेकिन बहुत दिन से मैं देख रही हूँ कि अगर हम स्पून पकड़ते हैं या कुछ पकड़ती हूँ तो वो जैसे मुझे तो नोटिस नहीं हुआ लेकिन सामने वाला देख के बोल रहा है कि ये काँप रहा है।
0: एक चीज़ बताइए कि ये जो कंपन आप बता रही हैं, ट्रेमर्स बता रही हैं, ये क्या आपने किया है नोटिस कि कभी तनाव की स्थिति में या स्ट्रेस में ये कंपन आपका ना ज़्यादा हो जाता है?
2: नहीं सर, ये ऐसा तो नहीं है, ये हम नॉर्मल अपने डेली लाइफ में ही देखते हैं कि अगर हम कुछ होल्ड कर रहे हैं या पकड़ रहे हैं अच्छा, जब उसके कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन
0: ओके ओके
2: यूजुअली ये होता है कि जब हम उठाएंगे कुछ भी चीज स्कूल से चाहे गोल से तो वो जरूर कांपने जैसा हो जाता है, हिलता हुआ फिर मुझे भी दिखता है।
0: जी, तो मतलब इसका मतलब है कि जब आप आराम से रहती तो आपको कंपन नहीं होता, जब कोई फिंगर जब आपके रेस्ट पे रहती तो कंपन नहीं होता, जब कुछ काम करती हैं, वर्क करती हैं, तब आपको कंपन होता है, यही होता है ना? तो ये जो है, एक बार वैसे तो आपको ना दिखा लेना चाहिए, क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी कई बार इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये एक ना बिनाइन एसेंशियल ट्रेमर करके होता है, जिसमें कि आप कोई काम अगर करते हैं उस दौरान हाथ के अंदर में वो होता है। आपकी एज कितनी है लगभग?
2: 40
0: 40 है। आपकी कोई मतलब फैमिली हिस्ट्री रही है आपके परिवार में, किसी को कंपन या हाथ में इस एज में आपके फादर या मदर को होता था?
2: फादर सर, हाँ फादर को भी पार्किंसंस वाला इशू हुआ था।
0: तो ये जो है पार्किंसंस में जनरली रेस्ट पे ट्रेमर होता है, तो मुझे तो जो आप अभी हिस्ट्री बता रही हैं वो

0: बिनाइन इसेंशियल ट्रेमर की है, लेकिन एक बार फिर भी क्लिनिकल एग्जामिनेशन या एक बार ना दिखा लेना किसी न्यूरो के डॉक्टर को इम्पोर्ट, लेकिन एक बार देखना जरूरी है। इसमें कुछ कुछ मेडिकेशंस होती है, प्रोप्रानोल वगैरह ये सब चीज़ें, लेकिन कोई भी चीज़ है ना, मतलब बिना इवेलुएट करके ऐसे बोलना जो है ठीक नहीं रहता। और हमको लगता है कि अपने अगल बगल या BHU में या कहीं पर भी एक बार न्यूरो विभाग में जा करके जरूर जो है मिल लीजिए, क्योंकि एक दो अगर मेडिकेशंस वो लोग स्टार्ट करेंगे उससे अगर आराम हो जाएगा तो जो मैं बात बोल रहा हूँ वो चीज़ श्योर हो जाएगी, आपकी कंफर्म हो जाएगी।
1: जी,
0: जी जी नमस्ते।
1: ओके, धन्यवाद समीक्षा जी। हाँ सर, हम लोग कमर दर्द पर बात कर रहे थे कि कमर दर्द का क्या न्यूरो से कुछ संबंध हो सकता है?
0: देखिए, बैक पेन बहुत काफ़ी लोगों को है और काफ़ी ज़्यादा हम लोग के पास इसके ना पेशेंट्स होते हैं, और स्पेशली फीमेल्स में हम लोगों ने पोस्ट डिलीवरी या पोस्ट जो है प्रेगनेंसी बैक पेन बहुत होता है। कारण उसका ये रहता है कि पोस्ट जो है प्रेगनेंसी एब्डोमेन की मसल्स या पेट की मसल्स भी थोड़ी सी ढीली हो जाती है, और अक्सर हम लोग के पास पेशेंट्स आते हैं कि हमको पहले तो ठीक थे जब हमारा वज़न बढ़ा और डिलीवरी के बाद हमारा बैक पेन हो गया, स्टार्ट हो गया, तो ऐसे हम लोग पेशेंट्स को अक्सर बोलते हैं कि आप अपना वेट अपना लूज़ करिए, अपनी एब्डोमिनल कोर की अपनी मसल्स को वो ठीक करिए, इम्प्रूव करिए, विटामिन डी का अपना लेवल ठीक करिए, विटामिन B12 का अपना लेवल ठीक करिए। अगर इन सब के बावजूद भी पेशेंट को बैक पेन लगातार बना रहता है तब हम लोग MRI के लिए उनको एडवाइस करते हैं। अगर बैक पेन पीरियड के साथ जुड़ा हुआ है या अगर माहवारी के साथ जुड़ा हुआ है या कोई इसके साथ जुड़ा हुआ है, यूरिन के साथ जुड़ा हुआ है, तो अक्सर हम लोग को अल्ट्रासाउंड की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कई बार UTI में भी लोगों को बैक पेन होता है
1: जी,
0: और पीरियड के टाइम में भी लोगों को बैक पेन होता है, तो इस स्थिति में फिर उन लोगों को गायनेकोलॉजिस्ट से भी एक अपनी एडवाइस लेनी पड़ती है।
1: सर, साइटिका और स्लीप डिस्क के बारे में भी हमारे श्रोताओं को कुछ जानकारी दें।
0: देखिए, स्लिप डिस्क तो जैसे दो वर्टीब्राज होती हैं, रीढ़ की हड्डियां हमारी होती हैं, वो उनके बीच में एक जेली की तरह समान होता है जैसे हमें डिस्क कहते हैं,
1: जी
0: तो जैसे साइकिल में शॉकर है, बाइक में शॉकर है जो जर्क को एब्जॉर्व करता है, वैसे ही डिस्क का रोल होता है। जैसे हम लोग जंप कर रहे हैं कूद रहे हैं तो डिस्क दबती है फूलती है, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि किसी के डिस्क में वीकनेस आ जाती है, उसकी बाहरी जो झिल्ली होती है एनुलस जिसे हमें कहते हैं उसके अंदर एक छोटा सा ब्रेक हो जाता है और वो डिस्क का मटेरियल है वो बाहर निकल के नर्व को दबाने लगता है, ये फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली चीज़ रहती है।
1: सर, एक फोन आ रहा है, ले लेते हैं। हेलो,
2: हेलो
1: हाँ जी, कौन बोल रही हैं?
2: जी, मैं मिर्ज़ापुर से रहना बोल रही हूँ।
1: अच्छा, मिर्जापुर से रहना जी, क्या समस्या है? आज न्यूरो और स्पाइन पर बातचीत हो रही है आरोग्यम में, तो डॉक्टर अवनीश राय जी हमारे बीच में हैं, विषय विशेषज्ञ। आप डॉक्टर साहब से बात करें।
2: जी,
0: नमस्ते रैना जी, बताइए।
2: नमस्ते जी सर। सर, मुझे ये पूछना था कि सिर में गिल्टियां हो रही हैं
0: अच्छा।
2: सुबह, और इसमें उससे पेन भी होता है कभी कभी।
0: कहाँ पे हो रही हैं गिल्टियाँ?
2: सर, सिर पे है,
0: मतलब
2: स्कैल्प
0: सर पे, मतलब स्कैल्प में, जैसे सर
2: में। हाँ
0: स्कैल्प में तो बाहरी बाहरी ना गिल्टियाँ हैं।
2: हाँ तो सर, पहले तो बहुत छोटी थी बट अब वो बढ़ रही है, तो कोई सिर उससे कोई समस्या हो सकती है?
0: देखिए, ऐसे अगर कोई बड़ी अगर गिल्टी हो जाती है तो वो तो थोड़ा जो है कॉस्मेटिकली भी ख़राब लगता है, और कई बार क्या होता है कि कुछ डर्मोइड सिस्ट होते हैं जो स्कल की बोन में भी थोड़ा वो बना देते हैं, गड्ढा बना देते हैं, तो अगर कोई प्रोमिनेंट सी अगर गिल्टी हो रही है जो सोने में भी आपको प्रॉब्लम कर रही है या ऐसे दिक्कत कर रही है, तो एक बार आपको आ करके अपना CT स्कैन जरूर हो जाना चाहिए कि कोई डर्मोइड सिस्ट अगर है तो कोई उसका इंट्राक्रेनियल, मतलब कोई अंदर की तरफ तो एक्सटेंशन नहीं हो रहा है, और अगर नॉर्मली ये ना बेनाइन स्वेलिंग होती है, कोई ऐसी सीरियस चीज़ नहीं होती है, और लेकिन हम लोग पेशेंट्स को बोल देते हैं कि भाई ठीक है, अगर सब कुछ ठीक है और आपको लगता है कि हम इसके साथ कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपना जो है चलने दो, लेकिन अगर बड़ा हो रहा है, सोने में प्रॉब्लम कर रहा है या उसकी साइज़ ख़राब लग रही है तो फिर हम लोग ऑपरेट करके उसको निकाल देते हैं। अगर
2: हाँ
0: आपका
2: सर,
0: बड़
2: क्योंकि पहले एक था, उसके बाद फिर में ही दूसरी जगह भी हुआ, वो दोनों अब बढ़ रहे हैं काफी।
0: हाँ तो फिर एक बार जो है दिखवा लीजिए, एक बार आपके CT की भी ज़रूरत पड़ेगी और फिर अगर होगा तो फिर उसको ऑपरेट करके निकालना पड़ जाएगा अगर बड़ा हो रहा है तो। जी
2: थैंक यू सर, थैंक
0: जी
1: यू।
0: जी थैंक यू।
1: धन्यवाद आपको भी आरोग्य में फोन करने के लिए। सर, हम लोगों की जो आज की जीवन शैली है, भाग दौड़ वाली

0: या दिन भर मोबाइल पे काम करना है, लैपटॉप पे काम करना है, ऐसी स्थिति में ये जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है, या स्पाइन की समस्या है, या न्यूरो की समस्या है, इससे बचने के लिए कोई उपाय हो तो बताएं हमारे श्रोताओं को।
1: जी देखिए, ऐसा है कि ये सारी जो प्रॉब्लम है ये मॉडर्न डे इलनेसेस, अब हम लोगों को सारा काम कुर्सी चेयर पे बैठ के ही करना है। और दूसरा क्या है कि जैसे अभी देख रही हैं कि गर्मी भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो बाहर की भी फिज़िकल एक्टिविटी एकदम बंद है।
0: जी
1: और बच्चों में भी आप देख रही हैं कि हम लोग के यहाँ वेट गेन बहुत हो रहा है, बच्चे स्कूल गोइंग बच्चे भी अब मोटे हो रहे हैं, क्योंकि डाइट और ये चीज़ भी उनकी काफ़ी ख़राब हो गई, अनहेल्दी हो गई है। तो अगर स्पाइन को या ब्रेन की हेल्थ या किसी चीज़ के लिए आपको ध्यान देना है, तो फिज़िकल एक्सरसाइज ज़रूरी है, विटामिन डी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और फिज़िकल एक्सरसाइज में आपको बोन की एक्सरसाइज, हल्की सी वेट ट्रेनिंग, योगा लचीलापन बढ़ाने के लिए, और कार्डियक एक्सरसाइज यानी कि रनिंग या जॉगिंग ज़रूरी है। इससे आपकी फिज़िकल हेल्थ भी अच्छी रहती है और मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है।
0: अच्छा लग रहा है सर आपसे बातें करते करते, और बात करते करते समय इतना बीत गया और कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, तो चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे?
1: जी, आप लोगों से बस ये है रिक्वेस्ट कि परिवार में सब लोग एक दूसरे की हेल्थ का जो है ख्याल रखें, और फैमिली में फैमिली का हेड से लेके बच्चे तक वो एक दूसरे के खान पान का ना ध्यान रखें, सबको एक्सरसाइज के लिए बोलें कि, और सबको रीडिंग के लिए बोलें कि अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें, रीडिंग करें, लाइफ को थोड़ा स्लो होकर के जीना सीखें, लाइफ को सिर्फ भागा भागी की लाइफ ना बनाएं। वो आपके माध्यम से बताना है कि जितने भी सेंटेरियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लोग 100 साल से ऊपर जीते हैं,
0: जी
1: उनका यही रहता है कि घर की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ भी अगर आप लगातार कर रहे हैं, जैसे घर का झाड़ू ही है, पोछा है, या घर का काम भी है, स्लोली एक्टिविटी, तो ये सारी एक्टिविटी भी आपको लंबे समय के लिए अच्छा रखती है, फिट रखती है, लचीलापन बना के रखती है। योग करें, प्राणायाम करें और इंजॉय करें, खुश रहें।
0: कुल मिलाकर ये ही निचोड़ है कि अगर आप अपने जीवन शैली को व्यवस्थित कर लें, खान पान को व्यवस्थित कर लें, तो आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और बाकी अगर समस्याएं थोड़ी बहुत आती भी हैं तो उसमें लापरवाही न करें, विशेषज्ञ से मिलें। तो डॉक्टर अवनीश राय जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी अच्छी इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे श्रोताओं को दें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
2: आप सुन रहे थे स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम। आज इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ थे डॉक्टर अवनीश राय, आपसे बातचीत कर रही थी शिखा श्रीवास्तव। मीडियम वेव 241.5 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, DTH और DRM 1233 किलोहर्ट्स, वेव्स OTT पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। दिन के 3 बजे हैं, संपन्न हो रही है आज की हमारी पहली सभा। शाम 5 बजे दूसरी सभा आरंभ होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

0: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी वाराणसी है। स्टूडियो घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। आरंभ हो रही है सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में नन्हे मुन्ने बच्चे सुने अपना कार्यक्रम बाल गोपाल।
1: बच्चों जय हिंद। और हो चुन्नू मुन्नू? भाई गर्मी तो पड़त हो मजे का, ऐसने में तनी बज बजा के रहा हो चुन्नू मुन्नू, काहे कि देखा हो मौसम केहू के ना देखेला, ई ना देखेला कि ई लइका हो बच्चा हो कि बड़कवा। जब ऊ आपन रंग देखावेला ना तो कुल जनी पे एके तरह का असर करेला। एक खातिर देखा घर का बड़का लोगन कहेला ना कि घरे में खेला घर से बहरे मत निकला। असहियो बात हो चुन्नू मुन्नू। देखा हो दोपहरिया ले इतना गर्म बढ़ जाला ना कि घर से बहरे तो तनको निकले का मन ना करेला। आ तू लोगन का करबा, न गर्मी देखबा, न जाड़ा देखबा, न बरसात देखबा, बस जवन धुन सवार भैल न खेले का तवन घर के बहरे निकल के खेले के हो। तो देखा हो मौसम कहत हो कि अब बे थोड़ा सा घर में बैठला, जवन खेल खेले के हो घर में खेला। हम माना थे भाई कि स्कूल का छुट्टी हो तो घर में कैसे रुकल जाए, लेकिन देखा हो अपने स्वास्थ्य से बढ़ के कुछ ना होला। एक खातिर बड़का लोगन का बात माना और घरे में रहा, और जब तनी घाम कम हो जाए तो बाहरे निकल के भाई खेला। खेल कूद भी जरूरी हो, पढ़ल लिखल भी जरूरी हो, और संगे संगे बड़का लोगन का बात मानल भी जरूरी हो। ए भाई हम तो कहब ना कि ई जो छुट्टी भयल हो ना तो ऐसने में तनी छुट्टी का अच्छा उपयोग करा। हम तो कहब कि जवन तू लोगन के खुशी हो ऊ करा, मने कि जवन तू लोगन के अंदर योग्यता हो ओके और निखारे का कोशिश करा। जैसे अगर तू लोगन के चाहे कुछ हो खेले का तो खेला भाई। अगर तू लोगन में से केहू ऐसन भी हो कि उनके योग व्यायाम करे का शौक हो तो योग व्यायाम करें, केहू के पढ़े लिखे का ज़्यादा शौक हो तो ऊ लोगन भाई अपन छुट्टी में स्कूले का काम तो करबे करें, और संगे संगे कुछ और कहानी हो गीत हो कविता हो ई कुल का भी किताब पढ़ सकेलन, ऐसे ज्ञान बढ़ी। और साथे में हम तो कहब ना कि कुछ बच्चा लोगन ऐसन भी होयन जिनके गावे बजावे का भी शौक होई। अब भाई बड़ा नीक का जब छोट बच्चन ना जब गावे लगेलन तो बड़ा नीक लगेला हो। तो चुन्नू मुन्नू अगर तू लोगन के शौक हो कुछ गावे का, कुछ बजावे का, कुछ सीखे का, तो ई गर्मी का उपयोग करा और एके सीखा। आ देखा आज हम तू लोगन के यही लिए कहा था ना कि जो मन करे ऊ सीखा, काहे से कि आज हम तू लोगन के लिए इतना बढ़िया जोनी छोट छोट दूठे बच्ची हैं ना उनकर भजन लेके आयल है, ताकि तू लोगन इनके सुना और फिर इनके जब सुन लेबा ना तो इनकरे जैसन सीखा कि हाँ भाई छो उम्र कुछ ना होला, भले बच्चन छोट रहे तो का अगर उनके सीखे का शौक हो लगन हो तो कुछ भी कर सकेलन। तो आवा हो चुन्नू मुन्नू पहले ई

0: राम कृष्ण भजन सुन लेवल जाए मिशिता वर्मा और वान्या सिंह की आवाज में।
1: My name is Nishita Verma and I'm 8 years old and I'm gonna sing a song named Ram I Did.

तो चुन्नू मुन्नू देखा हो कितना नीक लगत रहल है ना जब हम लोगन ने इनके सुन ली है मिशिता वर्मा और वान्या सिंह के। तो यही लिए तो कहत रही ना कि तू लोगन के भी जवन शौक हो वो पूरा करे के कोशिश करा और ओके निखारे के कोशिश करा। भाई छुट्टी होला तो ई ना कि खाली खेल कूद में समय खत्म कर दिया जाए। छुट्टी होला कि लैकन बच्चन पढ़े लिखे के संगे संगे कुछ ऐसन चीज भी लेके आगे बढ़े कि आगे उनके जीवन में बहुत काम आवे। और जानत हुआ इन लोगन के सुन के कितना नीक लगल ना। अगर तू लोगन भी कोशिश करवा ना तो काल ही के हो सकेला कि तू लोगन भी कभी कवनो गीत कविता ई रेडियो पे बज सकेला। और जानत हुआ जब रेडियो का बात करत है ना तो रेडियो भाई कुछ ही दिना में अपन 90 बरिस का उम्र पूरा कर ली। अब बतावत काहे है तू के ई बात कि काहे की देखा हो रेडियो जो हो ना वो बहुत पहले से चलल आवत हो। हम लोगन जानत हुआ अपने बचपना का बात बताई तो जब हम लोगन छोट रहली ना तो हम लोगन का जब दादा दादी लोगन बैठ के रेडियो सुने ना तो हम माऊ कही कि का हो दादा काहे इस डब्बवा में से बजल करेला तू लोगन लेके बैठल करेला। तो कहेलन कि ई खाली डब्बा ना हो बच्ची इमें से बड़ा ज्ञान विज्ञान गीत संगीत कुल सुने के मिलेला और घर बैठले बैठले हम लोगन के ढेर का जानकारी भी हो जाला। अब भाई जानकारी तो बहुत बढ़िया चीज़ है भाई अपने जीवन में बहुत काम आवेला। और जानत हुआ एक बात और बतावल चाहत है कि आजकल देखत हुआ मोबाइल का जमाना हो सबके पास मोबाइल हो भाई लेकिन पहले ऐसा ना रहे। पहले जानकारी अपने रेडियो से मिले तो ई रेडियो ना सबके घरे में भी ना होत रहे एकरे लिए लाइसेंस बनवावे के पड़े। जैसे कि पहले का समय रहे तो पोस्ट ऑफिस से जाके एक लाइसेंस बनवावे के रहे नहीं तो ऐसे घरे घरे रेडियो न पावल जाए। तो भाई पहले का समय तो कुछ और रहे रेडियो बैठ के लोगन सुने एक संगे सुने तो पूरा परिवार एक के घरे में बैठल रहे एक के कमरा में बैठल रहे। ई नहीं कि पल्ले मोबाइल रख ले ले है और इहर उहर जाके कौनो कुछ अपने मन का कार्यक्रम में सुनती गीत सुनती संगीत सुनत है ई ना रहे। तो रेडियो जो रहल ना सब लोगन के एक साथ बांध के रख रहत रहल। ए खातिर बच्चा लोगन हम बार बार ही कहत है कि तू लोगन भी ई छुट्टी का सही उपयोग करा और आगे बढ़ा। भाई आगे बढ़े खातिर बहुत कुछ सीखे के पड़ेला तो तू लोगन के पास तो समय ही समय हो। खूब सीखा खूब आगे बढ़ा और अपन शौक पूरा करा भाई काहे से कि तू लोगन अपने देश का भविष्य हुआ। और जब आज से अपन भविष्य न सुधरी न सीखी तो आगे कैसे हम लोगन का देश आगे बढ़ी। तो अपने देश के आगे बढ़ावे खातिर हम लोगन के का करे के हो ये छुट्टी का सही उपयोग करे के हो और बहुत कुछ सीखे के हो। सबसे बड़ी बात अपने घर के बड़कन का बात माने के हो अपने घर का जो बड़ बुजुर्ग

0: जीवन उनकर सेवा करे के हो। कहें से कि जब सेवा करबा तो आशीर्वाद मिली और ये आशीर्वाद आप लोगन के जिंदगी के आगे बढ़ाई और बहुत कुछ सिखाई। तो बच्चा लोगन अपने गुरु जी का, अपने माता पिता का, अपने दादी दादा का, कुल जने का बात सुना, समझा, सीखा और उनके आज्ञा का पालन करा। और जात जात बस एक के बात कहब कि मौसम हो गर्मी का तो गर्मी से तनी बच बचा के रहा। जवन गर्मी का फल हो, तरकारी हो, ये सब कुल खा और पानी समय समय से पियत रहा। अपने संगे संगे जो बहरे का पशु पक्षी हों ना, उनकर भी तनी ध्यान रखा। उनकरे लिए भी चाहे तो दुआरे पे चाहे तो छते पे कहियो पानी और दाना का व्यवस्था कर ले रहा। कहें से कि उन लोगन न बोल पई हन न कुछ कर पई हन। तो ये खातिर उन लोगन का भी ध्यान दा और आपन भी ध्यान दा। एकरे संगे संगे अब हम चलत है बच्चा लोगन, हमें चले का इजाजत दा। तो बच्चों जय हिंद।
1: अभी बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल गोपाल। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 5:15 हुए हैं। युवा साथी सुने अपना कार्यक्रम युवावाणी।

0: दोस्तों, कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी सीख हमें किताबों या कक्षाओं से नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदतों से मिलती हैं। छोटे छोटे निर्णय ही हमारे आने वाले कल को बेहतर बनाते हैं।
1: बिल्कुल नेहा, और जब बात अच्छे जीवन की हो तो जागरूकता, सही जानकारी और स्वस्थ आदतें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं।
0: बिल्कुल दोस्तों, इन्हीं सार्थक विचारों के साथ आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे मुझे यानी नेहा को
1: और मुझे यानी भास्कर को।
0: आप सभी श्रोताओं को हमारा
1: नमस्कार।
0: आप सुन रहे हैं आप सभी का मन पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। तो दोस्तों, आज की बात में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय की जो सीधे हमारे स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ा हुआ है। पर उससे पहले चलिए ये गीत सुन लेते हैं।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
4: 0542227658।
2: ओ
1: 0542227658।
2: लो अभी फोन लगाता हूँ।
1: 0542227658।
5: दीदी नौकरी लग गई।
6: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
5: हाँ दी नया मोबाइल।
6: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
5: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
6: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
5: पर दीप
6: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
5: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
6: अच्छा
7: RBI कहता है
8: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
9: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
10: याद रखिए शौक सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।

0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
2: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
4: तो दोस्तों, आज हम मना रहे हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस।
5: विश्व तंबाकू निषेध दिवस का उद्देश्य लोगों को तंबाकू के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना है, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है।
4: और दोस्तों, तंबाकू चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो, चाहे वो सिगरेट हो, बीड़ी हो, गुटखा या अन्य नशीले उत्पाद, ये स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक माने जाते हैं। इसका सेवन हमें बल्कि बहुत सारे बड़े बड़े रोगों से हमें खतरे तक पहुंचा सकता है। और कई सारे केसेस में तो ये भी देखा जाता है कि लोग अपना जीवन जो है अपने आप से ही गवा बैठते हैं। तो दोस्तों, ये तंबाकू की वजह से ही कैंसर, हृदय रोग और फेफड़ों जैसी गंभीर बीमारियां का खतरा बढ़ जाता है और लोग अपना अच्छा खासा खुशहाल जीवन भी खत्म कर देते हैं।
5: इसीलिए आज का यह दिन हमें एक सकारात्मक संदेश देता है, नशे से दूर रहने का, स्वस्थ आदतों को अपनाने का और अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने का।
4: याद रखिए दोस्तों, अच्छी सेहत केवल एक आदत नहीं बल्कि एक बेहतर भविष्य की नींव है। और इतना सारा जो टेंशन और ये वर्क प्रेशर, नेगेटिविटी और ये आजकल की जो फास्ट लाइफ है ना, उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोग इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहे हैं आसानी से, इतना इरिटेटेड हो जाते हैं कि वो ऐसे में एक कोई ऐसा साधन ढूंढते हैं जिनसे उन्हें क्विक रिलीफ और क्विक जो है रिलैक्स मिल सके। और इसी चक्कर में ये जो क्विक इंस्टेंट और तुरंत के लिए रिफ्रेशमेंट हम ढूंढते हैं, इसी में कहीं ना कहीं हम ऐसी आदतों का शिकार भी हो जाते हैं। क्योंकि क्विक डोपामीन तो हमारी फटाफट से एक सिगरेट जलाने से और उसको फूंकने से, क्यों भास्कर, मिल तो जाती है, लेकिन वो हमारे लाइफ के लिए जो रिलैक्सिंग बनी हुई है वो रिलैक्सिंग रहती नहीं है,
5: बल्कि वो और भी ज्यादा नुकसानदायक होती है।
4: तो ये छोटी सी आदत की थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए, थोड़ा सा काम का प्रेशर बढ़ गया, बहुत ज्यादा काम आ गया, अब उसमें हम सोच रहे हैं कि हल्का सा हमें रिलीफ मिल जाए। अब वही हल्का सा रिलीफ और हल्का सा जो रिलैक्स है हमारे लॉन्ग टाइम लाइफ के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। क्योंकि एक सिगरेट जो हम एक दिन में छोटा सा फूंक रहे हैं वो धीरे धीरे धीरे धीरे दिन भर में ना जाने कितनी संख्याओं में बदल जाता है, वो हमें धीरे धीरे पता भी नहीं चलता है। नंबर्स बढ़ते जाते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है
5: और वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। इतना कि एक दिन हमें उसका बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है,
4: बहुत सारी बीमारियों का शिकार होना पड़ता है और अपने अच्छी खासी चलती जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है।
5: क्यों? सही कहा।
4: तो दोस्तों, ख्याल रखिए अपना और कोशिश करिए कि अपने आप को रिफ्रेश रखने के लिए, कूल रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिसका हम सहारा ले सकते हैं, अपने आप को खुश रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम नशे की तरफ ही या ऐसे किसी नशीले पदार्थ का ही सहारा लें जिससे कि हम टेंशन फ्री रह सकें और हमें तुरंत ही आराम मिल सके। तो आगे बढ़ते हुए दोस्तों, हम बता दें आपको कि जैसा कि आज है संडे का दिन और संडे के दिन कुछ ना कुछ हमारे शो में स्पेशल होता है, तो आज भी हमारे शो में बिल्कुल स्पेशल है। क्योंकि हम जैसा कि जान रहे हैं कि 90 वर्ष हमारे आकाशवाणी के पूरे होने वाले हैं और वो घड़ी आने वाली है, ऐसे में हम पहुंच गए विद्यापीठ कैंपस पर और वहां पर हमने कुछ छात्रों से बातचीत की है। चलिए जानते हैं कि वो बातचीत क्या है। तो जैसा कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और हम आ गए हैं इस वक्त महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कैंपस में और यहाँ पर अब हम बात करेंगे यहाँ के स्टूडेंट से कि वो रेडियो से किस तरीके से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ के एक स्टूडेंट से। तो सबसे पहले मुझे अपना नाम बताइए।
6: नमस्ते, मेरा नाम अंशिका है।
4: अंशिका, आप क्या कर रही हैं इस वक्त?
6: अभी मैं बीसीए सेकेंड ईयर मेरा फिनिश हुआ है, मैं थर्ड ईयर में हूँ।
4: ओके, यानी आप कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स में एनरोल है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा जान करके। अंशिका, मुझे ये बताइए कि आप इस टाइम में जो कि बहुत ही अच्छा इस टाइम में बूमिंग सेक्टर है कंप्यूटर का फील्ड और सब कुछ

0: इस टाइम में देखा जाए तो मशीनरी होता जा रहा है और एडवांस होता जा रहा है, तो आप डीसीए की छात्रा हैं, तो आप अपने लिए ऐसे में क्या करियर प्लानिंग कर रही हैं इस स्ट्रीम में?
1: अकॉर्डिंग टू माई सब्जेक्ट्स, मेरा ये है कि मतलब बीसीए करने के बाद मैं अगर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहूंगी पहले तो, और उसी के साथ साथ एमसीए वगैरह भी करना है जिससे कि मेरा आगे सेक्टर में काम दे।
0: यानी आप हायर स्टडीज के लिए भी प्लान कर रही हैं, राइट?
1: हाँ
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें आपकी जरूर पूरी हों और आप लगे रहिए इस क्षेत्र में इसी तरह तरीके से। खैर, अंशिका, मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसा कि आप तो खुद एक स्टूडेंट हैं, और ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है कि आजकल के टाइम में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, इतने सारे एंटरटेनमेंट के सोर्सेस हैं, इतनी सारी चीजें हैं, 1 मिनट में हमें देखा जाए तो हमारे पास कंटेंट फोन पर या किसी भी सोर्सेस पर देखा जाए तो इजीली अवेलेबल हो जा रहे हैं। तो ऐसे में रेडियो को अपने आप से कैसे कनेक्ट कर पाती हैं, और रेडियो आपके लिए क्यों स्पेशल है?
1: रेडियो बहुत अच्छा एक माध्यम है एक तरीके से ये डिस्ट्रैक्शंस वगैरह से दूर रहने का। बेसिकली अगर मैं देखूँ तो मेरे हिसाब से तो जब मैं प्रैक्टिकल वगैरह का कोई भी असाइनमेंट वगैरह लिख रही होती हूँ तो ये मेरे लिए एक बेस्ट सोर्स मिलता है कि भाई कान में कुछ भी ईयरफोन वगैरह यूज करते हो और इजिली सुनते सुनते आप अपना कुछ चीजें सीख भी रहे होते हो, या फिर गाना वगैरह होता है तो वो सुन रहे होते हो और आप अपना असाइनमेंट वगैरह भी साथ साथ काम कंप्लीट कर सकते हो। और बहुत अच्छी अच्छा लगता है कि मतलब अलग अलग तरीके से आप पुराने गाने सुनना चाहो, नए सुनना चाहो, तो अलग अलग थीम्स में रहते हैं तो वो एक बेस्ट ऑप्शन है। उसके साथ साथ और भी बहुत सारी तरीके की चीजें जैसे न्यूज वगैरह हो गया, आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड वगैरह हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें उससे मतलब पता चलती रहती है।
0: मतलब आप कह सकती हैं कि एक रेडियो सेट से सारी चीजें हमें अवेलेबल हो पा रही हैं। तो और मैं आपसे इसी में एक और सवाल पूछना चाहूंगी अंशिका, कि जैसे आपके लिए एक, अगर मैं स्पेशल टाइम कहे रेडियो सेट के साथ में कि ये मेरा स्पेशल टाइम है, और इस टाइम में देखा जाए तो क्योंकि ऑलरेडी आप स्टूडेंट हैं तो हमारे लिए ऐसे में फ्री टाइम तो इजिली अवेलेबल होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। तो कोई ऐसा स्पेशल टाइम जबकि आपके साथ में आप सोचती हैं कि इस टाइम में मेरे साथ रेडियो सेट जरूर होना चाहिए, और आप उसके उसके आसपास अपने आप को रखती भी हैं, या रेडियो आपके पास जरूर होता है, ऐसा कोई स्पेशल मोमेंट?
1: जैसे कभी मैं बहुत फ्री होती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मतलब गाना सुनना चाहिए या फिर कुछ ऐसा सुनना चाहिए जो कि बहुत रिलैक्सिंग हो, तो फिर उस टाइम पे रेडियो वगैरह बहुत अच्छा होता है। बाकी जैसे देखा जाए तो सोशल मीडिया वगैरह के कंटेंट्स बहुत उस तरीके के होते हैं कि आपको बेस्ड ऑन इंटरेस्ट वो बढ़ते जाता है और फिर उसके बाद लत लग जाती है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन रेडियो एक तरीके से इस तरीके का है कि उसमें कोई विजुअलाइजेशन वगैरह नहीं होती, तो हमें बस सुनना होता है और बाकी सारी चीजों को अपना करते रहना रहता है, तो अच्छा है वो एक तरीके से देखा जाए तो।
0: और अगर मैं घर के डेली वर्क में कहा जाए तो उस टाइम में आप कब ज्यादा अपने आप को रेडियो से, मतलब ये होता है कि नहीं इस टाइम में तो मेरे पास रेडियो होना चाहिए, जैसे आप घर में कुछ काम कर रही हैं तो कोई ऐसा स्पेशल मोमेंट?
1: हाँ जैसे मेरी मम्मी बहुत टाइम ऐसे दिन भर में अधिकतर मेरी मम्मी घर पे नहीं रहती, तो ज्यादातर काम वगैरह जो भी घर का रहता है वो हम ही लोग को करना रहता है। ज्यादातर ये यूज करते हैं कि स्पीकर वगैरह है हमारे घर पे तो हम उससे रेडियो कनेक्ट कर देते हैं, रेडियो बजता रहता है, हम अपना काम करते रहते हैं, या फिर ईयरफोन्स वगैरह यूज करके भी रेडियो का मतलब सुनते रहते हैं और इजिली काम हो जाता है घर का जो भी रहता है। वो बहुत ऐसे लगता है कि कम ही टाइम में बहुत सारी तरीके की चीजें हो गई हो।
0: तो कह सकते हैं कि मतलब अकेलेपन का साथी, जब हमारे पास कोई नहीं है तो हमारे पास हमारा छोटू सा रेडियो सेट है जो कि
1: बिल्कुल
0: आराम से हम ऑन करके और अपना काम भी कर ले रहे हैं, और उसके साथ में एंटरटेनमेंट भी हमारा पॉसिबली साथ में साथ कनेक्टेड होकर के चल रहा है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आज के इस ऐसे एरा में जहाँ पर इतने सारे सोर्सेस हैं और ऐसे में आपके जैसा यूथ भी रेडियो सेट के लिए इतना स्पेशल फील करता है और उसके साथ में रेडियो की कनेक्टिविटी इस तरीके से है, ये जानकर के वाकई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अंशिका। और आप कुछ स्पेशल कुछ कहना चाहेंगी, मतलब रेडियो के अचीवमेंट को लेकर के, या फिर आप क्या सोचती हैं कि आने वाले टाइम में रेडियो कहां तक होना चाहिए?
1: अचीवमेंट के बारे में बोलूँ तो मैं बहुत खुश हूँ कि आकाशवाणी के 90 ईयर्स होने वाले हैं। बाकी मैं यही चाहूंगी कि आगे भी ये सब आगे चीजें ये सब बढ़ती रहें जिससे कि हमें और भी तरीके की चीजें पता होती रहें, साथ साथ जो भी चीजें हमें पता चल रही हैं उसके एक्स्ट्रा में हमें और क्या ही चाहिए। मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे इतनी सारी चीजें मिल जा रही हैं तो फिर इंसान को और क्या चाहिए, ऐसे तो वरना इंसान इधर उधर हर चीजें खोजता रहता है, तो तो उससे अच्छा है कि रेडियो भी सुन लो, उसपे आपका न्यूज वगैरह, फिर बहुत स्पोर्ट्स से रिलेटेड गाने वगैरह और बहुत सारी तरीके की चीजें जो भी मिलनी होती वो मिल जाती, तो आई थिंक वो बहुत अच्छा बेस्ट सोर्स है। और बाकी मैं तो यही कहूंगी कि आगे ये फर्दर बढ़ना ही चाहिए।

0: हम यही उम्मीद करते हैं कि आपका आपके रेडियो से रिश्ता ऐसे ही बना रहे और आप भी रेडियो के साथ में इसी तरह से ग्रो करती रहे और लाइफ में बहुत ही आगे जाए।
1: तो आइए चलिए अब हम बात करते हैं विद्यापीठ कैंपस के दूसरे स्टूडेंट से। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ।
2: जी मेरा नाम अखंड श्रीवास्तव है, जो कि हम विद्यापीठ से BCA करते हैं।
1: अच्छा, तो विद्यापीठ में आपका BCA का कौन सा ईयर चल रहा है?
2: जी हमारे सेकेंड ईयर खत्म हुआ है, अब थर्ड ईयर स्टार्ट होने वाला है।
1: ओके, सो अखंड आप क्या प्लान कर रहे हैं? आप BCA करने के बाद से जॉब के लिए अप्लाई करेंगे या फिर MCA?
2: BCA के बाद मेरा प्लान है स्टडी के साथ जॉब, क्योंकि हम MCA भी करेंगे और साथ में जॉब भी करना चाहते हैं।
1: अखंड, जैसा कि आप जानते हैं कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने वाले हैं, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि इस समय बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर पॉडकास्ट एंड ऑल सुनने को मिलते हैं, जैसे कि YouTube, सोशल मीडिया पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो आप इन सब सारी चीजों में फिर भी आकाशवाणी को ज्यादा महत्व क्यों देते हैं और ज्यादा भरोसा आकाशवाणी के ऊपर क्यों करते हैं?
2: सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, आकाशवाणी में बहुत टाइम से सुनते हुए आ रहा हूँ। आकाशवाणी से ये है कि ये ट्रस्टवर्दी है, यहाँ पे फेक न्यूज नहीं मिलते, जैसे बाकी के प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे न्यूज आते हैं बट वो सही है गलत ये नहीं, बट ये आकाशवाणी है वहाँ पे हमेशा ही से मुझे सही न्यूज मिलती हुई आई है। ये गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट का पार्टी है ये, जो कि आप कभी फेक न्यूज नहीं मिलेगा, ये ऑथेंटिक है, मतलब एकदम ट्रस्टवर्दी है, ब्लाइंडली इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं हम।
1: तो इस वजह से आपको आकाशवाणी के ऊपर ज्यादा भरोसा है। तो अखंड, जैसा कि आप जानते हैं कि आकाशवाणी के बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इन सारे प्रोग्राम्स में आपका सबसे पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है?
2: आकाशवाणी के सबसे पसंदीदा प्रोग्राम तो मेरे युवाड़ी है, जो कि यूथ को लेके है, ये मेरा फेवरेट शो रहा है। इसके साथ साथ एक और शो है जो कि कॉलिंग से रिलेटेड है, कॉल, जिसमें आप कॉल करके फेवरेट गाने लोगों से पूछ के उनके फेवरेट गाने बजाए जाते हैं। ये दो मेरे फेवरेट सोच रहे हैं, खास करके युवाड़ी।
1: अच्छा, बहुत अच्छी बात है अखंड, और अच्छा लगा आपसे बात करते। आशा
2: थैंक
1: है
2: यू,
1: आपका दिन शुभ रहेगा। धन्यवाद।
2: थैंक यू।
0: तो दोस्तों, अभी आपने सुनी वो सारी बातचीत जो हमने अपने साथियों से की और उन्होंने अपना विचार हमसे साझा किया। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हुए हम बढ़ते हैं और अपने आगे के सबसे पसंदीदा सेगमेंट।
1: यूथ डायरी को सुनते हैं।
0: तो दोस्तों, हमारा आज का यूथ डायरी का हिंदी का शब्द है अभ्युदय, जिसका अर्थ होता है,
1: उन्नति, प्रगति या विकास।
0: इसका वाक्य प्रयोग अगर मैं हम करें दोस्तों, तो हम कह सकते हैं शिक्षा किसी भी समाज के अभ्युदय का आधार होती है।
1: और आज का हमारा अंग्रेजी का शब्द है एलिसिट।
0: और एलिसिट का अर्थ होता है दोस्तों, किसी जानकारी, प्रतिक्रिया या उत्तर को प्राप्त करना या बाहर लाना।
1: इसका वाक्य प्रयोग होगा द टीचर्स ट्राई टू एलिक्ट आंसर्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स।
0: तो ये थे हमारे आज के दो यू डायरी के शब्द। उम्मीद करते हैं आपने इन्हें कहीं ना कहीं नोट तो कर ही लिया होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, उसके बारे में चर्चा कर लें। लेकिन उससे पहले हमारा कल का प्रश्न क्या था, ये जान लेते हैं। तो हमारा कल का प्रश्न था, भारत में जनगणना कितने वर्षों में आयोजित की जाती है? और इसका जो सही जवाब हमें भेजा है, हमारे कई सारे साथियों ने भेजा है, और इसका वैसे सही जवाब जो है वो है 10 वर्ष में। और जो साथी हमें इसका सही जवाब भेजे हैं, वो उनके नाम चलिए अब जान लेते हैं।
1: तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं, ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से, दुर्गेश नागपुरे, राधेश्याम नागपुरे, वंदना भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से, ग्राम खैगांव, तहसील महेश्वर से, प्रेमलाल वर्मा, वेदिका वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदिनी, हर्षिता और ममता बाई वर्मा, रिंग रोड, नर्मदा नगर, मध्य प्रदेश से, सूरज वर्मा, नीरज शिवम, धीरज, चिंता वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा, नेपानगर, मध्य प्रदेश से, प्रभु दयाल, शिवेद, शिवा, बसंती बाई और गणेश, शिवदे, चंदा चंदौली, आलोक कुमार श्रीवास्तव सारनाथ वाराणसी, दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, पीपरलोड, सरगांव, छत्तीसगढ़ से और आदित्य कुमार।
0: तो हमारे इन सभी साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरह से हमें अपने जवाब भेजते रहिए और विनर भी बनते रहिए। और इसी के साथ साथ दोस्तों, चलिए अब हमारा आज का प्रश्न क्या है वो जान लेते हैं। तो हमारा आज का प्रश्न है,
1: तो हमारा आज का प्रश्न है, मार्च 2026 में प्रतिष्ठित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में किस देश के एयरपोर्ट को पहला स्थान मिला है? मैं सवाल को फिर से बताना चाहता हूँ, मार्च 2026 में प्रतिष्ठित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में किस देश के एयरपोर्ट को पहला स्थान मिला है?
0: तो दोस्तों, फटाफट से इसका सही जवाब हमारे इंस्टाग्राम हैंडल यानी youthAIR वाराणसी पर जाकर, या फिर हमारे ईमेल के पते पर यानी youthAIRVNS@gmail.com

पर जाइए और इसका सही जवाब हमें लिख भेजिए और बन जाइए हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के जो है विनर। और आपका नाम तो पता ही है कि हमारे शो में हम हर रोज़ बताते हैं और उसके साथ साथ उन्हें ढेर सारी बधाइयाँ भी देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपने हमारा प्रश्न भी नोट कर लिया होगा और जवाब देने के लिए अब आप काम पर भी लग गए होंगे। तो चलिए इसी के साथ साथ अब एक गीत भी सुन लेते हैं।

तो दोस्तों चलिए इस मज़ेदार से गाने के बाद अब जान लेते हैं कि हमारे आज के दिन में खास इतिहास में क्या है। तो आज का दिन दोस्तों बात करें तो 31

0: का काफी प्रेरणादायक और ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज के दिन बहुत सारी चीजें ऐसी ऐतिहासिक रूप से घटित हुई हैं। दोस्तों 31 मई 1859 को लंदन की प्रसिद्ध घड़ी बिग बेन ने पहली बार समय बताना शुरू किया था। क्या बात है, आज ये पूरी दुनिया में समय और अनुशासन का प्रतीक मानी जाती है।
1: और साथ ही साथ 1774 में भारत में पहला डाक सेवा कार्यालय खोला गया था।
0: तो वाकई भाई ये प्रेरणादायक दिन है और काफी ज्यादा अच्छे खासे ऐतिहासिक अचीवमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों 1977 में आज ही के दिन भारतीय सेना के एक दल ने पहली बार विश्व के तीसरे सबसे ऊंचे पर्वत शिखर कंचनजंगा पर चढ़ाई की थी।
1: और 31 मई को पूरी दुनिया में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, जो कि आप जान ही रहे हैं।
0: बिल्कुल दोस्तों, जो इसकी चर्चा हमने बखूबी अपने शो में शुरुआत में की हुई है, तो आज ही का दिन ये है जो इस दिन के लिए खास तौर पर माना जाता है। तो ये थे कुछ सकारात्मक और कुछ ऐतिहासिक अचीवमेंट जो हमारे आज के दिन से जुड़े हुए हैं। वैसे भास्कर, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी अब कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे तुम्हारा नाम भी ऐतिहासिक तौर पर जाना जाए और लोग तुम्हें जाने? तो उसके लिए ऐसा क्या खास तुम अपने लिए सोचते हो? मतलब कुछ तो ऐसा तुमने सोचा होगा जो कि वास्तव में तुम्हें लग रहा है कि भाई इसको करके तो वास्तव में एक इतिहास में ऐतिहासिक रूप से मेरा नाम भी दर्ज हो जाएगा।
1: तो जैसा अभी तो मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ, तो मेरा सपना यही है कि मैं थिएटर से एक्टिंग सीख के, जो कि मैं सीख रहा हूँ, उससे कुछ ऐसा करूँ जिससे मैं भी लोगों में, दुनिया में जाना जाऊँ।
0: जाना जाऊं और इंस्पायर करूं, तो ये मतलब कह सकते हैं कि तुम अपने प्रोफेशन के लिए इसको कह सकते हैं कंटिन्यू करना चाह रहे हो। तो ये तो भास्कर की बात ही दोस्तों। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने शो में भी, अपने कार्यक्रम में भी हर रोज आपके लिए रोजगार के नए नए अवसर बताते हैं। जैसा अभी भास्कर ने बताया कि वो एक थिएटर आर्टिस्ट बनकर के सामने आना चाहते हैं, तो आपके लिए भी हम अलग अलग तरीके की सूचनाएं लेकर के आते हैं और अलग अलग रोजगार सूचना आपको बताते हैं। तो हमारी चलिए बारी आ गई है आज की रोजगार सूचना को जानने की। तो हमारी आज की रोजगार सूचना है दोस्तों, RRB की तरफ से आई हुई ये आधिकारिक वेबसाइट पर सहायक लोको पायलट ALP पदों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी हुई है, जो कि 11,127 पदों के लिए दी जा रही है। और RRB आवेदन प्रक्रिया 15 मई 2026 से शुरू हो गई है और उम्मीदवार 14 जून 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
1: इसके लिए न्यूनतम आयु की सीमा 18 वर्ष है, जबकि अधिकतम आयु की सीमा 1 जुलाई 2026 तक 30 वर्ष है। बात करें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो उम्मीदवारों को संबंधित ट्रेन में ITI प्रमाण पत्र के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, या संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।
0: तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रोजगार सूचना, जिसका सारा डिटेल हमने यहाँ पर आपके सामने रख दिया है। तो फटाफट से इस भर्ती के लिए आप भी रेडी हो जाइए और इसके लिए अप्लाई भी कर दीजिए और अपनी तैयारी को भी भाई जोर शोर से शुरू कर दीजिए। बल्कि सिर्फ इसी भर्ती के लिए क्या, जो भी आपका आपने एक करियर प्लानिंग किया है, अब बारी आ गई है कि हम अपनी तरफ से कोई चूक ना करें और उसके लिए काम पर लग जाएं। तो चलिए हम काम पर तो लगते रहेंगे, पर हमारे इस बीच में कहीं ना कहीं ये जो एंटरटेनमेंट का ये जो सफर है वो रुकना नहीं चाहिए और गाने नहीं रुकने चाहिए। तो चलिए इसी के साथ ये गीत सुनते हैं।

0: तो दोस्तों, इस एनर्जेटिक और मोस्ट रोमांटिक वाले गाने के बाद अब बारी आ गई है कि हम फिर से अपने कार्यक्रम में वापसी ले लें। और आज की विशेष बात जो जाते जाते हम आपसे कहने वाले हैं, अब वो भी हम आपसे शेयर कर लें। लेकिन उससे पहले एक बात जो मेरे दिमाग में आ रही है वो ये कि आज के टाइम में कोई अच्छी चीज़ जल्दी फैले या ना फैले, पर देखा जाए तो ये गलत खबरें जो हैं और ये जो फेक न्यूज़ का दौर है वो उतना तेज़ी से और बहुत ही तेज़ी से मल्टीप्लाई होता है। जैसे वायरल इन्फेक्शन मल्टीप्लाई होता है ना भास्कर,
1: सही
0: वैसे
1: कहा।
0: ही बॉडी में ना एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, वैसे ही ये खबरें भी मुझे लगता है वायरस की तरह ही हैं और इसी गति से ये फैलती हैं।
1: हाँ, तुमने सही कहा। और इसका एक बड़ा रीज़न सोशल मीडिया को भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें कोई भी ऐसा वेरिफिकेशन नहीं मिलता है किसी भी न्यूज़ को लेके कि ये सही है या गलत है। वहाँ पर हर लोग हर तरह की बातें करते हैं, तो उसमें कई सारी चीज़ें झूठ भी होती हैं जिसको लोग सच मान लेते हैं। और ऐसे ही रोज़ रोज़ आप लोग देखते होंगे कि कोई ना कोई ऐसे गलत खबरें उड़ते हुए आई जाती हैं हम लोगों के पास कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लेकिन होता ऐसा कुछ नहीं है असली में। जब उसकी पुष्टि की जाती है तो ऐसा निकलता है कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है।
0: और खुदा पहाड़ों निकली
1: चूहिया
0: चूहिया। और इसी चक्कर में क्या होता है कि बहुत तेजी से अफरा तफरी जो है फैलती है पूरे जगह पर और लोग पैनिक करने लगते हैं। खामखा गलत खबरें जो हैं वो सामने पहले फैल जाती हैं, उसके जगह पे जो सही खबरें फैलनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं दबी रह जाती हैं। तो ऐसे में जो जरूरत है दोस्तों वो है कि पहले तो किसी भी खबर का, हमारे अगर में वो व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर किसी भी ऐसे सोशल नेटवर्किंग साइट पर हमारे पास वो आ रही हैं तो हम उसे पहले तो वेरीफाई करें, फिर जा करके हम उसको सोचें विचारें और तभी हम उसको किसी नेक्स्ट पर्सन के पास फॉरवर्ड करें। ब्लाइंडली उस खबर को देखना, उसे तुरंत अच्छा मान लेना और तुरंत, या फिर अगर मैं कोई ऐसी खबर है जिसका कोई पुष्टि भी नहीं है पर उसको ले करके तुरंत पैनिक हो जाना और फटाफट से उसको लोगों के पास मिनटों में शेयर करने के लिए तुरंत इनिशिएट करना, ये कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी है। और इस बेवकूफ़ी की वजह से कभी कभी क्या होता है कि छोटी सी हमारी ये बेवकूफ़ी बहुत बड़ा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है।
1: और एक जिम्मेदार व्यक्ति और नागरिक होने की वजह से आपकी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको इन चीज़ों की पुष्टि ज़रूर कर लेनी चाहिए इस बात को या फिर उस खबर

0: को आगे बढ़ाने से पहले।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी खबर को आगे बढ़ाने से पहले आप एक जिम्मेदार नागरिक की तरह सोचिए और अपने सूझबूझ का इस्तेमाल करिए, और जानिए कि ये जो चीज निकल करके आ रही है और जो एक से चार में फैलने वाली है, वो कहाँ तक हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए वो हित में है, या उसका क्या इम्पैक्ट या क्या उसका हमें आउटकम देखने को मिलेगा।
0: सही
1: क्योंकि
0: कहा।
1: कभी कभी क्या होता है, इसी की वजह से ये छोटी सी हमारी नादानी, या कह सकते हैं छोटी सी हमारी बेवकूफ़ी, इस तरीके का अंजाम लाती है कि कहीं ना कहीं दहशत और लोगों में कह सकते हैं दंगे फसाद और ढेर सारे झगड़े और कई सारे दिक्कत का इसी वजह से सामना भी करना पड़ता है। और एक छोटी सी चीज़ जो है, हमारी छोटी सी चूक, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ अब हमारा बिल्कुल जाने का समय भी नज़दीक आ गया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना भास्कर, अभी भी जाते जाते ना एक गाना के साथ तो हमें दोस्तों को जरूर ही छोड़ते हुए जाना चाहिए, क्यों, क्या कहते हो?
0: एकदम एकदम बिल्कुल।
1: तो चलिए दोस्तों, इन सभी बातचीत के साथ इस गीत को भी हम सुन लेते हैं।

0: तो बिल्कुल जिंदगी में हमें ये दो पल मिलते रहने चाहिए जिसमें हम मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, और इस गम के लिए तो हमारे पास कई सारे मोमेंट मिलते हैं दोस्तों, जबकि हमें गम ही गम जीवन में मिलता है, तो क्यों उस गम को ही सिर्फ हम होल्ड करके रखें। हम ये भी चाहें तो अपने फेस पर, इस जो प्यारे से फेस को हमने भगवान से पाया है, उस पर एक प्यारी सी मुस्कान भी हम चिपका करके आगे पीछे दुनिया में घूम सकते हैं और खुश रह सकते हैं। तो अपने पल को एंजॉय करें, उसके साथ साथ हमारे कार्यक्रम को भी एंजॉय करते रहें। हम हर रोज़ आपसे युवाणी में इसी तरह मिलते रहेंगे, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई खबरों के साथ और कुछ नई जानकारियों के साथ, उसके साथ साथ कुछ अच्छे अच्छे गानों के भी साथ। क्यों भास्कर?
1: सही कहा।
0: तो इसी के साथ साथ दोस्तों, अब हमारे जाने का भी वक्त पास आ गया है और अब हमें दीजिए अनुमति, हम मिलेंगे फिर युवाणी किसी अगले अंक में। तब तक के लिए आपको आज के ये दो रेडियो साथी यानी कि मैं नेहा
1: मैं भास्कर,
0: का
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम में युवाणी, प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं, शाम के 6 बजने वाले हैं। अब भोजपुरी में समाचार दिए जाएंगे आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथे हम वैष्णवी त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के 134वां कड़ी में देश विदेश के लोगन से अपन विचार साझा कैले। उहां के कहले कि सरकार देश के अमूल धरोहर के संरक्षित रखे बदे लगातार कोशिश कर रहल ह। उहां के बतौले कि ज्ञान भारतम अभियान के जरिया से छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठवां सतवां शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बालार्जुन से जुड़ल दुर्लभ तामा के तीनी गो पट्टिका मिलल ह।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ तीन दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस छठी सातवीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: श्री मोदी देश के लोगन से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान ढेरी सावधानी बरतले और सरकारी दिशा निर्देशन के पालन करे के अपील कैले हैं।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: श्री मोदी ने प्रदेश के दशहरी और लंगड़ा आम के चर्चा करत के कहले कि भारतीय आम विश्व बाजार तक पहुंच बनैले है और आम हमन की कृषि अर्थव्यवस्था बदे बहुत जरूरी है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
0: प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में एगो नहर में गंगा डॉल्फिन के बचावे वाले वीडियो के भी चर्चा कैले। उहां के कहली कि डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुते खास है। एके एगो चलत फिरत अस्पताल के तरियन तैयार कैल गेल है। खाद के संतुलित आ उचित इस्तेमाल के बढ़ावा देवे खातिर एक महीना तक चले वाला खेत बचाओ अभियान बिहने से शुरू होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहलन कि खेत, किसान और गांव के जोड़त ई अभियान के राष्ट्रीय स्तर पर चलावल जाए के चाहिए। नई दिल्ली में भइल एगो उच्च स्तरीय बैठकी में उहां के कहली कि अभियान के मुख्य जोर खाद के संतुलित आ सही इस्तेमाल, सतही मौसम के चुनौती के देखत किसानन के समय पर सलाह, पंचायत स्तर पर किसानन के भागीदारी और गांवन के सीधे सरकारी योजनन के लाभ पर है। प्रदेश भर में आज उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के आयोजन कैल गए। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की ओर से आयोजित भइल ई परीक्षा 72 जिलन के कुल 1011 परीक्षा केंद्रन पर संपन्न भइल। परीक्षा के निगरानी खातिर एगो हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम बनावल गइल रहल। प्रशासन कड़े सुरक्षा के इंतजाम कैले रहल।

0: परीक्षा के शुचिता बनावे रखे खातिर सीसीटीवी से निगरानी कैल गेल रहल। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई कहले बा कि ओकर पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल कल 1 जून से चालू हो जाई। आवेदन करे के इच्छुक विद्यार्थी लोगन के उत्तर पुस्तिका के सत्यापन आ पुनर्मूल्यांकन के पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करे खातिर ई पोर्टल शुरू कैल जा रहल बा। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जून महीना में बिजली बिल पर 10% अतिरिक्त फ्यूल एंड पावर परचेस एडजस्टमेंट सरचार्ज लागू करे के निर्णय ले लेबा। अगला महीना उपभोक्ता लोगन के अपन बिजली बिल में 10% ज्यादा भुगतान करे के पड़ी। प्रदेश के अधिकतर जिला में तेज बयारी चलने आ बरखा होके से तापमान में गिरावट दर्ज कैल गई बा। हालांकि पूरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर समेत कुछ जिलन में आज घाम निकलने से उमस भरल गर्मी के सामना करे के पड़त बा। उहर मौसम विभाग अगला 24 घंटा के दौरान प्रदेश के 56 जिलन में आंधी या बरखा के अलर्ट जारी कैले बा। ई जिलन में लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर सहित प्रदेश के कई पूर्वी जिलन शामिल है। मौसम विभाग कई जगहन पर तेज बयारी के साथ बिजली कड़के के अनेसा जतौले बा। समाचार समाप्त भइल, नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर। स्टूडियो घड़ी में शाम के 6:05 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण में आइए जानकारी दे दें आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। पहले आज के शेष कार्यक्रम। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का प्रसारण होगा रात्रि 10 बजे से, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। गैर फिल्मी गीत गजल का कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण होगा रात्रि 9:30 से। सुगम संगीत में रात्रि 8 बजे कलाकार होंगे मनहर उदास। पत्र के लिए धन्यवाद। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:31 पर। आज श्रोताओं के पत्रों के साथ होंगे अरुण पांडे और सना सलीम। कृषि जगत कार्यक्रम में आज शाम 6:30 पर किसान भाई प्रसव काल में पशुओं की देखभाल विषय पर डॉक्टर आलोक पांडेय से सुधीर कुमार श्रीवास्तव की बातचीत के अलावा सुनेंगे कल्पना चटर्जी का गाया लोक गीत। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 6:10 पर। 7:50 पर रसरंग में और रात्रि 8:15 पर रसमाधुरी के जरिए। ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की। अब एक नजर कल के प्रमुख कार्यक्रमों पर। उर्दू कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:30 पर, जिसे हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों में रात्रि 10:30 पर सुनिएगा पंडित उल्लास बापट का संतूर वादन। दिन में 12:45 पर इसी कार्यक्रम में संजय कुमार मिश्रा का गायन सुनिएगा और 7:31 पर शशांक कट्टी का सितार वादन आप सुन पाएंगे। गैर फिल्मी गीत गजल का कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण होगा कल रात्रि 9:30 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रमों में कल 8 बजे रात्रि 8 बजे कलाकार होंगे लता मंगेशकर और जगजीत सिंह। इसी कार्यक्रम में दोपहर 12:30 पर कलाकार होंगी शिल्पी माथुर। कृषि जगत कार्यक्रम में कल शाम 6:30 पर किसान भाई सुनेंगे मिलावटी दूध की पहचान के तरीके विषय पर डॉक्टर तरुण वर्मा से सतीश कुमार यादव की बातचीत के अलावा सरोज वर्मा का गाया लोक गीत। इन्हीं के गाए लोक गीत आप सुन सकते हैं 9:50 पर और दिन में 1:45 पर। युवाणी शाम 5:15 पर, जिसमें होगी आज की बात यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सोच।

फरमाइशी गीत एक्सप्रेस दिन में 2:30 पर। गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में दिन में 1:15 पर महिलाएं चर्चा के अलावा सुनेंगी गीत संगीत। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 12 बजे से। आपके पत्र आपके गीत, ये कार्यक्रम हम लेकर आएंगे दिन में 11 बजे।

होंगी डॉक्टर अनुराधा रॉय और खेती की बातें कार्यक्रम में कल सुबह 6:05 पर विषय होगा अरहर की वैज्ञानिक खेती। जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। ये थी जानकारी आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की। 6:10 हुए हैं। फिल्म संगीत हम लेकर आएंगे इस अंतराल के पार।

0: जन कल्याण
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए
4: 0542227658।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें
5: 0542227658।
6: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
7: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपना यह नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
6: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
7: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
6: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
8: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
9: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
10: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
9: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

संदेश हुआ पूरा। फिल्म संगीत में आपका स्वागत। यशुदास की आवाज, इंदिवर की रचना, राजकमल का संगीत, फिल्म सावन को आने दो।

इसी के साथ है फिल्म संगीत तब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 6:20 होने वाले हैं संस्कृत में।

0: इस समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् भारत शासनं राष्ट्रस्य अमूल्य रिक्थानां संरक्षणार्थं निरन्तरं प्रयतते। सद्य एव नीदरलैंड देशस्य यात्रावधौ चोल कालीन ताम्रपट्टिकानां भारताय प्रत्यर्पणमपि प्रधानमन्त्रिणा उल्लेखितम्। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे प्रधानमन्त्री आतपात् आत्मानं संरक्षितुं पारंपरिक पेय पदार्थानां सेवनाय जनान् अध्यर्थयत्। CBSE इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा ऑन मार्क पोर्टल इति वेब फलकस्य सेवा प्रदातुः सूक्ष्मं निरीक्षणं विधीयते। बैडमिंटन क्रीडायां सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट इति स्पर्धायां भारतस्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी इत्यनयोः युगलेन निर्णायक चक्रे विजयोधिगतः। अपि च IPL क्रिकेट क्रीडायां गुजरात टाइटन्स दलम् अद्य अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे निर्णायक स्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सद्य सम्पन्नायाः नीदरलैंड देशस्य यात्रायाः उल्लेखं कृत्वा अवदत् यत् तत्रत्यया शासन संस्थया चोलकालीनाः ताम्रपट्टिकाः भारतदेशाय प्रत्यर्पिताः। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे श्रीमोदी अवोचत् यत् एतेन विश्वव्यापिनः तमिल समुदायस्य मध्ये विशेषः उत्साहः वर्तते। सः अवदत् यत् एताः पट्टिकाः चोल साम्राज्यस्य सामुद्रिक शक्तिं दक्षिण पूर्व एशिया देशैः सह तेषां सम्बन्धान् च प्रदर्शयन्ति। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भारत प्रशासनं राष्ट्रस्य अमूल्य रिक्थानां संरक्षणार्थं निरन्तरं प्रयतते। सः प्रोक्तवान् यत् ज्ञान भारतम् अभियानेन छत्तीसगढ़ राज्यस्य मल्हार क्षेत्रे षष्ठ सप्तमयोः शताब्द्योः पाण्डुवंशस्य महर्षेः बलार्जुनस्य सम्बद्धाः दुर्लभाः तिस्रः ताम्रपट्टिका अपि प्राप्ताः।
2: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ तीन दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस छठी सातवीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना देशवासिनः वर्तमाने भीषण ग्रीष्मऋतौ अत्यधिकं सावधानतां धारयितुं प्रशासनेन प्रदत्तानां निर्देशानां पालनं च कर्तुं प्रार्थिताः। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे सः जनान् पर्याप्त मात्रायां जलपानं कर्तुं तथा सूर्यतापाद रक्षणोपायान् स्वीकृत्यैव गृहात् बहिर्गन्तुं परामर्शम् अददत्।
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: प्रधानमंत्री अवदत् यत् ग्रीष्म तापात रक्षण प्राप्तुम आमपन्नम, तक्रम, सत्तुपेयम, बेलपन्नम, पानकम, नीरमोर, सोलकड़ी चेत्यादीनां सेवनं हितकरम अस्ति। सः उक्तवान् यत् एते पेय पदार्थाः एक भारत श्रेष्ठ भारत इति भावनां प्रदर्शयन्ति तथा तेषु पूर्वजानां अनुभवः निहितः अस्ति।
2: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
1: प्रधानमंत्री रांची नगरे आयोजिताः राष्ट्रीय वरिष्ठ क्रीडा संघ प्रतियोगितायाः अपि चर्चाम् अकरोत्। अस्यां प्रतियोगितायां प्रायः अष्टशताधिक क्रीडकाः भागं गृहीतवन्तः। श्रीमोदी गुरिन्दर वीर सिंहः, विशाल टीके, तेजस्विन शंकरः, देवमीणा, कुलदीप कुमारः चेत्येतेभ्यः अभिनन्दनम् अयच्छत्। असौ शत मीटर मितायां धावन प्रतियोगितायां विजेतृभ्यां गुरिन्दर वीर सिंहः तथा अनिमेष कुजूर चेत्येताभ्यां सह अपि संवादम् अकरोत्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् खगोल

0: सायं सार्धसप्तवादने भविष्यति इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम कृषि जगत।

0: पंचो
1: राम राम।
0: गुंजा बहन,
1: हाँ रामेश्वर भैया,
0: का हाल चाल है गांव गिराव खेत खरियान का?
1: भाई कुल ठीक चलत हो,
0: हाँ?
1: लेकिन देखा था हुआ ना मौसम,
0: हाँ?
1: ए घड़ी मौसम भी कुछ ठीक हो गए लो भाई,
0: हाँ?
1: उतना गर्मी ना पड़त हो जवन उ समय रहे।
0: लेकिन जो रौद्र रूप आयल दू दिना देखे के मिलल, मौसम विभाग भी
1: हाँ
0: अपन संदेश पर संदेश मनई लोगन के मोबाइल पर सहेजत हवा कि देखें आधी तूफान आ सकाला, तेज रफ्तार से हवा चल सकेले, और दू दिना देखहूँ के मिलल भारी नुकसान भी गांव गिराव में भेल, जेकर तनी सा कमजोर छान छप्पर रहे ओकर उधराऊ गेल, आ बहुत से पंच भैया लोगन के मन आंशिक कहलें या कहीं न कहीं उनके नुकसान भी उठावे के पड़ल। ये जौन दई का रौद्र रूप है, जौन प्रकृति का रौद्र रूप है
1: हाँ
0: गुंजा बहिनी, ये अचानक से ना भेल है, ये मन कहीं न कहीं हमहन का बहुत बड़ा मन अनदेखी भेल है, जेकरे कार पर्यावरण का जौन क्षति पहुँचल है, प्रकृति नाराज भइल है, और ये जौन हमन के समय समय पर प्रकृति का तांडव देखे के मिलला,
1: हाँ हाँ
0: एमन कहीं न कहीं पर्यावरण असंतुलन बहुत बड़ा कारण है।
1: एकदम
0: आ पेड़ पौधा के साथ साथ मनई लोगन के भी बहुत सा ऐसन है जो उनकी अनबोलता हुआ या देख नहीं सकन, ठीक है पेड़ नहीं बोलत कि का चाहला, लेकिन बहुत सा ऐसा जागरूक मनई लोग हवन जो समय समय पर अपने आसपास के प्रकृति के संरक्षण बदे पेड़ पौधा का लालन पालन करना, पानी देवना, संरक्षण
1: हाँ
0: करना।
1: हाँ हाँ
0: ऐसे ही गुंजा बहन देखें हमन के समाज में बहुत सा ऐसा भी लोग हवन जे कहीं ना कहीं कोनो न कोनो रूप में लाचार हवन, या तो वृद्ध हवन, या तो देख नहीं सकते हैं, या शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं उनके जो सक्षमता होए के चाहे वो नहीं है, तो मन हमन का बहुत फर्ज है कि हमन उनकर मदद करल जाए, उनके साथ लेके चलल जाए।
1: एकदम एकदम सही बात कहला हो रमेश्वर भैया।
0: हाँ।
1: आ देखा कहल भी जाला ना कि परोपकार से बढ़कर कौनो काज ना होखेला, त हम लोगन देखा भाई अपने जिंदगी में इहे करे के चाहिए हम लोगन के कि अगर अपने माने अपने से केहू के जिंदगी में उजियार हो सकेला तो कभू पीछे ना
0: हाँ
1: हटे के
0: बिल्कुल
1: चाहे
0: बिल्कुल
1: भाई। अगर केहू के मदद का जरूरत हो तो ओकर मदद कर दा, केहू
0: हाँ
1: के कुछ जरूरत हो तो अगर ओके कुछ दे ही देवल गेल तो
0: हाँ
1: भाई ओकर मदद भी होला और
0: हाँ
1: अपने मन में भी खुशी होला कि हम आज कौनो अच्छा काम कैली है।
0: बिल्कुल
1: तो
0: गुंजा बहन
1: ऐसने
0: बिल्कुल
1: में देखा पीछे ना हटे के चाहिए, चाहे
0: हाँ
1: जो हो सके, माने कि अगर ओकर पैसा से रुपया से चाहे भाई श्रम से
0: हाँ
1: भी
0: हाँ चाहे
1: अगर,
0: भावात्मक
1: हाँ
0: से
1: अगर
0: लगे बैठ
1: मदद
0: के, हाँ
1: मदद हो सके तो जरूर करे के चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। आ शास्त्र में भी लिखल बा, प्राचीन परंपरा में भी बूढ़ पुरनिया कहें, संस्कार में भी सिखावल गल बा कि परोपकार परमो धर्मा। जब गुरु जी लोग पढ़ावें, जब हमन स्कूले जाए जाएँ, तो परोपकार परमो धर्मा का मतलब कि इसे बढ़िया परम धर्म कुछ नहीं, नहीं कि अगर कोई के साथे अपन समय या अपन कुछ रुपया पैसा का मदद करके या भावात्मक कहल जाला एक है, मदद होला कि कोई के लगे बैठ के ले, जैसे बूढ़ पुरनिया हवा या लड़का गदेला हवा या कोई कमजोर ऐसन मनई हवा जिनकर हाथ गोड़ नहीं बरोबर, तो अगर उनके साथे बैठ के दुगाल बतिया ले ला, तनी सा उनके हंसा देहला, तनी सा उनके तनी मतलब उनके साथे समय बिता देहला, तो
1: हाँ
0: वो अपने आप के बड़ा सकारात्मक ऊर्जा महसूस करना। ऐसे लोग जिनके लगे कोई बैठत नहीं या जिनकर कोई साथ नहीं दे कोनो न कोनो कारण से, अगर आप ऐसा लाचार आदमी के साथे बैठत हवा, उनकर दुख सुख में साथी बनत हवा प्रत्यक्ष रूप से, तो ये बहुत बड़ा परोपकार होला।

0: और बात करत है जा हमन आज असक्त मनई लोगन का ते मन एक नेत्रहीन मनई लोग भी होनन
1: हाँ
0: जे आंखी से नहीं देख सकतन, उनके दुनिया नहीं लौकत बा, लेकिन उनके साथ रह करके उनके जैसे सड़क पार कराना या रास्ता में चलत हुआ तो उनके रास्ता में तनि से मदद कर देना दो चार कदम, तो उन लोग के बड़ी सहारा मिलाला। ऐसने से जोन भी दृष्टि बाधित व्यक्ति होना वो अपने आप के बड़ा भाग्यशाली समझा ना, बड़ा उनके सकारात्मक भावनात्मक महसूस होला।
1: और रमेश्वर भैया
0: हाँ
1: देखा हो एक के बात हो, हम तो एक के बात कहब कि देखा मनई हाथ मुट्ठी बनले आवेला आ
0: हाँ
1: हाथ पसरले जाला,
0: बिल्कुल
1: मने
0: बिल्कुल
1: कि
0: बिल्कुल
1: ओका कुछो न ले गए हो आज तक मनई
0: हाँ
1: न
0: हाँ
1: आगे कभो ले जा पाई।
0: हाँ हाँ ऊपर बैंक नहीं है दिल के लगे।
1: हाँ तो एक खातिर भाई आ जब तक जिंदगी हो तब तक दूसरे का सहारा बना, दूसरे का परोपकार करा,
0: हाँ
1: मने कि जितना हो सकेला उतने करत जा। काहे से कि जब हम लोगन चल जाब ना
0: हाँ
1: तो हम लोगन का रुपया पैसा कुछो काम न दे,
0: हाँ
1: काम दे तो अपन करल भल करम मनई हमन के कैसे याद रखिए कि
0: हाँ
1: हाँ भाई फलाने आदमी रहले तो इतना मदद करत रहे, ई
0: बिल्कुल
1: काम करत रहे, तो ऐसे
0: बिल्कुल
1: ना हम लोगन के याद रखल जाई। ई रुपया
0: बिल्कुल
1: पैसा धन दौलत ई कुल का हो, ई कुल आज हो कल ना हो, ए
0: बिल्कुल
1: खातिर मनई के सोचे के चाहिए भाई कि जब
0: हाँ
1: तक अपन जिंदगी हो तब तक ओके परोपकार में लगौले रहे।
0: बिल्कुल। आ कोई अगर मन आगे बढ़ के काम करत था थक जाए तो गीत गौने में भी कहल जाला कि साथी हाथ बढ़ाना, और एक अकेला थक जाए तो मिलके बोझ उठाना। तभी अगर आपके समाज में आसपास कोई ऐसा मनई हो जो ने तरह का कार्य करत हो तो उनकर मदद करे के चाहिए, उनकर हौसला बढ़ावे के
1: हाँ
0: चाहिए।
1: हाँ
0: और निश्चित रूप से अगर ऐसा अपने आसपास होई तो जौन भी दीनहीन व्यक्ति हवा, बूढ़ पुरनिया व्यक्ति हवा, नेत्रहीन व्यक्ति हवा, उनके चेहरा पर मुस्कान देखे के मिली। लेकिन ये समय घड़ी का इशारा कहा था कि कुछ संदेश का समय है, आवाज सुन ले वाले कुछ संदेश।
1: सुनवा दो।
2: कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुका। बटुआ टूल रहे, डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने RBI कहता है कि
3: डिजिटल पेमेंट अपनाओ
4: और उनको भी सिखाओ।
5: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
6: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
5: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
6: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
5: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
6: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: गुंजा बहन
1: हाँ?
0: देखें संदेश भी होगल, और संदेश का भी जो न एक तरीके से उद्देश्य है वो बड़ा सकारात्मक रहे, और जो हमन बात बत कही कैली जाए वो का उद्देश्य बड़ा सकारात्मक ही है। अब देखें जो उन समाज में जितना भी बुराई अपने बीच में आ गल है, ये हम सब पंच भैया लोगन का दायित्व तो है कि ओके मिल करके दूर करे के कोशिश करल जाए। जैसे नशा है, निरक्षरता है, ये कुल जितना भी या नकारात्मक सोच है हमेशा हमन के ये कुल के मिटावे के चाहिए। और जैसे परिवार में लड़का लड़किन के बीच जो भेद है, अब देखें इसमें लड़की कितना बढ़िया नंबर ले आएल हैं, हित नात रिश्तेदारी में लड़किन के ऐसे में खूब प्रशंसा होत बा। जे फेल होला चाहे लड़का हो चाहे लड़की, ओकरे वजह से कहीं ना कहीं अभिभावक लोग के भी तनि सा अपन सर झुकावे के पड़ला। तो हम तो ये कहब कि बिल्कुल ऐसा बात ना होए के चाहिए, हमेशा लड़का लड़किन में का उनकर इच्छा है, पढ़ल चाहत हुआ, खेलल चाहत हुआ, कुछ बिजनेस व्यापार करल चाहत हुआ, का करे चाहत हुआ, अभिभावक लोगन के ये बात पर भी जरूर जोर देवे के चाहिए और
1: एकदम
0: उनके मन का
1: एकदम।
0: बात पहचाने के चाहिए।
1: भाई मन का बात पहचाने के बात कैला है, अब व्यापार का बात कैला है तो देखा हो जैसे अपने खेती किसानी में देखभाल का बहुत जरूरत हो खाला ना,
0: हाँ
1: ऐसे ही देखा अपन जब पशु चौवा पालल जाला तो
0: हाँ
1: उनकर भी समय समय से देख रेख करल जरूरी हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: भाई उनके का जरूरत हो का ना जरूरत हो ई कुल अपने के सोचे समझे के चाहिए।
0: बिल्कुल
1: फिर अगर ना समझ में आवत हो तो विज्ञानी भैया चाहे तो डॉक्टरी के दिखाए के
0: हाँ
1: उनकर मने की बढ़िया से उनकर देख रेख रखे के चाहिए।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: आज देखा हम लोगन भैया लोगन के लिए एगो बात कही लेके आवल गेल हो कि
0: हाँ
1: प्रसव काल में पशुअन का देखभाल कैसे किहल जाए, ए
0: हाँ
1: पे डॉक्टर आलोक पांडे से बतियावत है सुधीर कुमार श्रीवास्तव भैया, तो एक सुन लिहल जाए।
0: अब सुनल जा।
7: डॉक्टर आलोक पांडे, आप पशु चिकित्सा अधिकारी हुआ रामनगर में। आज हम ये आपसे जानल चाहब कि हमारे जो पशु हुआ
8: जी जी
7: वो प्रसव काल के दौरान जो कभी कभी बहुत परेशान दिखन
8: जी।
7: और हम लोग के भी दिमाग में

0: रहला कि भाई इनके का परेशानी हो, कभी कभी जानकारी भी नहीं रहत, तो हम लोग का भी दिमाग में एक उलझन चलत रहला, तो का विशेष देख रेख हमारे पशुओं का करे के चाहिए ऐसे दौरान में जबकि प्रसव काल हो।
1: जी, प्रसव काल में जब बच्चा गाय बहुत नज़दीक हो बच्चा देने की, जैसे पता, पहले तो पशुपालक को पता होना चाहिए कि बच्चा कब देने वाली है, तो उसके लक्षण पता होने चाहिए।
0: जी
1: जैसे पशु के थनों में सूजन आ जाती है, थन के सूजन के साथ साथ पशु के थन का जो बाल्ट होता है उसमें दूध भर जाता है। दूसरा, पशु पुट्ठा तोड़ देता है, उसका खाना पीना कम हो जाता है, थोड़ा बेचैन रहेगा, बार बार उठेगा बैठेगा, तो ये सारे लक्षण हैं। बार बार पेशाब करेगा, एकांत जगह देखेगा, किसी के अनजान आदमी के आने पर अचानक से खड़ा हो जाएगा, तो ये सारे लक्षण हैं ये पता लगाने का कि हाँ पशु अब मेरा 1 या 2 दिन में बच्चा देने वाला है। कुछ
0: अच्छा।
1: स्राव सा निकलता रहेगा बच्चेदानी के रास्ते से, तो ऐसे का समय में पशुपालक को सचेत हो जाना चाहिए कि अब वो समय आ गया है जब हमें इसकी विशेष ध्यान की जरूरत है।
0: अच्छा
1: बच्चा पैदा होने का जो समय है आ गया है,
0: अच्छा
1: नज़दीक आ गया है।
0: अच्छा तो ये तो लक्षण के बात हो गई, तो ऐसने में करेक्ट का चाहिए।
1: ऐसे में करना ये चाहिए कि पशुपालक को सबसे पहले तो साफ सफाई, जगह पे पशुओं को अपने झुंड से अलग कर देना चाहिए, जिससे कि उनको अलग से जगह मिल सके जिसमें उनको बच्चे का ब्याथ हो सके, गाय का ब्याथ हो सके, बच्चा आ सके। दूसरा, उनके लिए सॉफ्ट बेड नीचे, बेडिंग जो होना चाहिए, फर्श जो होना चाहिए खुदरा नहीं होना चाहिए, चिकना नहीं होना चाहिए, उसकी सावधानी रखना चाहिए, खान पीन की व्यवस्था रखनी चाहिए, प्लस सुबह शाम का समय देखते रहना चाहिए, कई बार हर 3-3 घंटे 2-2 घंटे पे वॉच करते रहना चाहिए, कभी कभी पशु रात में 12 बजे 2 बजे बच्चा दे लेते हैं, तो ये सब चीज़ों का उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए पशुपालकों को।
0: तो जैसे फर्श आप बताओ तो खुरदरा ना हो के चाहिए,
1: जी,
0: तो मतलब क्या व्यवस्था करें, पुआल वगैरह बिछा
1: पुआल
0: दें या
1: बिछा दें, बोरा बिछा दें, या अगर कुछ और व्यवस्था कर लें, मैट आजकल आते हैं, रबड़ के मैट आते हैं, उसमें उनको कंफर्ट आराम मिलता है,
0: अच्छा
1: वो कर
0: पशुओं
1: लें।
0: बदे विशेष रूप
1: पशुओं
0: से
1: के लिए विशेष मैट आता है तो
0: अच्छा
1: उसको आराम मिलेगा, मिट्टी वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि अक्सर क्या होता है पशु बेचैन हुआ, बच्चा जिसमें स्लिपरी फर्श हो गई, गिर गया तो हड्डी कोई टूट गई, डिसलोकेशन हो गया, फ्रैक्चर हो गया, तो बड़े पशुओं में फ्रैक्चर वगैरह का मैनेज करना बड़ा टफ होता है, तो ये सारी व्यवस्था उनको पहले से कर लेनी चाहिए।
0: अच्छा
1: झुंड से इसलिए अलग करना चाहिए कि कभी कभी क्या होता है, लड़ाई झगड़ा हो जाए दो पशुओं के बीच में, तो उससे गाभिन गाय को नुकसान होता है, इसलिए उनको अलग से सेपरेट जगह पे बांध देना चाहिए।
0: अच्छा तो ये दौरान में क्या कोनो दवा वगैरह का भी देवे की जरूरत
1: दवा
0: पड़ेगी?
1: की विशेष आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन पशुपालकों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि क्योंकि जो ये दौर होता है, इस दौरान पे जो बच्चा देने का समय होता है, इस समय एनर्जी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, और
0: अच्छा
1: जो हमारा पशु होता है वो हमेशा निगेटिव एनर्जी बैलेंस में रहता है, तो कुछ ऐसा उनको खुराक देना चाहिए जिसमें कि उनकी एनर्जी वाली चीज़ें ज़्यादा हो, जैसे गुड़ हो गया या अनाज में जो है वो इन सब चीज़ों की मात्रा ज़्यादा हो, जिससे कि उनको एनर्जी से मक्का या गेहूं का हो तो इसको चुरे के इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल करके, देसी चीज़ें बता रहे हैं, ये देते रहना चाहिए।
0: जी जी
1: प्लस कुछ हमारे हाई यील्डर्स होते हैं जो 20 किलो 22 किलो वाली दूध दे रहे हैं पशु, तो ऐसे पशुओं को कुछ समय पहले कैल्शियम वगैरह का भी सप्लीमेंट, मिनरल का सप्लीमेंट ये देते रहना चाहिए, 2-3 महीना पहले से ही शुरू कर देना चाहिए, तो उससे क्या होगा कि एनर्जी बैलेंस का बना रहेगा, शरीर के अंदर ताकत बनी रहेगी, और प्रसव काल जो है वो अच्छे से बीत जाएगा।
0: तो का चिकित्सक भैया लोगन के भी संपर्क में रहे चाहिए दौरान की,
1: जरूर
0: हाँ
1: जरूर जरूर एकदम
0: कि
1: रहना
0: गर्भवत
1: चाहिए।
0: शिशु जो हो
1: जी जी जी जी
0: ओकर स्थिति का हो।
1: उसकी भी बहुत देखभाल की जरूरत है, बच्चा देते समय कभी कभी बच्चा फंस जाता है, तो पशुपालक को डॉक्टर का नंबर लेके रखना चाहिए, इमरजेंसी में कभी बच्चा नहीं निकल रहा, उसको हम लोग डिस्टोकिया कहते हैं, पैर फंस गया, गर्दन फंस गई उसकी, तो ऐसे समय पशु चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए, उनको घर पे बुलाना चाहिए, आकर के प्रसव का जो डिस्टोकिया है उसको रिलीव करके बच्चे को निकाल सकते हैं, तो उनका नंबर जरूर रखना चाहिए। प्लस बच्चा देने के बाद उनकी नाभि नाड़ जो होती है,
0: जी
1: जो
0: जी
1: बछड़े या बछिया की होती है, उसको ऊपर से 3-4 इंच छोड़ करके नीचे बांध करके फिर उसको काट देना चाहिए, काटने के बाद उसमें टिंचर आयोडीन लगा देना चाहिए, तो उससे क्या होगा कि कोई बीमारी उसको नहीं होगी, ये करना। प्लस प्लस पालक भाई एक और वो करते हैं कि अक्सर इंतजार करते रहते हैं कि जब तक पशु खेड़ी या जेर न गिरा ले तब तक गाय को खिलाते नहीं, ना तो बच्चे को दूध पिलाते हैं, ये मिथ है, ऐसे नहीं करना चाहिए। पशु प्रसव के बाद बच्चे को भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो जैसे माताओं का ह्यूमन में होता है कि जितनी जल्दी हो सके माँ का पहला दूध पिलाएं, वैसे ही पशुओं में भी होता है कि उनको 4 घंटे के अंदर माँ का दूध जरूर पिलाएं, इससे उसकी इम्यूनिटी बच्चे की बनी रहती है, खेड़ी गिराए ना गिराए उससे कोई मतलब नहीं है, दूध जरूर पिलाना चाहिए 4 घंटे के अंदर।
0: अच्छा, एक बात जानल चाहब कि जैसे आप जांच के बाद कहना है तो का प्रसव के पहले ये बात की जानकारी हो सकल है कि जौन बच्चा हो
1: जी
0: उस सामान्य अवस्था में हो और सामान्य रूप से प्रसव हो जाए या कोनो तरह का परेशानी आ सकल
1: नहीं, अल्ट्रासाउंड वगैरह से हो सके।

0: सकता है,
1: जी
0: जानकारी हो सकती है, बट फील्ड लेवल पे देखना ये मुश्किल है। वो जब प्रसव होगा तो उसी समय पता चल सकता है, और पहले से नहीं पता चल सकता है। पहले से पता चल सकता है, लेकिन वो हमारे पास इतनी व्यवस्थाएं गांव लेवल पे उतनी अपडेट नहीं है कि हर पशु का, जैसे ह्यूमन का हमेशा अल्ट्रासाउंड होता रहता
1: जी
0: है,
1: जी
0: तो ऐसी अगर व्यवस्था हो तो पता चल सकता है, लेकिन टफ है इस वजह से।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये जो प्रसव वाली बात आप कहना है, तो नाल काटे वाली,
0: जी,
1: तो नाल काटे में क्या सावधानी रखनी चाहिए?
0: कुछ नहीं, उसको किसी अच्छे ताजी ब्लेड से, नई ब्लेड से काटना है। काटने के बाद टिंचर आयोडीन में डिप कर देना है, नहीं तो उसमें क्या होता है, टिटनेस वगैरह का या अम्बिलाइटिस एक बीमारी होती है, उसका खतरा बना रहता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। प्लस बच्चा देने के बाद पशुपालकों को ये चाहिए कि जैसे थन का, उनको गाय का ध्यान रखना है, गाय का इस तरह ध्यान रखना है कि गाय के पिछले हिस्से की सफाई, गर्म पानी गाँव में है उसको, उसमें थोड़ी फिटकरी डाल लें, थोड़ा सा नीम की पत्ती उबाल करके पिछला हिस्सा उसको धुल दें, और धुलने के बाद फिर उसका थन हल्का सा नॉर्मल पानी से धुल करके दूध गाना चाहिए। जो गाय ज्यादा दूध देने वाली है उनका पूरा दूध एक बार में ना उतारे, नहीं तो एक बीमारी मिल्क फीवर होती है
1: अच्छा
0: वो हो जाती है। तो उससे बचाव के लिए थोड़ा थोड़ा दूध करके उनका गारना चाहिए। और अगर पहले से ये बीमारी पहले प्रसव में हो चुकी है तो उसको कैल्शियम का सप्लीमेंट आजकल आता है वो देते रहना चाहिए उनको, जिससे कि ये दिक्कत उनको मिल्क फीवर वाली जो बीमारी है वो ना हो। एक और बीमारी कीटोसिस होती है, जो मैंने बताया निगेटिव एनर्जी बैलेंस की वजह से होती है। तो उसके बचाव के लिए पशुपालकों को सिर्फ गेहूं का दरुआ दरा लें, दराने के बाद उसको 1 किलो 15 दिन पहले से शुरू कर दें, उसको चुरे के उबाल करके उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दें 1 पाव, और उसको सुबह शाम के हिसाब से खिलाते रहें, तो पशु आपका निगेटिव एनर्जी बैलेंस में नहीं रहेगा। प्रसव काल के दौरान वो अच्छे से ताकत लगा करके बच्चा अपना निकालने की कोशिश करेगा।
1: डॉक्टर साहब, बच्चा जो हो ओके थन धरावे के समय जो हो का सावधानी रखे चाहिए कैसे? मतलब शुरुआत में तो गए थे जानकारी बाय नहीं,
0: जी,
1: तो थन का साफ सफाई खूब बढ़िया से कौन चीज से कर लें जिक्र बाद की बच्चा के दूध पियावे?
0: पहली बार बच्चा देने के बाद थन की सफाई बहुत जरूरी है। मैंने कहा जब तक फर्श साफ करना है पशुओं के थन को, हल्का कुनकुना पानी से, गर्म नहीं, हल्का कुनकुना पानी से हो सके, जैसे मैंने बताया नीम की पत्ती डालकर उसको साफ कर दें। थन की पहली बार अगर बच्चा दे रहे तो उसका थन को थोड़ा सा गारना पड़ता है, उसके अंदर एक हल्की सी गांठ सी रहती है
1: हाँ
0: आगे,
1: हाँ
0: कील जिसको हम लोग
1: जी
0: बोलते हैं
1: जी
0: देसी
1: जी
0: भाषा में, उसको सीधा गार करके उसको निकाल करके फिर बच्चे को पकड़ना, शुरू में बच्चा पकड़ता नहीं है
1: जी जी
0: तो उसको आदत डालनी पड़ती है। 1-2 दिन की आदत के बाद धीरे धीरे धीरे वो एक्सपर्ट हो जाता है। तो ये सावधानी, प्लस दूसरी चीज ये रखनी है कि साफ सफाई का बहुत, क्योंकि इसमें एक थनैला बीमारी होती है वो प्रसव के बाद अक्सर पशुओं को हो जाती है, जहां पर साफ सफाई का अभाव रहता है।
1: अच्छा
0: और दूसरी चीज, पशुपालकों को एक खेड़ी वाली समस्या जो है उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर पशु का खेड़ी या जेर नहीं गिरा हुआ है तो उनको पहले 6 से 8 घंटे तक इंतजार करना चाहिए। अगर इसके लटका हुआ तो धीरे धीरे गिर जाएगा, उसको एनर्जी और कुछ कैल्शियम सप्लीमेंट देंगे तो ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। फिर भी अगर 8 घंटे 10 घंटे बाद नहीं गिरता है तो नजदीकी पशु चिकित्सक से सलाह लेनी है। खेड़ी गिराने के लिए सारी दवाइयां आती हैं, वो दवाइयां दें। इसके बाद भी नहीं गिरता है तो डॉक्टर को बुला करके हैंडल वाकर
1: कभी
0: उसको
1: कभी
0: साफ सफाई
1: ग्रामीण
0: कराना।
1: स्तर पर बांस के पत्ती होती है जो
0: हाँ
1: लोग
0: हाँ वो
1: पियावे लोग
0: देसी
1: के।
0: दवाइयां हैं उसको दीजिए, जो हमारा काढ़ा वढ़ा होता है गुड़ का, उस सब पिलाने का यही मतलब है कि उसको एनर्जी मिले, एनर्जी
1: अच्छा अच्छा
0: मिलेगी, ताकत उसके अंदर आएगी तो जोर लगाएगी और निकल जाएगा। तो काढ़ा ये सब जो भी है, बांस का पत्ता खाएगी तो उसका रूमिनेशन बढ़ेगा, तो शरीर की एक्टिविटी बढ़ेगी, कहने का
1: जी
0: मतलब जब एक्टिविटी बढ़ेगी तो खेड़ी निकालने के लिए वो सक्षम रहेगा, तो ये करना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, तो ये फिर बच्चा देने के बाद जो
0: जी,
1: का देखभाल विशेष
0: बच्चा
1: रूप से करे
0: देने
1: चाहिए,
0: के,
1: का भोजन देवे के चाहिए
0: जी जी
1: उन्हें
0: जी जी
1: चारा?
0: बहुत बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया है।
1: जी
0: बच्चा देने के बाद पशुओं को, चूंकि बच्चा देने के शुरू के 3 महीने में पशु अपने पीक यील्ड पे होता है, मतलब जो उनका बेस्ट परफॉर्मेंस होता है वो
1: अच्छा
0: शुरू के 3 महीने तक ही रहता है, उस दौरान वो ज्यादा दूध देते हैं। पशुपालक को दूध ही चाहिए होता है गाय से, तो ऐसे कंडीशन में जैसे मैंने आपको बताया कि पशु को हरा चारा कम से कम 30 से 35 किलो अगर उनके पास अवेलेबल है, तो भूसा 5 से 7 किलो, प्लस इसके अलावा पशु आहार उनको हर 3 किलो दूध के पीछे, 2.5 से 3 किलो दूध के पीछे 1 किलो पशु आहार देना है, जिसमें
1: अच्छा
0: चूनी चोकर और इनका ये क्या कहते हैं मिक्सचर, मिनरल मिक्सचर, ये सारा कुछ मिला, खली, ये सारा कुछ मिला के, दरुआ वरुआ जो भी है सारा मिला करके हर 3 किलो दूध पे 1 किलो इनको देना। कोई गाय अगर 6 किलो दूध दे रही है तो 2 किलो ये देना है, पशु आहार देना, प्लस 1 किलो पशु आहार उस गाय के शरीर के मेंटेनेंस के लिए। तो ये पशुपालक
1: अच्छा
0: भाई ध्यान से रखें और इसको इसी हिसाब से करें तो उनके दूध की जो कम नहीं होता होगा। इसके अलावा कुछ गाय जो आजकल हमारे यहाँ विदेशी नस्ल की गाय हैं
1: जी
0: ज्यादा दूध देने वाली हैं, ऐसी गायों को सप्लीमेंट के रूप में बच्चा देने के इवन 15-20 दिन पहले भी विटामिन ए, D3, E और

0: एच के सिरप, मल्टीविटामिन जिनको बोलते हैं, कई
1: जी
0: सिरप बाजार में आते हैं, वो लेकर के 10 से 20 एम एल पर डे अगर वो 15-20 दिन पहले से पिलाएंगे तो उनके थन की साइज, आकार, इवन प्रसव काल में अच्छे से ब्याना, ये सारे कुछ उनको रहेगा। तो ये सावधानी अगर वो रखेंगे तो अच्छे से उनकी गाय प्रसव के बाद दूध देगी, ब्याने के बाद अच्छे से दूध देगी।
1: अच्छा। और डॉक्टर साहब, जो हरा चारा बात की ना,
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: हरा चारा में कौन चारा होना चाहिए? ऐसा तो नहीं कि कुछ का दुष्प्रभाव भी पड़ा लगा, तासीर गर्म हो
0: नहीं
1: तो?
0: नहीं ऐसा नहीं, हरा चारा सीजन के हिसाब से, जनरली जो गाय होती है वो सर्दियों के मौसम में ही बच्चे देती हैं, गाय या भैंसे जो भी हमारी हैं,
1: जी
0: वो जब
1: जी
0: सर्दियों का शुरुआत होता है ऐसे समय हमारे पास बरसीम की उपलब्धता रहती है, पर्याप्त
1: जी
0: बरसीम बहुत अच्छा स्रोत है, तो बरसीम हो गया, लहसुन हो गया, तो ये सब चीजें जो हैं हरे चारे का बहुत अच्छा स्रोत है, इनको दे सकते हैं। बाकी थोड़ी सी गर्मियों में हरे चारे की दिक्कत होती है, तो ऐसे समय में पशु चाहें तो साइलेज का प्रयोग कर सकते हैं, आजकल मार्केटेड साइलेज भी होता है, तो घर पे भी मक्के का साइलेज अपने बना सकते हैं,
1: जी
0: हरे चारे को प्रिजर्व करके रख दें तो वो साइलेज उनका ऐसे समय में काम देगा जब उनके पास हरे चारे की अनुपलब्धता है।
1: तो डॉक्टर साहब, अब चल चलाओ तो हमारे किसान भैया लोगन के पशुपालकन के का सलाह देवल चाहिए आप?
0: मैं यही सलाह देना चाहता हूं कि प्रसव काल बहुत ही इंपॉर्टेंट समय होता है और इसकी तैयारी कम से कम पशुपालक भाइयों को 3 महीना पहले से शुरू कर देना चाहिए, आखिरी के जब 3 महीना रह जाए तब से लेकर के बच्चा देने के 3 महीने के बाद तक पशु का पूरा ख्याल रखना चाहिए, और ऐसा अगर पशुपालक भाई करेंगे, वैज्ञानिक सलाह अपनाएंगे, तो उनके पशुओं को कोई समस्या नहीं आएगी और पशुपालक भी स्वस्थ रहेगा, उनका पशु भी स्वस्थ रहेगा।
1: भाई देखा, रोजगार अगर पशुपालन का कल गल हो तो थोड़ा सा अपने दिमाग में ये बात रखे के पड़ी और उनके प्रति बड़ा सतर्क रहे के पड़ी। कहाँ
0: जी
1: से
0: जी
1: अनबोलता हूँ, अपन दुख तकलीफ बता नहीं सकता और न का जरूरत हो ये भी नहीं बता सकता, तो थोड़ा सा सचेत रहे के जरूरत हो जिसे ना बतूना है। तो डॉक्टर आलोक पांडे भैया, आप हमारे पंचायती में ना और इतनी अच्छी जानकारी देना हमारे पशुपालकन में दे कि जो प्रसव काल हो एक दौरान का सतर्कता रखे चाहिए जैसे कि उनकर पशु स्वस्थ रहें और बढ़िया दूध का उत्पादन हो सके। डॉक्टर साहब, ये जानकारी देवे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: गुंजा बहन
3: हाँ भैया।
2: देखें, डॉक्टर आलोक पांडे भैया से फरिया के बतियों ना सुधीर कुमार श्रीवास्तव भैया दिया जाए लोग के बहुत बहुत धन्यवाद। आ देखें गैया गोरू जो ने भी किसान भैया लोग पालन है, देखें ना बोलता जीव हाँ, कहे का मतलब कि उनके भाषा से हमन कोनो चीज उनकर दुख दर्द न जान पायल जाई,
3: हाँ
2: हालांकि उनके चेहरा से उनके मुखारी से जरूर ये समझ में आवाला कि बीमार हवा या कुछ है, चरी चारा का मांग करत हुआ, भूख लगल है उनके या उनके प्यास लगल है, तब निश्चित रूप से डॉक्टर भैया लोग बतावन है कि गैया गोरू अगर पगुरी करत हवा तब तो ठीक समझा, फरहर हवा उठत बैठत हवा तो ठीक समझा, लेकिन अगर जैसे उनकर उठे का मन नहीं करत या पगुरी उनकर बंद है तो निश्चित रूप से उनके कोनो न कोनो तकलीफ है। सिर्फ प्रसव काल में ही नहीं बल्कि अन्य समय में भी जितना भी बारीकी से हमन गैया गोरुन के साथे रहल जाई, अगर उनसे हमन 4 पैसा लेत है या मतलब दूध का पशुपालन का व्यापार करत है
3: हाँ
2: या,
3: हाँ
2: तो हमहनों का फर्ज बनला कि उनका सेवा सत्कार करल जाए।
3: एकदम सही बात कहत हुआ भैया। काहे से कि देखा वो हम लोगन के आश्रय रहे, जो हम
2: हाँ,
3: लोगन देव उहे खाइए वही से
2: बिल्कुल
3: ही पिए।
2: बिल्कुल
3: और लेकिन बात ये हो कि हम लोगन अगर उनके कोनो मतलब तरीके से रखती भाई, उनसे लाभ लेते
2: हाँ
3: तो उतने उन लोगन का सेवा का भी जरूरत
2: बिल्कुल,
3: होला।
2: और साथे साथे जरूर अपने पंच भैया लोगन के सहेजब जे भी पशुपालन करत हों कि देखें तपन में भी उनके 9-10 बजे ले जहाँ घाम बरियार हो कड़ेर हो
3: हाँ
2: वहाँ
3: हाँ
2: से हटा लेवे के चाही, जहाँ छाँव हो वहाँ उनके रखे के चाही, ऐसे ही जब जाड़ा पड़े तो उनकर दलान जहाँ जितना हो ढक तोप देवल जाई, मतलब उनके भंगड़ा बोरा ओढ़ा दे ताकि जाड़ा न लगे, ऐसे ही बरसात में भी कोशिश करे के चाही कि खुला में वो न रहें, अगर जहाँ बारिक होत है बारिश तो वो प्रयास करें कि कहीं उनके जहाँ उनकर बर्धवानी है तहाँ लिया करके उनके रखें, ताकि जितने उनके हमहन सुविधा देवल जाई हमहन
3: हाँ
2: से के उतने उनसे लाभ होला।
3: एकदम एकदम सही
2: तो
3: कहते
2: जब
3: हुआ,
2: लाभ का बात होला तो कुछ मनसायन भी करे का मन करेला।
3: एकदम एकदम वही बात तो कहे जात रही है। तो
2: हाँ
3: काहे ना भैया लोगन के भी गीत गौनाई की ओर ले चलल जाए और
2: हाँ
3: सुनावल जाए कल्पना चटर्जी का ही गीत।
2: गीत सुनल जा।

0: गुंजा बहन,
1: हाँ रामेश्वर भैया,
0: बहुत सुंदर लोकगीत कल्पना चटर्जी बहन के साथे भेल और सब पंच भैया लोगन का मन मनसायन बढ़िया से भेल। आई उम्मीद के साथ कि देखें जब खुशी होला तो गीत गौना ही अच्छा लगला और हम पंच भैया लोगन के भी जीवन में खुशी बना रहे, एकरे बदे हमेशा ऐसा ऐसा काम करे के चाही कि जैसे कोई के तकलीफ न हो, चाहे अपन परिवार हो, चाहे आसपास का परिवार हो, चाहे समाज का कोई भी ऐसा जगह हो कि हमन के कार्य से प्रशंसा हो। आ निश्चित रूप से कुछ जौन भी समाज का भला हो सके कोशिश करे के चाही कि हमन कुछ ऐसा काम अपने हाथे से करल जाए, अपने विचार से करल जाए।
1: भाई ये कुल तो जरूरी है ये हो,
0: हाँ
1: लेकिन देखा हो संगे संगे ये हो जरूरी हो कि भैया लोगन के अगले दिन का क्या कार्यक्रम हो ओकरे बारे में भी तनी बता
0: बिल्कुल
1: दिया जाए।
0: बिल्कुल, तो कल सवेरे 6:05 पर खेती की बातें में जानल जाई अरहर का वैज्ञानिक खेती कैसे हुई। दिनेश कुमार सिंह।

0: के जानकारी रही।
1: सांझी के 6:30 पे अपने पंचायती में हुई बतकही जिम्मे की मिलावटी दूध के पहचान का तरीका के बारे में बतावल जाए पे तरुण वर्मा से बती हैं सुधीर कुमार श्रीवास्तव भैया। तो भैया लोगन के सुनिया जानकारी बड़ी नीक कहो।
0: बिल्कुल आ देखें घड़ी के सुई इशारा करत है आज चले के तो नए जोश नई उम्मीद नई जानकारी के साथ काल फिर जुटल जाई आज चला चले के तो पंचों
1: राम राम, राम।

0: अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत, प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 7:01 हुए हैं। फिल्म संगीत हम लेकर आएंगे इस छोटे से संदेश के पार।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
2: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: संदेश हुआ पूरा। फिल्म संगीत में आपका स्वागत। पहला गाना लता मंगेशकर और अनूप जलोटा की आवाज़ों में, आनंद बख्शी की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। फिल्म है एक दूजे के लिए।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: फिल्म संगीत में एक बार आपका पुनः स्वागत। आए दिन बहार के, आइए सुने इस फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

पहली सूचना आई है कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर से। लापता होने वाले हैं, ये हैं सानिया बानो। इनके पिता का नाम है कमरुद्दीन शेख। ये निवासिनी हैं सराय चंदन थाना मछली शहर जनपद जौनपुर की। ये पिछले 11 अप्रैल 2026 से लापता हैं। सानिया बानो के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 18 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गोरा, चेहरा लंबा है। ये लापता होने के समय काला प्लाजो व काला समीज पहने हुए हैं। सानिया बानो के बारे में कोई भी सूचना या जानकारी हो तो अपने निकटतम थाने या फिर कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर को सूचित करें। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर से ही प्राप्त एक और सूचना के अनुसार ये हैं वंदना मौर्य। इनके पिता का नाम है मिठाई लाल मौर्य। ये निवासिनी हैं शाहमऊ पोस्ट उचगांव थाना सरपताहा जनपद जौनपुर की। ये पिछले 11 अप्रैल 2026 सुबह 9 बजे से लापता हैं। वंदना मौर्य के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 26 वर्ष, कद 5 फीट 3 इंच, रंग गोरा, चेहरा लंबा है। ये लापता होने के समय कुर्ती प्लाजो व लाल रंग का दुपट्टा लिए हुए हैं। वंदना मौर्य के बारे में कोई भी सूचना या जानकारी हो तो अपने निकटतम थाने या फिर कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर को सूचित करें।

जिगेत के साथ है फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:15 हुए हैं। आइए सूचना दे दें खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर से ही एक और सूचना आई है। ये हैं जयश्री सिंह, इनके पिता का नाम है कृष्ण कुमार सिंह। ये निवासी हैं दसग पारा थाना सरपताह जनपद जौनपुर के। ये पिछले 18 मार्च 2026 दिन 1 बजे से लापता हैं। जयश्री सिंह के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 21 वर्ष, कद 4 फीट 8 इंच, रंगोरा चेहरा, लंबा है। ये लापता होने के समय नीले रंग की जीन्स पहने हुए हैं। जयश्री सिंह के बारे में कोई भी सूचना या जानकारी हो तो अपने निकटतम थाने या फिर कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर को देने की कृपा करें। इसी के साथ खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं अब समाप्त हुई। 7:18 हुए हैं। 7:20 पर होगा प्रादेशिक समाचार, जिसे हम लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
4: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
3: सुगंध क्या हो रहा है?
5: बिल हो रहा है।
3: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
6: आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार।

0: समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा किए अपने विचार। कहा, देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है सरकार। प्रधानमंत्री ने प्रदेश के दशहरी और लंगड़ा आम की किस्मों समेत गंगा डॉल्फिन बचाओ अभियान का किया जिक्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। 1991 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को बनाया गया उत्तर प्रदेश का पुलिस महानिदेशक। वर्ष 2022 के बाद मिला पहला स्थायी डीजीपी। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे। श्री मोदी ने कहा कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेलपन्ना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कढ़ी का सेवन करने की भी अपील की है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है, और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
1: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगन पल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण भी होता है।
1: डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है, यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बस्ती के आकाश गुप्ता का जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की मनोरमा नदी को साफ किया। श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मन की बात कार्यक्रम में गंगा डॉल्फिन बचाओ और बस्ती के आकाश गुप्ता का उल्लेख किए जाने पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से श्री योगी ने कहा कि पर्यावरण और जीव संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाती इस प्रेरक पहल को राष्ट्रीय मंच पर स्थान देने पर प्रधानमंत्री का

0: आभार। मन की बात में काशी के लंगड़ा आम का जिक्र किए जाने का काशी वासियों ने स्वागत किया है। वाराणसी क्षेत्र के MLC धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा लंगड़ा आम का उल्लेख किए जाने से वाराणसी की कृषि और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी।
1: कि बनारस का लंगड़ा दौड़ता है विश्व भर में, तो बनारस के लंगड़े की प्रशंसा उन्होंने की। आज बहुत बड़े क्षेत्र में अभी भी हमारे किसान लंगड़ा आम की खेती करते हैं। बनारस धन्य है, बनारस के लंगड़ा आम का स्वाद ही कुछ और होता है।
0: बस्ती के रहने वाले आकाश गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में नाम लिए जाने से और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है।
2: आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं, नदी के पास जितने भी गांव हैं, हम चाहेंगे सब युवा हमसे जुड़े और इस काम को एक अभियान बनाए, जिससे कि नदी पूरा साफ हो सके। क्योंकि हम 5 से 6 लोग 7 लोग नदी को पूरा साफ नहीं कर सकते जब तक कि सब लोग एक साथ ना।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। 1991 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी राजीव कृष्ण को राज्य का पुलिस महानिदेशक बना दिया गया है। श्री राजीव कृष्ण अभी तक कार्यवाहक DGP के तौर पर कार्य कर रहे थे। वर्ष 2022 के बाद प्रदेश को स्थायी DGP मिल गया है। संघ लोक सेवा आयोग से मंजूरी मिलने के बाद गृह विभाग ने श्री कृष्ण की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। श्री राजीव कृष्ण जून 2029 तक इस पद पर बने रहेंगे। उत्तर प्रदेश शासन ने तात्कालिक प्रभाव से 21 जिलों में नए मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तैनाती की है। आज जारी तबादला सूची के अनुसार प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के संयुक्त निदेशक ग्रेड एवं विभिन्न अस्पतालों में तैनात चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति CMO के पद पर की गई है। शासन की ओर से जारी सूची के अनुसार डॉक्टर हरिनंदन प्रसाद जालौन, डॉक्टर रमेश मिश्रा सोनभद्र, डॉक्टर रंजन गौतम बाराबंकी और डॉक्टर अजय कुमार शर्मा को उन्नाव का CMO बनाया गया है। इसी प्रकार डॉक्टर पंकज कुमार मऊ, डॉक्टर मुकेश कुमार वाराणसी का CMO बनाया गया है। अपर निदेशक लखनऊ डॉक्टर GP गुप्ता को सिविल अस्पताल का निदेशक नियुक्त किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने आज आगरा में ताजगंज क्षेत्र के पुरानी मंडी चौराहा स्थित लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हवन पूजन किया। इस दौरान श्री बघेल ने एक बाइक यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि बिना विरासत का सम्मान किए प्रगति संभव नहीं है।
3: जो जात वर्ग क्षेत्र धर्म पुरखों का सम्मान नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ता। और हमारे पुरखे ऐसे हैं जिन्होंने 12,776 टूटे हुए मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, तमाम सड़कें प्यागुओं धर्मशाला बनाई, लोक कल्याणकारी काम किए हैं। इसलिए ऐसी जयंतियों से जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता, संघर्ष से सत्ता, सत्ताओं से इतिहास बनता है।
0: वाराणसी में भी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती उल्लासपूर्ण माहौल में मनाई गई। प्रदेश भर में आज उत्तर प्रदेश संयुक्त BEd प्रवेश परीक्षा 2026 शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। परीक्षा के लिए 72 जनपदों में 1,011 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा की निगरानी के लिए एक हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया था। परीक्षा 2 पालियों में संपन्न हो गई। IPL 2026 का फाइनल मुकाबला आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन के बीच खेला जा रहा है। RCB ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी और बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। इस दौरान कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कने की भी चेतावनी दी गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा की अपने विचार। कहा देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है सरकार। प्रधानमंत्री ने प्रदेश के दशहरी और लंगड़ा आम की किस्मों समेत गंगा डॉल्फिन बचाओ अभियान का किया जिक्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया

0: आभार। 1991 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को बनाया गया उत्तर प्रदेश का पुलिस महानिदेशक। वर्ष 2022 के बाद मिला पहला स्थायी डीजीपी। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: बड़ी बहू,
2: ये तुम्हारी ना।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
2: अरे और छोटी, ये तुम्हारी ना।
1: और ये मेरी गुड़िया की ना।
3: पर दादी, आपके नाम?
4: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स्ड डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
2: शुब शुब बोलो।
3: क्या
4: RBI कहता है?
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो घड़ी में शाम के 7:31:42 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद।

0: पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार। और कालीन भाई के शहर से सना सलीम जी एक बार फिर से हैं, क्योंकि आइसक्रीम का मौसम है। सना जी, आपको भी नमस्कार हमारी ओर से।
1: अरुण जी, आपको और कार्यक्रम सुनने वालों को सना का नमस्कार।
0: तो इट्स हॉट में कितना कूल हैं आप?
1: हम एकदम कूल नहीं है। ये अभी जो नौतपा जो बीता है ना, मतलब जो चल रहा है नौतपा ना, इसने एकदम झिला डाला है इंसान को, सभी को झिला डाला है।
0: अच्छा, गुड मॉर्निंग करते करते बहुत सारी जो सांस्कृतिक इस तरह के हमारे यहाँ किंवदंतियां, मुहावरे हैं, और ये जो दिन वगैरह खास चलते हैं, उसके बारे में आप लोगों की जानकारी में इजाफा हो गया है।
1: बिल्कुल। और देखते ही देखते देखिए, आज मई भी जो है वो खत्म होने की
0: कागार, यानी अब हम लोग इंतजार कर सकते हैं मानसून का, कम सून कह सकते हैं।
1: हाँ बिल्कुल। और अब मेल जो है वो पढ़ने का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेल्स हैं हमारे पास। ये पहला मेल हमें मिला है पटेल नगर मुगल सराय से सुनील कुमार सिंह का।
0: जी,
1: ये लिखते हैं कि 1 मई 2026 से विविध भारती के मुंबई केंद्र ने अपने कार्यक्रमों में बदलाव किया है। ओल्ड इज गोल्ड नीति के तहत बहुत से पुराने लोकप्रिय कार्यक्रम विविध भारती के प्लेटफॉर्म पर वापस आ गए हैं। क्या हम उम्मीद करें कि विविध भारती के स्थानीय केंद्र से भी वो दौर आएगा?
0: एक तो ये है कि स्थानीय केंद्र से हाल ही में तो प्रसारण की शुरुआत हुई है, और अभी ये सारी चीजें बनाई गई हैं। और खासतौर से इस बार ये जोर रहा कि सोशल मीडिया पर और नए दौर के हिसाब से कुछ ज्यादा इन्फोटेनमेंट बेस्ड प्रोग्राम किए जाएं। और वो देखिए कैसा अनुभव रहता है, आप तमाम बहुत सारे श्रोता वाराणसी वाइब्स या सुबह का जो प्रोग्राम है, जो टॉपिक बेस्ड होता है, उस पर लोग सीधे जुड़ते हैं, विचार रखते हैं। तो फिलहाल तो यही स्थिति है। आगे आने वाले दिनों में हम लोग भी जोर ध्यान दे रहे हैं कि कुछ पुराने पारंपरिक जो प्रोग्राम है वो वहां पर आपके लिए हम लोग ला सकें।
1: जी, आगे लिखते हैं कि इन दिनों मीडियम वेव का प्रसारण सुचारू रूप से नहीं हो रहा है। 17 मई 2026 रविवार शाम की सभा में रस माधुरी कार्यक्रम के दौरान प्रसारण बाधित होता रहा। ये व्यवधान 8:45 पर समाचार के दौरान भी आए। रेडियो सेट से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे हम रेडियो रिपेयरिंग की दुकान पर बैठे हों और मैकेनिक अपने स्क्रू ड्राइवर से रेडियो सेट की फ्रीक्वेंसी सेट कर रहा हो।
0: थोड़ा सा जो मीडियम वेव का ट्रांसमीटर है वो पहले के दौर में इसलिए FM आया क्योंकि उस पर मौसम का प्रभाव होता है, तो ये कारण हो सकता है। फिर थोड़ी सी आजकल विद्युत व्यवस्था भी है कि गर्मी के मौसम में आना जाना लगा रहता है, इस वजह से थोड़ा बहुत शिफ्टिंग के दौरान आपको ऐसा लग सकता है। फिर भी आपकी बात हम लोग तकनीकी अनुभाग तक पहुंचा दे रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि प्रसारण की गुणवत्ता में सुधार निसंदेह आएगा।
1: जी, इस मेल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये अगला मेल हमें मिला है हमारे नए श्रोता हैं, ममता शंभू विशाल, गिलट बाजार वाराणसी से।
0: आजकल ऐसे बहुत सारे श्रोता आ रहे हैं जो सिर्फ अपने शुरुआती नाम लिख रहे हैं और जगह का नाम। बहरहाल स्वागत तो हर किसी का है यकीन और भरोसे के साथ।
1: जी, ये लिखते हैं कि आकाशवाणी से बहुत दिनों बाद फिर से जुड़ा हूँ तो आनंद ले रहा हूँ। पहले जो मानव जी

0: जवाब देते थे वीणा कालिया जी पत्र पढ़ती थी, फिर पुष्पा जी और पांडुरंग जी, गया भैया हरी भैया की चुहलबाजी, उसके बाद मंगरू भैया जगड़ू भैया की जोड़ी लाजवाब आई।
1: ये जो बात के नाम है वो कृषि जगत कार्यक्रम में संभवतः आया करते थे, और वो जो प्रोग्राम आपने लिखा है वो पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में वीणा जी हो सकता है जवाब उस समय पढ़ती रही हूँ, क्योंकि उस समय हम भी यहाँ पर नहीं थे और मानव जी तो थे उस समय
0: जी। खेती किसानी की बात के साथ हंसी मजाक भी लाजवाब था। मजेदार बात की दोनों कवि थे, विकास भवन में दोनों लोग को सुना, रोजी रोटी में लग गया तो रेडियो छूट गया, फिर बैटरी भी नहीं खरीद पाए थे। अब बाल बच्चे कामकाज देखते हैं तो समय कट जाता है। आज भी जो लोग हैं अनमोल हैं। वरुण जी का हेलो फोन इन फरमाइश, यानी कि अरुण जी आपको, और डॉक्टरी वाला तो जरूर सुनता हूँ, कभी दांत वाला कभी आंख वाला, यानी आरोग्यम
1: जी।
0: मन करता है बस सुनते रहें। एक दिलीप कुमार वाला प्रोग्राम युववाणी में आशुतोष जी की पेशकश थी तो यूसुफ साहब की याद आ गई, जो बनारसी बाबू और बनारसी कुड़ी है, सुबह ही खाली बोलती है क्या? जी सुबह ही बोलती है। उनका एक प्रोग्राम फायर ब्रिगेड वाला बहुत पसंद आया था।
1: वाह क्या बात है।
0: हाँ, नाम सना जी था। निराली जी, निवेदिता जी, निराली निवेदिता का मोहब्बत का शरबत सुनकर तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा होता है क्या। होता है, लेकिन अरुण जी बताने की कृपा करें
1: क्या
0: मोहब्बत का शरबत के बारे में पूछ रहे हैं।
1: वो तो देखिए, भावनाओं को हम लोग समझते हैं, और जिसमें भावना सच्चे मन से जिस शरबत में मिला दी जाए तो मिठास अनायास बढ़ ही जाती है और वो शरबत आपको अच्छा लगेगा
0: जी। 5 बजे से सीधी सादी वाली मंजूषा ज्योत्सना जी को सुनना शुरू किया, कविता, हसगुल्ला, समाचार, संस्कृत वाणी, चौपाई और शालीनता दिवस का वर्णन, स्थान, पिक्चर, मंदिर, त्योहार, गाना और सबका शालीन नाम भी लिया उन्होंने
1: जी।
0: कुछ तो याद भी है, अरुण जी, पुष्पा जी, सना जी, निवेदिता जी, आशुतोष जी, चंदन जी, फिर अपना भी बोली, लेकिन मोबाइल वाले सजीव वाले में कुछ देर बाद गायब हो गई।
1: यानी अच्छा, फेसबुक लाइव में, फेसबुक लाइव पे नेटवर्क वाला मामला है।
0: खूब उल्टा पलटा गया लेकिन खेला हो गया। बहुत गुस्सा भी आया कि वहाँ अब जो कहते हैं कि तकनीकी विभाग या इंजीनियर कंप्यूटर फेसबुक मास्टर नहीं है क्या, कोई कुछ कर नहीं पाया। वो किसी से पूछी फिर गायब हो गई। पहले लोग तकनीकी खराबी और बिजली जाने पर माफी मांगते थे, अब तो जैसे हाल है, कुछ त्रुटि हो गई हो तो माफी मांगते हैं, मन में आया तो बता दिया।
1: ये देखिए, जब हम लोग रहते हैं, पुराने जितने भी लोग हैं, और अगर 1-2 मिनट का ऐसा कोई गैप आता है तो जरूर खेद प्रकट करना चाहिए कारण बताते हुए। और रही बात वो फेसबुक लाइव के दौरान कटने की, तो आकाशवाणी की व्यवस्था अपनी जो है वो मैकेनिज्म तो है ही, लेकिन इंटरनेट वाली जो व्यवस्था है वो बाहरी सर्विस प्रोवाइडर की है, उस पर हमारा वश नहीं है, इस वजह से ऐसा हुआ होगा। आप प्रोग्राम सुनते रहें, यूं ही लिखते रहें, इस मेल के लिए शुक्रिया आपका।
0: अगला ये मेल हमें मिला है जिला डोडा जम्मू कश्मीर से, परशोत्तम कुमार, गांव डंडी, तहसील भद्रवाह
1: जी।
0: कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता को नमस्कार।
1: उनके यहाँ ठंड का मौसम होगा और वो चाय और कॉफी वाला दौर होगा वहाँ पर, हम लोग आइसक्रीम के युग में हैं।
0: आकाशवाणी विविध भारती से फेसबुक पर लाइव कार्यक्रम हमें बहुत पसंद आ रहा है। हर दिन अलग अलग विषयों पर राय जानने का शानदार कार्यक्रम है, इसके लिए आकाशवाणी वाराणसी का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ये भी राय देते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी, तो जी जरूर आप भी कार्यक्रम से जुड़ा करें।
0: बहुत सारे आकाशवाणियों पर खत भेजकर पुराना हो गया हूँ, लेकिन इस कार्यक्रम का मुझे बहुत देर से पता चला।
1: आकाशवाणी स्वयं अपने 90 वर्ष मना रही है, और एक हमारी लंबी सुदीर्घ परंपरा है, इसमें आप जैसे श्रोता और हम लोग जैसे लोग भी जिन्होंने होश संभालते ही रेडियो ही सुना है, तो इसी के कारण से ये जो माध्यम है वो सशक्त होता है और परंपराएं आगे बढ़ती हैं, तो पुराना जो भी बातें होती हैं वो आने वाले पीढ़ी के लिए भी बहुत उपयोगी होती हैं
0: जी। इस कार्यक्रम का मुझे बहुत देर से पता चला, अब मैं हर हफ्ते मेल भेजता रहूंगा
1: जी।
0: हमारे दोस्त पुरन वर्मा जी कहते हैं कि मैं आकाशवाणी वाराणसी में फोन करता हूं लेकिन कॉल नहीं जाती, कभी कभी कॉल चली जाती है, ये क्या कारण है, इस मसले का हल करें।
1: देखिए, जैसा अभी हम लोगों ने इंटरनेट के बारे में कहा, वैसे ही ये फोन लाइन के बारे में है कि टेलीफोन की व्यवस्था हमारी अपनी नहीं है, हमारे पास कनेक्शन है, सर्विस प्रोवाइडर दूसरे हैं और उनके बीच अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नेटवर्क हैं, तो उनके बीच आपसी अगर कोई नेटवर्क संबंधी दिक्कत आती है तो उस पर हमारा कोई वश नहीं होता, और टेलीफोन में जिसका भी फोन आता है हम लोग फोन रिसीव करते हैं और वो श्रोता कार्यक्रम में शामिल होता है। आप लिखते रहें और आपके मित्रों को कहें कि जरूर प्रयास करते रहें रुक रुक करके, और फोन इन में उनका भी कॉल लग जाए, हमारी शुभकामनाएं सभी के लिए।
0: इस मेल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से हमें मेल किया है एडवोकेट वारिस अली खान ने, लिखते हैं आवाज की दुनिया के प्यारे से दोनों

0: दोस्त अरुण जी और सना जी को प्यार भरा सलाम। अर्ज है, जहां गलती ना हो वहां झुको मत, जहां इज्जत ना मिले वहां रुको मत।
1: तो फिर बहुत सारी जगह ऐसी होती है कि वहां से आप निकल नहीं सकते हैं। तो ये है कि ये तो हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि वहीं रहना चाहिए जहां आपकी योग्यता का सम्मान हो, लेकिन बहुत सारी जगहों पर यह संभव नहीं हो पाता, ये आप भी मानते होंगे।
0: जी, कार्यक्रमों के बारे में लिख रहे हैं कि 10 मई को आज इतवार है में प्रसारित झलकी समस्या निदान केंद्र हमारे परिवार को बहुत पसंद आई, हंसते हंसते पेट में बल पड़ गए। उसी दिन का लोकगीत जिसे अरुण भाई ने पेश किया था सुनकर मजा आ गया। मैं आपको बताऊं कि पहले मुझे लोकगीत में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन आपके केंद्र से प्रसारित लोकगीत ने मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अब मैं नियमित रूप से सुनता हूं।
1: एक बहुत पहले विविध भारती से कार्यक्रम आया करता था जब हम लोग वहां पर थे दिन में, और वहां पर हम लोग देश भर के अलग अलग प्रदेशों के लोक भाषाओं के लोकगीत सुनवाया करते थे। तो भाषा भले ही पूरी तरह समझ में ना आए, लेकिन संगीत की जैसा कहा जाता है कोई भाषा नहीं होती है। तो इस वजह से और हमारे देश की जो ये जो लोक संस्कृति लोकगीतों की परंपरा है बहुत समृद्ध है। इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए ये जो कलाकार हैं वो आप जैसे दूर दराज के श्रोताओं तक पहुंचते हैं और उन्हें अच्छा लगता है कि आप उनके जो प्रस्तुति है उसे सुन रहे हैं।
0: जी, आगे लिखते हैं कि उसी दिन की मूवी गदर पर केंद्रित एक ही फिल्म से कार्यक्रम जिसे नैना वाल्मीकि ने अपने खूबसूरत अंदाज में पेश किया था मुझे बहुत पसंद आया। 11 मई का मधुरिमा में मोहतरम आरजे ने खूबसूरत गीत बजाए थे, खास तौर पर मूवी तीसरी कसम का गीत सजन रे झूठ मत बोलो और मूवी हीर रांझा का गीत ये दुनिया ये महफिल मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन
1: ये सभी मकबूल गाने हैं और हाँ, अपने दौर के बड़े प्रसिद्ध गाने हैं। लेकिन क्या है,
0: लेकिन इन साहब ने अपना नाम नहीं बताया।
1: हर कार्यक्रम में हम लोग नहीं बताते, कंपेयर्ड प्रोग्राम जो होते हैं या फिर फरमाइशी प्रोग्राम होते हैं उसमें बताते हैं, और कई कई लोग झंकार वगैरह में भी बता देते हैं। तो इस तरह का कोई है नहीं। गाने उनके आपको पसंद आए, आपकी बधाई इस प्रोग्राम के जरिए भी उस प्रेजेंटर तक पहुंच रही है।
0: और इनसे ये भी कहेंगे कि 19 अप्रैल के बाद के जो पत्रोत्तर वाले प्रोग्राम है वो इनको जबरदस्ती वाले लगे कि नहीं लगे।
1: हाँ, ये भी अगली बार जरूर लिखेंगे, तो जरूर लिखेगा।
0: जी, अगला ये मैसेज हमें मिला है दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से, ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से लिख रहे हैं। हमें आकाशवाणी वाराणसी के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। दिनांक 3 मई 2026 का कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में आरजे अरुण पांडे जी और सना सलीम जी की प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी।
1: तो बहुत शुक्रिया आपको, खासतौर से इन्होंने इसी प्रोग्राम का ही जिक्र किया है।
0: साथ ही आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम फोन इन, हेलो फोन इन फरमाइश बहुत अच्छा लगता है।
1: कभी कभी आप लोग इस प्रोग्राम में आते हैं और बड़ा संक्षेप में मेल भेजते हैं, अच्छी बात है। तो यूं ही लिखते रहें, थोड़ा सा और विस्तार से लिखेंगे तो हमें और भी ज्यादा खुशी होगी। आपके अगले मेल का इंतजार हमें रहेगा।
0: ये अगला मेल हमारे नियमित श्रोता है कोटवा कपिलधारा सराय मोहना वाराणसी से रतिनाथ त्रिपाठी जी। लिखते हैं, 1 मई को एक ही कलाकार में अनुष्का शर्मा पर प्रियदर्शी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम अच्छा लगा।
1: जी,
0: शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में 1 मई को बिस्मिल्ला खां का शहनाई वादन सुबह और शाम दोनों समय सुनने को मिला। इसी कार्यक्रम में 2 मई को प्रेमचंद्र का गिटार वादन और पंडित हरिप्रसाद जी का बांसुरी वादन, 3 मई को किशोरी आमोनकर जी का गायन, 4 मई को दामोदर हुड्डा का गायन और साथ में पंडित नंद किशोर मिश्र का तबला संगत, पंडित अजय पोहनकर जी का गायन, अमरनाथ मिश्रा जी का सितार वादन, पंडित विश्वमोहन भट्ट का गिटार वादन और पंडित नंद किशोर का एकल तबला वादन सुनने को मिला।
1: ये बहुत सारे जो क्लासिकल म्यूजिक के प्रोग्राम हैं आपको पसंद आते हैं, और खासतौर से लोकगीत और शास्त्रीय संगीत ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिनके बारे में बहुत कम जिक्र होता है, और इन कार्यक्रमों को भी आप निरंतर और नियमित रूप से सुनते हैं और जिक्र करते हैं, ये हमें बहुत अच्छा लगता है।
0: जी, 3 मई को पूरब पश्चिम फिल्म प्रियदर्शी गौतम द्वारा प्रस्तुत सुनी। इसमें फिल्म की कहानी को अच्छी तरह से, अच्छा लिख रहे हैं कि अगर फिल्म की कहानी को अच्छी तरह से बताया जाए तभी यह कार्यक्रम और भी सफल माना जाएगा।
1: जी, खासतौर से अगर वो एक ही फिल्म से प्रोग्राम है, ऐसे जो भी प्रोग्राम है और वो कम्पेयर्ड हुआ करते हैं तो उसमें पूरी बातें, कहानी और जो खास चीजें होती हैं वो तो इस तरह के प्रोग्राम में बताई जानी चाहिए।
0: जी, इसी दिन आरोग्यम कार्यक्रम में शिखा श्रीवास्तव और डॉक्टर पाठक द्वारा एलर्जी पर बहुत सारी जानकारी मिली। शिखा मैडम ने अच्छे अच्छे सवाल पूछकर श्रोताओं को महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराया। आज इतवार है कार्यक्रम में झलकी ये दर्पण टूटे ना फिर एक बार सुनने को मिला। इस हफ्ते का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम सुना अच्छा लगा। गुड मॉर्निंग बनारस में शुचि उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत 4 मई का कार्यक्रम अच्छा लगा, जिसमें उन्होंने पंडित किशन

0: महाराज के बारे में जानकारी दी। इसी कार्यक्रम में प्रियदर्शी, स्नेहा और नैन्सी का भी कार्यक्रम सुना। अगर थोड़ा और जानकारी दी जाए और गाने कम हो तो इनका कार्यक्रम और बेहतर बन सकता है।
1: उम्मीद है आपकी ये जो सलाह है वो तमाम जिन आरजेज का आपने जिक्र किया उन तक ये बात पहुंचेगी और थोड़ा सा वो अपने स्क्रिप्ट पर और जानकारी पर गौर करेंगे।
0: और अंत में इन्होंने लिखा है कि इस सप्ताह प्रस्तुत खेल पत्रिका चंदन जी द्वारा प्रस्तुत सुनी, जिससे बहुत सारी जानकारी मिली। 4 मई को रात्रि 10 बजे प्रस्तुत मुशायरा सुना, जो बहुत ही पसंद आया।
1: तो इन दोनों ही कार्यक्रमों के लिए आपकी बधाई चंदन सिंह तक पहुंच रही है और इसी प्रकार प्रोग्राम सुनते रहें। आपके अगले मेल का हमेशा की तरह हमें इंतजार रहेगा।
0: और ये मेल जो हम शामिल कर रहे हैं, जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल का, लिखते हैं कि 15 अप्रैल को सना सलीम द्वारा गुड मॉर्निंग बनारस सुना, जो हम लोगों को पसंद आया। अच्छी जानकारी देने के लिए और सफल प्रस्तुति के लिए सना को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उसी दिन अंजू तिवारी जी द्वारा प्रस्तुत ईमेल पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुना, वो भी दिल को आह्लादित कर दिया। श्रोताओं की पसंद के बहुत प्यारे प्यारे गीत सुनने को मिले। अच्छी पेशकश के साथ अंजू तिवारी जी को बहुत बहुत बधाई। 16 अप्रैल को सुषमा उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत फरमाइशी गीत एक्सप्रेस और 17 अप्रैल को अंजना झा द्वारा प्रस्तुत व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस, दोनों कार्यक्रम दिल को छू गया। अच्छी शानदार प्रस्तुति के लिए सुषमा उपाध्याय और अंजना जी को बहुत बहुत बधाई। 19 अप्रैल को सना सलीम और अरुण भैया द्वारा प्रस्तुत पत्र के लिए धन्यवाद सुना, सना के पत्र पढ़ने का मनमोहक।
1: अच्छा लगता है सना जी ने कह दिया है कि वो नहीं लिखना है जो हमारे लिए लिख रहे हैं।
0: बहुत प्यारा लगता है। और अरुण भैया का तो कोई जवाब ही नहीं,
1: ज्यादा
0: जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगी।
1: तो भी वो बात तो अपनी जगह है
0: जी। अच्छी प्रस्तुति के लिए आप लोग को बधाई। 20 अप्रैल को स्वस्ति श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत आपके पत्र आपके गीत सुना, उनकी मधुर आवाज में प्रोग्राम सुनने में बहुत आनंद आता है, बहुत प्यारे प्यारे गीत सुनने को मिलते हैं। हम लोगों का भी पत्र शामिल वो की थी, सुनकर दिल खुश हो गया। अच्छी प्रस्तुति के लिए स्वस्ति श्रीवास्तव को बहुत
1: तो आपकी बधाई। इन तमाम जो हमारे साथी हैं उन तक पहुंच रही है। एक बात तो है कि बहुत सारे प्रोग्राम जैसे आते जाते रहते हैं, प्रेजेंटर आते जाते रहते हैं, लेकिन सुरेश जायसवाल की तरह के जो श्रोता है वो 3-4 दशक से हमारे साथ निरंतर नियमित रूप से जुड़े हुए हैं,
0: सुनते हैं,
1: राय देते हैं, हर कार्यक्रम से जुड़ जाते हैं। ये तारीफ की बात है, बहुत शुक्रिया आपका। आप यूं ही लिखते रहें, जुड़े रहें हमारे साथ
0: जी। और ये आखिरी मेल हमारा हम शामिल कर रहे हैं, दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा, मुबारकपुर ऊंची तकिया, आजमगढ़ से
1: जी
0: लिख रहे हैं। एक माँ ने कहा, बेटा हमेशा सच के रास्ते पर चलना, मुश्किलें आएंगी लेकिन हिम्मत मत हारना, दूसरों का सम्मान करना और अपने संस्कार कभी मत भूलना।
1: जी यही बात वहां पर ले जाएं हम लोग, जो वो लखनऊ से हमारे श्रोता लिख रहे थे कि जहां सम्मान न हो वहां नहीं रहना चाहिए। लेकिन माँ ने कहा था ना कि हिम्मत मत हारना और सच्चाई के रास्ते पर चलना, तो वो बात थोड़ी सी ये होती है, अगर सम्मान न भी मिले तो भी हिम्मत नहीं हारना है और सच्चाई के रास्ते पर चलते रहना है
0: जी। दिनांक 9 मई को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस आशुतोष शास्त्री जी द्वारा प्रस्तुत सुना, काशी कथा में चूहा गली के बारे में विस्तार से जानकारी मिली। इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी केंद्र को हार्दिक बधाई। 10 मई को कार्यक्रम आज इतवार है के अंतर्गत प्रसारित झलकी समस्या निदान केंद्र सुनी, पसंद आई। 10 मई को ही लोकरंग अरुण सर द्वारा प्रस्तुत सुना, सभी गीत अच्छे लगे, आखिरी गीत जो मासूम अली का गाया था बहुत बहुत अच्छा लगा। उसी दिन आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम वाराणसी वाइब्स नैन्सी द्वारा सुना, मदर्स डे पर श्रोताओं के विचार बहुत पसंद आए, अच्छी प्रस्तुति के लिए उन्हें बधाई। और उसी दिन आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद, अरुण जी और सना सलीम द्वारा प्रस्तुत सुना, सभी श्रोताओं के विचार विमर्श अच्छे लगे, हमारा पत्र कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ, खैर अगली बार।
1: जी बिल्कुल, ये है कि आप लोग लिखते रहें जरूर, क्योंकि हर बार हम लोग 5-6-7 श्रोताओं के ही मेल शामिल कर पाते हैं, लेकिन हर श्रोता का मेल हम लोग हिफाजत से रखते हैं और आइंदा हफ्तों में जरूर शामिल करते हैं। बहुत सारे कार्यक्रम आपने सुने वो पसंद आए, शुक्रिया आपका।
0: दिनांक 12 मई को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस सना सलीम द्वारा प्रस्तुत सुना, अत्यंत रुचिकर और ज्ञानवर्धक लगा।
1: इजाफा वाली बात नहीं हुई लेकिन इस बार
0: मालूमात में इजाफा। दिनांक 17 मई को वाराणसी वाइब्स नैना वाल्मीकि द्वारा सुना। सर मैं पूछना चाहता हूं कि नैना की प्रस्तुति आप लोग सुनते नहीं है क्या?
1: अच्छा श्रोता तो सुन रहे हैं ना, तो वो तो हमें बता सकते हैं। वैसे आपको बताएं कि हम लोग भी हर किसी के प्रोग्राम को सुनते हैं और उन्हें उचित सलाह भी देते हैं। अब थोड़ा सा क्या है कि नई पौध है, नए दौर के लोग हैं, वक्त उनको हुनर सिखा देगा, ऐसा कभी हमने कहा था, तो समय के साथ साथ सबको इस रास्ते पर यानी आकाशवाणी की राह पर चलने आ जाएगा, ऐसी हमें उम्मीद की जानी चाहिए।
0: लिखते हैं कि क्या नैनो

0: ना को ना पढ़ना आता है ना बोलना, उन्हें आप और तुम में कोई अंतर नहीं लगता।
1: थोड़ी सी इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। वैसे आप तिथिवार लिखते तो हम लोग उन्हें बता देते, हालांकि आपने जिक्र किया है शायद 17 मई का।
0: जी 17 मई को कार्यक्रम लोक रंग में ममता शर्मा का गाया गीत सुना, बहुत अच्छा लगा।
1: जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस मेल के लिए। और आपकी तमाम जो बातें हैं उससे हम लोगों ने गौर किया है, और संबंधित प्रेजेंटर तक हम लोग आपकी बात जरूर पहुंचा देंगे। इस मेल के लिए शुक्रिया दिलशाद जी आपका।
0: और श्रोताओं से यही कहेंगे कि भर भर के हमें मैसेज कीजिए, गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा पड़ रही है, लेकिन आप कंजूसी मत करिएगा।
1: बिल्कुल, और हम लोग आइसक्रीम भले नहीं खाते लेकिन आप आइसक्रीम खाते हुए मेल लिख सकते
0: करते रहिए। हमारी ईमेल आईडी है pkldaarvaranasi@gmail.com।
1: अगले हफ्ते आपसे इसी कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अरुण पांडे
0: और सना सलीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो घड़ी में शाम के 7:51 हुए हैं। आइए सुने फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंग। पहला गाना आया सावन झूम के। इस फिल्म से है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

इसी गीत के साथ है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं, रात्रि के 8 बजे हैं। सुगम संगीत कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं मनहर उदास।

इसी के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आज के कलाकार थे मनहर उदास। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:15 हुए हैं। ये वक्त है फिल्म संगीत के कार्यक्रम रसमाधुरी का। पहला गाना अर्पण फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज़, आनंद बख्शी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

औरत तेरी यही कहानी। आइए सुने इस फिल्म का गाना मोहम्मद अजीज की आवाज़ में। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं आनंद मिलिंद का संगीत।

बड़े मियाँ छोटे मियाँ, आइए सुने इस फिल्म का गाना। उदित नारायण, सुदेश भोसले, राकेश पंडित, पूनम भाटिया और साथियों की आवाज़ें, समीर के बोल, बिजू शाह का संगीत।

बहार आने तक। आइए सुने कार्यक्रम के आखिर में इस फिल्म का गाना। अनुराधा पौडवाल, पंकज उधास और साथियों की आवाजें, इब्राहिम अश्क के बोल, राजेश रोशन का संगीत।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमाधुरी अब यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रात के 9:15 बजने को है समाचार संध्या। आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक

0: शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते हैं। जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
1: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यम

0: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
1: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमार की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी है जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
2: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जनसेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।

0: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले दो दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi lauds efforts of individuals towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashvani. CBSE deploys team

0: of cybersecurity experts to secure OnMark portal for evaluation of Class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 killed in a blast at a building storing explosives in Namkham town of Myanmar. India's Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinches men's doubles title of Singapore Open badminton tournament. And in IPL cricket, high-voltage summit clash between Gujarat Titans and defending champions Royal Challengers Bengaluru underway in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program, Mann Ki Baat on Akashwani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming.
1: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते हैं। जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: The Prime Minister also highlighted the efforts of Akash Gupta from Basti in Uttar Pradesh, who along with his friends launched a campaign to clean the Manorama River, helping restore its cleanliness and promoting environmental awareness in the community. Mr. Modi further shared the story of Balakrishna Aiyar, a retired teacher from Goa who worked to address water scarcity by contributing to the lair of water pipelines. He also praised educator Girija Amma of Tamil Nadu for her contribution to the welfare of soldiers.
1: गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है।
0: Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi.
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: During the program, Mr. Modi also interacted with sprinters Gurinder Veer Singh and Animesh Kujur, who broke national records in the 100-meter race. Mr. Modi also reflected on the government's continuous efforts to preserve the country's priceless cultural heritage. He also referred to his recent visit to the Netherlands, where during a special ceremony, ancient copper plates from the Chol period were returned to India. The Prime Minister praised conservation efforts under the Namami Gange initiative, citing the successful rescue of a Gangetic dolphin trapped in a canal in Uttar Pradesh with the help of India's first Ganga Dolphin Rescue Ambulance. Expressing concern over the prevailing heatwave conditions, the Prime Minister urged people to follow official advisories and take precautions to stay safe. He also encouraged consumption of traditional summer beverages. Referring to mangoes, a favorite summer fruit, Prime Minister Narendra Modi praised the efforts of farmers, saying Indian mangoes are now reaching global markets from villages across the country. Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President U Min Aung Hlaing in New Delhi tomorrow. the entire gamut of relations between Myanmar and India.

0: महाराष्ट्र के गवर्नर विष्णुदेव वर्मा और वजीराला देवेंद्र फडणवीस ने आज पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर को उनके 301वीं यौमे पैदाइश पर खिराजे अकीदत पेश किया। मुंबई में लोकभवन में गवर्नर विष्णुदेव वर्मा ने अहिल्या देवी होलकर की तस्वीर पर गुलहाय अकीदत नजर किए। इस दौरान वजीराला देवेंद्र फडणवीस ने अहिल्यानगर जिले में चौंडी के मकाम पर अहिल्या देवी होलकर यादगार का दौरा किया और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। म्यांमार के शुमाल मशरकी हिस्से में एक इमारत में हुए धमाके में 45 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। इत्तलाआत के मुताबिक इमारत में कानकनी में इस्तेमाल होने वाले धमाका खेज मादे रखे हुए थे। मकामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नामखम टाउनशिप के काउंग टुब गांव में दोपहर में हुए धमाके में तकरीबन 70 अफराद जख्मी हो गए। ये इलाका चीनी सरहद से करीब 3 किलोमीटर जुनूब में वाक़ है, जहां तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी का कंट्रोल है। ये एक मुसल्लह ग्रुप है जो म्यांमार की मरकजी हुकूमत के साथ महाजारा है। जय हादसा पर पहुंचे राहत और बचाव काम पर मामूर एक अहलकार ने बताया कि 6 बच्चों समेत 46 लाशें बरामद की जा चुकी हैं और उन्हें आखिरी रसूमात के लिए ले जाया जा रहा है। राहत और बचाव का काम अभी जारी है। भारत के महकमे मौसमियात ने गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और मगरबी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। महकमे के मुताबिक मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मगरबी मध्य प्रदेश में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और झालाबारी का इम्कान है। महकमे ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मगरबी राजस्थान में अगले 2 दिन तक गरज चमक के साथ छींटे और बिजली चमकने की पेशगोई की है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने आज सिंगापुर ओपन में मर्दों के डबल्स का खिताब जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी मोहम्मद शोएबुल फिक्री और फजर अल्फियान को 18-21, 21-13, 21-16 से शिकस्त दी। इस तरह उन्होंने 2 साल में अपना पहला खिताब जीत लिया। आईपीएल क्रिकेट के अहमदाबाद में जारी फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने 156 रन का निशाना रखा है। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फितरत के तहफुज, मकामी मुश्किलात को हल करने और दिगर समाजी मकासद के तई अफराद की कोशिशों को सराहा। उन्होंने आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में खेलकूद के कौमी मुकाबलों में उभरते हुए एथलीट की रिकॉर्ड तोड़ कारकर्दगी की भी तारीफ की। CBSE ने 12वीं क्लास के तलबा के जवाबी पर्चों को दोबारा जांचने के ऑन मार्क पोर्टल की हिफाजत के लिए साइबर सिक्योरिटी माहिरीन की एक टीम तैनात की है। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश बल्दियाती इदारों के इंतखाबात में 4 में से 3 बल्दियाती इदारों पर जीत हासिल की है। म्यांमार के नामखम कस्बे में धमाका खेज मादे के जखीरे वाली एक इमारत में धमाके से 45 से ज्यादा लोग हलाक हो गए। भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का मर्दों का डबल्स का खिताब जीत लिया है। और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान दिलचस्प मुकाबला जारी है। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो घड़ी में रात्रि के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीत यवन गजल पर आधारित कार्यक्रम अंजुमन। कार्यक्रम का आगाज करते हैं वो पुरनूर आंखों पे ख्वाबों का पहरा, वो हंसता हुआ एक गुलनार चेहरा, वो चढ़ती उतरती सी मखमल सी बोली, जीव निकले लचकती कहारों की डोली, सरापा फिजा कहकशां रोशनी वो है, ख्वाबों ख्यालों की लब चाशनी वो, गजल गीत नज्मों की है वो नशेमन, यकीनन यकीनन यकीनन यकीनन, यकीनन।

तारुफ था हमारा उनसे कई कहकशां पहले की बात है। जिंदगी में मिले ना मिले ये रूहानी बंदगी की बात है।

ये राहें ले ही जाएंगी मंजिल तक, हौसला रख। कभी सुना है कि अंधेरों ने सवेरा ना होने दिया,

हिफाजत कुछ ज्यादा ही किया करता है शायद आसमां अपने कहकशां का, तभी तो हर रोज मोहब्बत में एक सितारा बिखर कर टूट जाता है।

0: आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गीत एवं गजल पर आधारित कार्यक्रम अंजुमन। आज इस कार्यक्रम में आपने सुना नीना मेहता, राजेंद्र मेहता, हरिहरन, सोनू निगम और चंदन दास की गाई गजलें। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो घड़ी में रात्रि के 10 बजने वाले हैं। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी है। आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन। श्री असनापुरम येरैया आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध सैक्सोफोन वादक हैं। प्रारंभिक प्रशिक्षण श्री जी वेंकट रमणा से प्राप्त करने के बाद उन्होंने श्री कल्लूरी मलैया से उच्च प्रशिक्षण लिया और आकाशवाणी कड़प्पा के ए ग्रेड कलाकार के रूप में मान्यता प्राप्त की। आपने भारत के विभिन्न सांस्कृतिक सभाओं और मंदिरों में व्यापक रूप से कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। आपको कंची काम कोटी अस्थाना विद्वान की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया है।
1: दिस इज आकाशवाणी इंटरनेट रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी ब्रिंग यू ए सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरपु येरैया एंड पार्टी, एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वी एन बालचंदर। श्री असनापुरपु येरैया is a renowned saxophone artist from Andhra Pradesh. He received his initial training under Sri G. Venkataramana. He later underwent advanced training under Sri Kalluri Mallayya and earned recognition as an A-grade artist of Akashavani Kadapa. He has performed extensively across India at various cultural sabhas and temples and has been honored with prestigious

0: पोजिशन ऑफ कंची कामकोटी आस्थान विद्वान।
1: आज के कार्यक्रम में श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली के साथ डोलू पर श्री वी एन बालचंदर संगति देंगे। श्री वी एन बालचंदर आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध डोलू वादक हैं। उन्होंने श्री एन लक्ष्मी नारायण तथा तिरुच्चरई टी जी मुथु कुमार स्वामी पिल्लई जैसे प्रतिष्ठित गुरुओं से प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार हैं।
0: इन टुनाइट्स कंसर्ट श्री असनापुरम येरैया एंड पार्टी इज एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वी एन बालचंदर। श्री वी एन बालचंदर इज अ रिनाउंड डोलू आर्टिस्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ही रिसीव्ड ट्रेनिंग अंडर डिस्टिंग्विश्ड गुरुस इंक्लूडिंग श्री एन लक्ष्मी नारायण एंड तिरुच्चारई टीजी मुथु कुमार स्वामी पिल्लई। ही इज ए टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी।
1: श्री येरैया अपने सैक्सोफोन वादन की शुरुआत कर रहे हैं निन्नू कोरी युनन्नुरा से। ये रचना टी सिंगाराचारी की है जो राग वसंत और आदि ताल में निबद्ध है।
0: श्री येरैया बिगिंस हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विद निन्नू कोरी युनन्नुरा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ टी सिंगाराचारी इन राग वसंता सेट टू आदि ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे राग वसंत में एक रचना जिसके बोल थे निन्नु कोरी युनन्नुरा। अब श्री येरैया एवं मंडली प्रस्तुत कर रहे हैं नाद लोलुड़ई। ये रचना संत त्यागराज की है जो राग कल्याण वसंत में और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया कंटिन्यूज हिज रिसाइटल विद नाद लोलुड़ई, ए कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन राग कल्याण वसंता सेट टू रूपक ताल।

0: अभी आप सुन रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं पार्टी का सैक्सोफोन वादन। आपके साथ डोलू पर संगति कर रहे हैं श्री वी एन बालचंदर। अब प्रस्तुत है निन्नु जेप्पा कारणमेनी। ये रचना पटनम सुब्रमण्यम अय्यर की है, राग है मंदारी और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: Now you'll be listening to Ninnu Jeppa Karanameni, a composition of Patnam Subramanya Iyer in Rag Mandari, set to Aditaal.

0: अगली प्रस्तुति है सामगान प्रियकरम। ये रचना गुरु सुरजानंद की है। राग कीरवाणी में ये रचना मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
1: You are now listening to the saxophone recital by Sri Asnapura Puyaraya in the Ravi Vasari Akhil Bharatiya Sangeet Sabha. Sri Eraya next presents Samagana Priyakaram, a composition of Guru Sujananda in Rag Kiravani set to Misra Chaputal.

0: श्री येरैया एवं मंडली अपनी प्रस्तुति का समापन कर रहे हैं तुरुमला तिरुपति वेंकट रमणा से। ये रचना अन्नामाचार्य की है। राग है वृंदावन सारंग जो आदिताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया कंक्लूड्स हिज रिसाइटल विद तिरुमला तिरुपति वेंकट रमणा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ अन्नामाचार्य इन राग वृंदावन सारंगा सेट टू आदिताल।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन। डोलू पर संगति दी श्री वी एन बालचंदर ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी कड़पा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू द सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरम येरैया एंड पार्टी इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ही वॉज एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वी एन बालचंदर। This program was recorded in the studios of Akashwani Kadapa and this broadcast came to you from the studios of Akashwani Delhi.
2: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में शाजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: देश में भीषण गर्मी

0: कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमा के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program Mann Ki Baat on Akashwani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming. Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi. Expressing concern over the prevailing heatwave conditions, the Prime Minister urged people to follow official advisories and take precautions to stay safe. He also encouraged the consumption of traditional summer beverages.
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President Ooh Myint Aung Hlaing in New Delhi tomorrow. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in Delhi this evening. The Myanmar President arrived at Gaya in Bihar yesterday on a 5-day visit to India. Union Minister for Housing and Urban Affairs and Power, Manohar Lal, today announced a series of initiatives to strengthen urban sanitation and power infrastructure.